मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948, आषाढ़ मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56:26 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुबह के 6 बजने को है। अब समा

0: समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधारशिला रहेंगी।
1: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले 1000 वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम लेने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर विनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर

0: लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप 1 के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं संवेद सुर में गाए इस देश कान के साथ।

मंगलवार को जन्मे सभी का मंगल करने वाले भगवान श्री हनुमान, जिनके हृदय में सिर्फ प्रभु राम है, ऐसे बजरंगबली को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है।

ईश्वर का घर ही एक ऐसा घर है जहाँ ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना रंग रूप, ना छोटे बड़े का हिसाब होता है। वहाँ सब समान है। इसीलिए उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सिर्फ सच्चे हृदय से समर्पित होना पड़ता है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। स्वर थे रतन मोहन शर्मा, सुमन कल्याणपुर और छाया गांगुली के। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर सुबह के 6:25 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन में खलील जिब्रान के विचार।
1: भाई हमेशा किसी की वही स्थिति से उसकी वास्तविक स्थिति का अनुमान न लगाया करो, और किसी की बात या किसी के बाह्य आचरण को उसके छिपे हुए रहस्यों का शीर्षक न ठहराओ। इसलिए कि दुनिया में ऐसे बहुत से इंसान हैं जिनको जबान की पुतलाहट और लहजे की खराबी के कारण तुम गंवार समझते हो, लेकिन उसकी आत्मविस्मृति प्रतिभा का एक उजागर पहलू हो सकता है और उसका अंतःकरण ईश्वरी साक्षात्कार का स्थान हो सकता है। बहुत से ऐसे भी होंगे जिनके चेहरे की असुंदरता और उनकी गरीबी के कारण तुम उन्हें तुच्छ समझते होगे, लेकिन वास्तव में वे धरती पर आकाश की कृपाओं में से एक अनुग्रह और लोगों में ईश्वर निर्मित शुभ आत्माओं में से एक हो सकते हैं। तुम एक ही दिन में आलीशान महल से प्रभावित हो जाते हो और एक गरीब तंग और अंधेरे झोंपड़े को करुणा और प्यार की भावनाओं से देखते हो, लेकिन बाहरी स्थितियों से अपने को प्रभावित होने से रोकने की सामर्थ्य तुम में होती तो महल के देखने से रौब पैदा होने के बजाय तुम्हें अफसोस होता और करुणा के स्थान पर उस झोंपड़े का तेज तुम्हें प्रभावित कर देता। पति अपनी पत्नी से और पत्नी अपने पति से कुछ स्वाभाविक कारणों से तंग आकर एक दूसरे से लड़ते हैं, मारपीट होती है और एक दूसरे को छोड़ जाते हैं, लेकिन अभी पूरा एक दिन भी बीतने नहीं पाता कि पति के परिवार वाले पत्नी के घर वालों से मिलते हैं, मुलम्मे के कारण चमकने वाले कुछ विचार एक दूसरे के सामने रखते हैं और वे एक मत हो जाते हैं कि बस मियाँ बीबी में सुलह कराई जाए। महिला को बुलाया जाता है, उसे मीठी मीठी बातों और दिल को नरम करने वाले उपदेशों से चुप कराया जाता है। वैसे उसके मन में संतोष नहीं होता, फिर भी शर्म के मारे वो उनकी बात के आगे सिर झुका देता है। फिर पति को बुलाया जाता है, उसके मस्तिष्क को सुनहरी मिसालों और सुवचनों से राजी करा लिया जाता है, जिनके कारण उसके विचार नरम तो हो जाते हैं पर बदलते नहीं। इस प्रकार थोड़ी देर के लिए उन दोनों में समझौता हो जाता है। उन दोनों की आत्माएं एक दूसरे से घृणा करती हैं, फिर भी एक ही घर में एक ही छत के नीचे अपनी इच्छा के विरुद्ध जीवन बिताने पर वे विवश होती हैं। जब नाते रिश्तेदारों की पिलाई हुई नशा लाने वाली दवा की मदहोशी का असर समाप्त होता है, जिसका समाप्त होना अवश्यंभावी है, तो पुरुष फिर स्त्री से अपनी घृणा प्रकट करने लगता है। इसी प्रकार पत्नी भी अपनी नाराजगी को जाहिर करने लग जाती है, तब वही लोग जिन्होंने पहले उन दोनों को बेहोशी की नींद सुलाया था, फिर उनको बेहोश करने की कोशिश करते हैं, और इसी प्रकार जिन्होंने पहले उस मद के प्याले का एक घूंट पिया था, वे उसका एक और घूंट पीने को तैयार हो जाते हैं। मैंने जब कभी कोई कड़वा प्याला पिया तो उसकी तलछट शहद की तरह मीठी निकली। मैं जब कभी किसी कठिन घाटी पर चढ़ा तो अंत में एक हरे भरे मैदान में जा पहुंचा। मैं जब भी शाम के धुंधलके में किसी दोस्त को खो बैठा तो सुबह की रोशनी में उसे देखा।

0: कई बार पुण्य और उसके फल की इच्छा से मैंने अपने सुख दुखों को बहादुरी के दिखावे के पर्दे में छिपाया, मगर पर्दा उठते ही मुझे ऐसा मालूम हुआ कि सारे कष्ट सुखों में और सारी विपदाएं संपदाओं में बदल गईं।
1: कार्यक्रम चिंतन में अभी आप सुन रहे थे खलील जिब्रान के विचार।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से कुछ ही देर में अर्थात सुबह 6:35 पर सुनिएगा श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार हैं रविंद्र साठी। खेती की बातें कार्यक्रम में डॉक्टर ओम प्रकाश की वार्ता प्रसारित की जाएगी। शीर्षक है मिट्टी की जांच प्रक्रिया और इसके लाभ। साथ ही स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर हरेंद्र मोहनिया जानकारी देंगे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर।

लोक संगीत का आनंद लीजिएगा भूपेंद्र के स्वर में सुबह 9:45 पर। अभिनेता राज बब्बर पर केंद्रित है कार्यक्रम आज के कलाकार, जिसे प्रसारित किया जाएगा दिन में 11 बजे। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस पर आधारित है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत, जिसे प्रसारित किया जाएगा दिन में 11:30 पर। आज का शीर्षक है हमें भी अधिकार है खुशहाल जीवन जीने का।

दोपहर 1:15 पर घनसार कार्यक्रम में चर्चा के साथ सुनेगा मातृत्व टीकाकरण के विषय में। हमारे स्वास्थ्य में आज बात होगी डायबिटीज पर, परवरिश रिश्ते नातों में बात होगी बदलते समय में परिवार की भूमिका पर। साथ ही कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र होगी कुसुमन रावत की वार्ता, शीर्षक है पूर्व पर उपदेश कुशल बहुतेरे। दोपहर 1:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आनंद लीजिएगा भजनों का। साथ ही फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद प्रसारित किया जाएगा दोपहर 3:00।

सायकालीन सभा में शाम 5:30 पर युववाणी कार्यक्रम में चर्चा होगी सामाजिक सुरक्षा और समानता पर। हेल्थ प्लस आज की सवाल अतुलनीय भारत के साथ सुनिएगा रुखसार की वार्ता, शीर्षक है समकालीन विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की सीमाएं।

शाम 6 बजे ग्रामीण लोक कार्यक्रम में चर्चा होगी रसायन मुक्त खेती पर। मौसम की जानकारी लोकगीत मंटीभाव के साथ सुनिएगा फैज बख्श सैयद की वार्ता, शीर्षक है धान की उन्नत खेती। मजदूर मंडल कार्यक्रम में आज शाम 6:30 पर चर्चा होगी अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस पर। आज का प्रश्न ज्ञान सागर सेहत टिप्स व फिल्म संगीत के साथ सरिता कुमारी की वार्ता प्रसारित की जाएगी, शीर्षक है संघर्ष और सफलता के बीच आज की नारी।

विविधा कार्यक्रम में शाम 7:10 पर भावना वरदान शर्मा की वार्ता प्रसारित की जाएगी। शीर्षक है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की दृष्टि में अखंड और संघीय भारत। शाम 7:31 पर सुनने का कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, साथ ही रात्रि 10:30 का समय रहेगा शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। तो ये था हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान, गायक कलाकार हैं रविंद्र साठे, संगीत सतीश भाटिया का।

श्री राम अवतार की कई कथाओं में एक कथा आदि पुरुष मनु तथा उनकी पत्नी शत्रुपा से संबंधित है, जिन्हें प्रभु ने एक अद्भुत वरदान दिया था। हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के फलस्वरूप मनु को भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। भक्त ने भगवान से अपनी मनोकामना प्रकट करते हुए उनके चरणों में ऐसी प्रीति मांगी जैसी पिता के हृदय में पुत्र के लिए होती है। उन्हें ये वांछित वरदान मिला। वर देते हुए श्री हरि ने कहा, स्वर्ग के बहुत से सुख भोग कर कुछ काल बीत जाने पर आप अवध के राजा होंगे और तब मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। एक अन्य कथा राजा प्रताप भानु की है। उसके दो पुत्र हुए, प्रताप भानु और अरिमर्दन। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र प्रताप भानु को राज्य सौंपकर भगवत भजन के लिए वन की राह ली।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार थे रविंद्र साठे, संगीत सतीश भाटिया का।

0: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर ओम प्रकाश की वार्ता। शीर्षक है मिट्टी की जांच प्रक्रिया और इसके लाभ।
1: भूमि एवं जल देश के प्रमुख मूल संसाधन हैं, जिनका संरक्षण मानव जाति के लिए अत्यावश्यक है। निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण देश में खाद्य पदार्थों की मांग इतनी शीघ्रता से बढ़ रही है कि वर्तमान उत्पादन वृद्धि से उसकी पूर्ति कर पाना असंभव है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि योग्य भूमि का उपयोग गृह निर्माण आदि के लिए दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण खेती योग्य जमीन दिनों दिन कम होती जा रही है। मिट्टी प्रकृति का एक ऐसा अमूल्य उपहार है जिस पर मनुष्य ही नहीं बल्कि विश्व के सारे जीव जंतु आश्रित हैं। मिट्टी के उपकारों का लेखा जोखा बहुत कठिन है। है कोई विश्व का ऐसा कारखाना जो अनाज का एक दाना भी बना दे? मिट्टी के बनने में जहां हजारों साल लगती हैं, वहीं मिट्टी के कटकर बह जाने में कुछ समय नहीं लगता। मिट्टी के कटाव के कारण ऊपरी तह की उपजाऊ मिट्टी पानी के साथ बहकर चली जाती है और अपने साथ फसल के पोषक तत्व भी बहा कर ले जाती है, जिससे प्रति इकाई पैदावार भी कम हो जाती है। अच्छी पैदावार लेने के लिए उर्वरकों का प्रयोग संतुलित मात्रा में प्रयोग करना अत्यावश्यक है। खाद एवं उर्वरकों का पूरा फायदा तभी उठाया जा सकता है जब उनको मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही प्रयोग किया जाए। मिट्टी जांच के आधार पर फसलों में खादों का प्रयोग वैज्ञानिक तरीका तो है ही, इसके साथ साथ संतुलित मात्रा में उर्वरक प्रयोग हेतु एकमात्र उपाय भी है। मिट्टी जांच के लिए नमूने लेते समय ध्यान रखें कि एक एकड़ के खेत से लगभग 8 से 10 जगहों से ऊपर की 6 इंच की मिट्टी इकट्ठी करके मिट्टी को अच्छी तरह मिलाकर करीब 0.5 किलोग्राम मिट्टी एक साफ थैली में भर दें। मिट्टी के नमूने लेने के लिए खुरपी का प्रयोग किया जा सकता है। मिट्टी को मिलाने के लिए जिस तसले का प्रयोग करें उसमें किसी प्रकार का खाद या उर्वरक नहीं लगा होना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि खेत में जहां गोबर की खाद की ढेरी हो या पशु आदि बैठते हों तो वहां से नमूना नहीं लेना चाहिए। खेत में जहां से मिट्टी उठाई गई हो या जहां पर डाली गई हो वहां से भी नमूना न लें। पेड़ के नीचे से भी नमूना नहीं भरना चाहिए। मिट्टी के नमूने भेजते समय यदि मिट्टी गीली है तो उसे भेजने से पहले छाया में सुखा लेना चाहिए। इसके बाद प्रत्येक मिट्टी के नमूने को क्रम संख्याबद्ध करें और सावधानी पूर्वक 2 सूचना पत्र बनाकर उनमें किसान का नाम, गांव का नाम, नमूने वाले खेत का नंबर, नमूने की गहराई, जमीन का ढाल तथा पिछली फसल में डाले गए खाद की मात्रा के साथ साथ ब्लॉक व जिला का नाम भी लिखें। आगे किस फसल के लिए उर्वरक की सिफारिश चाहिए उस फसल का नाम भी अवश्य लिखें। इसके बिना मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला से उर्वरकों की सिफारिश संभव हो पाएगी। आमतौर पर यह पाया गया है कि किसान भाई मिट्टी के गुणों का ध्यान रखे बगैर ही रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग जरूरत से ज़्यादा किया करते हैं, खास तौर पर यूरिया का, जबकि फॉस्फेटिक एवं पोटैशिक उर्वरकों का प्रयोग

0: जरूरत से कहीं कम मात्रा में किया जाता है। नतीजन पैदावार पर बुरा असर पड़ता है, इसका उपजाऊ क्षमता पर कुप्रभाव पड़ता है। एक ही मात्रा में दिया हुआ रासायनिक खाद का प्रभाव अलग अलग मिट्टियों में अलग अलग हो जा सकता है। अतः मिट्टी जांच के आधार पर रासायनिक खादों की संतुलित मात्रा का प्रयोग निश्चित ही लाभकारी होगा। मृदा में किसी तत्व विशेष की कमी होने से उस तत्व की पूर्ति किए बिना अन्य पोषक तत्वों को सिफारिश के मुताबिक प्रयोग करने से भी पूरा लाभ नहीं मिलता है, वह नहीं मिलेगा। उदाहरण के तौर पर यदि मिट्टी में फॉस्फोरस तत्व की कमी है तो ज़्यादा से ज़्यादा नत्रजन एवं पोटैशिक खादों के प्रयोग से भी उतना लाभ नहीं मिलेगा जो संतुलित खाद के प्रयोग से मिलना चाहिए था। अतः ऐसी परिस्थिति में मृदा परीक्षण का विशेष महत्व हो जाता है। मृदा परीक्षण के आधार पर केवल उन्हीं पोषक तत्वों की सिफारिश की जाती है जिनकी मिट्टी में कमी होती है, अर्थात जिनकी आपूर्ति मिट्टी से यथोचित मात्रा में नहीं हो पाती। अतः मृदा जांच के आधार पर प्रयोग किया गया उर्वरक संतुलित एवं अधिक लाभदायक होता है। मृदा जांच के आधार पर जिस पोषक तत्व की जितनी कमी होती है उसको उतनी ही मात्रा में प्रयोग करके अधिक पैदावार के साथ साथ अधिक मुनाफा भी कमाया जा सकता है। किसान भाई इन सभी बातों पर ध्यान देकर अपनी फसलों में रासायनिक खादों का प्रयोग मिट्टी के जांच के आधार पर ही करें तो निश्चित ही उर्वरकों की कम लागत से अधिक लाभ होगा।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर ओम प्रकाश की वार्ता। वार्ता का विषय था मिट्टी की जांच प्रक्रिया और इसके लाभ।

जल है तो कल है, पानी कुदरत का अनमोल उपहार है, इसे व्यर्थ न बहाएं।

मेरा शहर साफ हो, इसमें हम सब का हाथ हो। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, जीवन को खुशहाल बनाओ।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है मीडियम वेव 106.1 मीटर पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। हमारा अगला अनुप्रसारण दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसमें समय है समाचारों का इंतजार कुछ पलों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की और सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। भारत और मोरक्को के बीच आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण तथा बेहतर कार्यप्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। यह पोर्टल नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि यह पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों तथा हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई थी और 9 अन्य घायल हो गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन

0: p.m. each day. Indian Embassy in Doha has announced that Qatari authorities have confirmed the deaths of 12 Indian nationals in Ras Laffan incident Sunday night. In a social media post, the embassy extended its condolences to the bereaved families and offered prayers for the departed souls. It also stated that Qatari authorities confirmed all those injured in the incident are in stable condition and receiving appropriate medical treatment. The embassy is working in close contact with Qatari authorities to provide all possible help to the Indian nationals and their families affected by this incident. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर हरेंद्र मोहनिया की वार्ता। शीर्षक है, बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास कैसे।
2: किस माँ बाप की यह इच्छा नहीं होती है कि उसका बेटा क्रिकेट में कपिल देव अथवा सचिन तेंदुलकर जैसा नहीं बने, अथवा बेटी पीटी उषा की तरह से धावक बनकर देश का नाम रोशन करे। हर माँ बाप यह चाहता है कि उसका बेटा अपने क्षेत्र में विशेष योग्यता अर्जित करे, जिससे कि उसका परिवार का एवं देश का नाम ऊंचा हो। हर माँ बाप ये चाहता है कि बेटा उसका साइंस में विशेष योग्यता धारण कर अल्बर्ट आइंस्टीन की तरह से बनकर देश का नाम ऊंचा करे। लेकिन क्या यह संभव है? हाँ, यह संभव है कि उन हर का पुत्र या पुत्री बड़ा अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर बनकर देश का एवं समाज का नाम ऊंचा कर सकता है। इसका मैं उत्तर देना चाहूँगा कि अगर हम बच्चे को जन्म से ही होते हुए उस पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो यह संभव है। शारीरिक एवं मानसिक विकास प्रकृति की सतत प्रक्रिया है। यदि हम जीव को उचित वातावरण, समुचित भोजन एवं लाड़ प्यार दें और उसकी रुचि में उसको विशेष दीक्षा दें तो हर प्राणी अपने विकास के चरम लक्ष्य तक पहुंच सकता है। सबसे पहले हम आते हैं शारीरिक विकास पर। समुचित शारीरिक विकास के लिए जरूरी है संपूर्ण आहार, जिसमें प्रोटीन, खनिज पदार्थ, विटामिन्स हों, तो शारीरिक श्रम अथवा अभ्यास एवं समुचित लाड़ प्यार। जन्म के प्रथम 2 वर्ष हर बच्चे की जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगर इन 2 वर्षों में बच्चे की विकास गति अवरुद्ध हो जाती है अथवा उसको कोई गंभीर एवं क्रॉनिक डिजीज हो जाती है तो बच्चे की पूरी जिंदगी का इसका खामियाजाना भुगतना पड़ता है। इसलिए हर अभिभावक का कर्तव्य है कि इन प्रथम 2 वर्षों में बच्चे का नियमित रूप से शारीरिक एवं मानसिक जांच कराए एवं बच्चे को ऐसा वातावरण प्रदान करे कि जिससे बच्चा अपनी प्राकृतिक शारीरिक वृद्धि को प्राप्त कर सके एवं उसको खाने में इतने पौष्टिक पदार्थ दे कि जिससे कि बच्चे को प्रोटीन की, विटामिन्स की कोई कमी महसूस न हो और बच्चा अपनी स्वाभाविक गति को प्राप्त कर सके। जो बातें शारीरिक विकास के लिए जरूरी होती हैं वही बातें मानसिक विकास के लिए भी आवश्यक हैं, लेकिन इसके साथ साथ बच्चे की रुचि को विकसित करना एवं उसको हर उन बातों की तरफ ध्यान देना जो कि बच्चे को अच्छी लगती हैं और बच्चे की रुचि के साथ साथ बच्चे को उसके लिए वातावरण उपलब्ध कराना ये अत्यंत ही आवश्यक है। इसके लिए हमें बच्चे की रुचि को जागृत करना होता है। बच्चे की रुचि के अनुसार हमको उसको खिलौने एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध कराते रहने चाहिए। इसके साथ साथ उसको संपूर्ण मानसिक विकास के लिए उत्तेजित करना। किसी एक विशेष रुचि में बच्चा अपनी जिज्ञासा दिखाता है, जैसे बच्चे की अगर रुचि ड्राइंग में है तो तरह तरह के ड्राइंग के सामान उपलब्ध कराना, उसको ड्राइंग की तरह तरह की जानकारी देना। अगर बच्चे की रुचि खेलकूद में है तो बच्चे को खेलकूद के उपकरण देना, बच्चे को खेलकूद की विशेष शिक्षा देना, इत्यादि ऐसी अनेक बातें हैं जिसके द्वारा बच्चे की हम रुचि को

0: ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। बच्चे पर अपनी अधूरी छोटी छोटी हुई कुंठाएं न लादना। ऐसी अनेक सीखने की विधियां हैं जिसके द्वारा हम बच्चे का संपूर्ण रूप से शारीरिक एवं मानसिक विकास कर सकते हैं।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर हरेंद्र मोहनिया की वार्ता। शीर्षक था, बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास कैसे।

0: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर सुबह के 7:18 हुए हैं। हमारा अगला अनुप्रसारण लखनऊ की आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा।
1: धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण, देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा

0: शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। लखनऊ में बहुमंजिला इमारत में चल रहे कोचिंग और एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 15 छात्रों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर घटना की जांच शुरू। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर जताया दुख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया घटनास्थल का जायजा। घायलों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद और अलीगढ़ में विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, नवाचार का नया केंद्र बना है फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग। और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कासगंज लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन को दी मंजूरी। और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर बाद एक बहुमंजिला इमारत में चल रहे कोचिंग और एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 15 छात्रों की मृत्यु हो गई, जबकि अन्य कई गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए केजीएमयू के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। इस हादसे की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ दौरा छोड़कर लखनऊ आए और सीधे घटनास्थल पर जाकर स्थिति की जानकारी ली और बाद में केजीएमयू जाकर घायलों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले पर पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। इस इमारत में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था जिसमें कोचिंग सेंटर, गेम जोन और शोरूम थे। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि राज्य के डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी और आग लगने के कारणों का पता लगाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी देर रात लखनऊ पहुंचे। घटनास्थल का जायजा लेने के बाद उन्होंने केजीएमयू जाकर घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। रक्षा मंत्री ने घटना को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि मामले की जांच कराकर जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने घटना की जांच के लिए 2 सदस्यीय जांच दल बनाया है। वहीं सरकार ने लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अफसरों को निलंबित कर दिया है। मामले को लेकर पुलिस ने 6 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रामकृष्ण उपाध्याय, वीरेंद्र प्रताप शुक्ला, तुषार कृष्ण जायसवाल और सुरेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती सहित कई मंत्रियों ने लखनऊ के इस अग्निकांड को दुखद बताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों के लिए 50

0: 50,000 रूपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल फिरोजाबाद में 658 करोड़ रूपये से अधिक की 81 और अलीगढ़ में 462 करोड़ रूपये की 85 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को चाभी और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, चेक तथा उपकरण वितरित किए। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद के उद्यमियों और श्रमिकों की सराहना करते हुए कहा कि फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग नवाचार का एक नया केंद्र बना है, इसने चीन को पछाड़ दिया है।
1: सनातन धर्म के अंदर बात होती है, हर सनातन धर्मावलंबी फिरोजाबाद की चूड़ियों की ओर देखता है और सुहाग की इस नगरी को आज यहाँ का कारीगर, यहाँ का उद्यमी एक नई ऊंचाई दे रहा है। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूँ, ये डबल इंजन की सरकार उनके साथ मिलकर के कार्य करेगी, उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहन उपलब्ध करवाएगी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। आज के समारोह में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश की 4 हस्तियों समेत 56 विभूतियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: उत्तर प्रदेश की जिन हस्तियों को पद्मश्री मिलेगा उनमें कला के क्षेत्र में अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव, शिक्षा के क्षेत्र में मंगला कपूर के नाम शामिल हैं, जबकि कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रहने वाले रघुपत सिंह को मरणोपरांत ये सम्मान दिया जाएगा। इससे पहले पिछले महीने 25 मई को श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
0: केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने में वस्त्र मंत्रालय बड़ा योगदान निभाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कल गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान निट्रा के 52वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में संस्थान की उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीट भी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आज भारत प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ ही अन्य देशों की जरूरतों को पूरा कर रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार अनुसंधान पर जोर देने के साथ ही स्टार्टअप को भी प्रोत्साहन दे रही है, जिसमें निट्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
3: 2.5 लाख स्टार्टअप हो गए हर सेक्टर में है, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें स्टार्टअप नहीं। कभी पंजाब का पराली लोगों के लिए एक समस्या थी, चाहे CBG प्लांट लगे चाहे निट्रा उसे फाइबर में परिवर्तित कर दे पराली।
0: पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कासगंज लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन को मंजूरी दे दी है। मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि इस नई ट्रेन के चल जाने से पीलीभीत के साथ लखीमपुर खीरी, सीतापुर सहित संपूर्ण तराई क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि ये ट्रेन बदायूं, बरेली, इज्जतनगर, पीलीभीत, पूरनपुर, मैलानी, गोला, गोकर्णनाथ, लखीमपुर, सीतापुर, सिधौली, मोहिबुल्लापुर होते हुए पीलीभीत को राजधानी लखनऊ से जोड़ेगी। श्री प्रसाद ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस ट्रेन के संचालन से यहां का कार्य और व्यापार, पर्यटन भी बढ़ेगा। प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और बस्ती समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल दोपहर बाद गरज चमक के साथ हुई हल्की बारिश से लोगों को थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

0: लखनऊ में बहुमंजिला इमारत में चल रहे कोचिंग और एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 15 छात्रों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर घटना की जांच शुरू। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर जताया दुख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया घटनास्थल का जायजा, घायलों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद और अलीगढ़ में विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, नवाचार का नया केंद्र बना है फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग। और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कासगंज लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन को दी मंजूरी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 7:32 हुए हैं। प्रस्तुत है आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास।

आसपास कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है। सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सीसीसी प्रशिक्षण के लिए 10 जुलाई तक आवेदन। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत नीलिट मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से ओ लेवल और सीसीसी प्रशिक्षण दिया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी 16 जून से 10 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 10 जुलाई तक का समय उन्हें इसके लिए दिया जाता है।

सम्मान निधि चाहिए, 30 जून तक केवाईसी कराइए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ जारी रखने के लिए किसानों को 30 जून तक ई केवाईसी करानी होगी। उप कृषि निदेशक ने बताया कि केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों को अपात्र माना जा सकता है। सुविधा जन सेवा केंद्रों और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है।

कुछ सूचनाएं रेलवे से। रेलवे ने लालकुआं वलसार स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है। पीआरओ के अनुसार ट्रेन लालकुआं से 11 जून से 9 जुलाई तक हर गुरुवार, वलसार से 12 जून से 10 जुलाई तक हर शुक्रवार को चलेगी। वहीं रेलवे ने प्रयागराज दादर साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। पीआरओ ने बताया कि 10 जुलाई तक प्रयागराज से प्रत्येक शुक्रवार और 12 जुलाई तक दादर से प्रत्येक रविवार को ट्रेन संचालित होगी। ट्रेन प्रयागराज से ईदगाह स्टेशन होते जाएगी।

वहीं रेलवे ने मुंबई सेंट्रल काठगोदाम साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस के नियमित संचालन की भी घोषणा की है। ट्रेन मुंबई सेंट्रल से बुधवार और काठगोदाम से गुरुवार को चलेगी। ये मथुरा जंक्शन

होकर संचालित होगी। एक सेकेंड एसी, चार थर्ड एसी और सात स्लीपर, इसमें साथ ही चार जनरल कोच लगे हुए होंगे।

खेरिया एयरपोर्ट की आधुनिक सुविधाओं से लैस करने और भविष्य की हवाई जरूरतों के अनुरूप इसे विकसित करने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। एक ओर नए एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है, दूसरी ओर रनवे के विस्तार का कार्य शुरू हो चुका है। रनवे विस्तार तथा नए एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण के पश्चात एयरपोर्ट की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और शहर को अधिक उड़ानों का लाभ भी मिल सकेगा। फ्लाइटों की संख्या कम होने के पीछे के कारणों को लेकर पिछले कई दिनों से हवाई उड़ान का अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के बाद एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण के साथ अब रनवे का विस्तार किया जा रहा है। इसके लिए भारतीय वायुसेना से समझौता ज्ञापन की स्वीकृति प्रतीक्षारत है, साथ ही कुछ पेड़ों को काटे जाने के बाद अनुमति ली जा रही है। एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई वर्तमान 3200 मीटर से बढ़ाकर 4000 मीटर की जाएगी। इसका फायदा फ्लाइटों के साथ साथ वायुसेना को भी होगा। रनवे विस्तार के साथ अन्य कार्य भी कराए जाएंगे। कार्यक्रम आसपास को जारी रखते हुए श्रोताओं, आइए अब लेते हैं मौसम की खबर। तेज गर्मी, अत्यधिक उमस, बंद हवाएं सेहत को तगड़ा झटका दे रही हैं। खराब मौसम से घबराहट, बेहोशी और उल्टी दस्त की समस्याएं दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। जहां मानसून लेट हो रहा है, लेकिन ये आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने ये बताया है कि बीते दिनों 29 जून से मानसूनी बारिश के संकेत दिए जा रहे हैं। पहले दिन 60% बारिश का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन अब मानसून लेट हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी इसकी रफ्तार धीमी जताई जा रही है, इसलिए आगरा और आसपास तक बादलों के आने में देर हो रही है। और जब तक देरी है और गर्मी अपनी तपिश को लेकर बरकरार है, तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वी बातें हैं, पूरे शरीर को ढकने वाले हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक खुले में निकलने से बचें, भोजन बनने के 2 घंटे से अधिक देर बाद इसे नहीं खाना चाहिए, बाहर निकलने पर सिर पैर कानों को गर्म हवाओं से बचाएं, धूप में काम करने वाले 3 से 4 लीटर पानी रोज पिएं, बंद स्थानों में रहने वाले और काम करने वाले 2 से 2.5 लीटर पानी पी सकते हैं, ताजा फलों का रस, नींबू पानी, बेल का जूस और दही का सेवन फायदेमंद रहेगा, कोल्ड ड्रिंक, सोडा, पैक जूस और जंक फूड से दूरी बनाए रखें, सिर्फ घर का पका हुआ व पौष्टिक खाना ही खाएं, दिन में दरवाजे खिड़कियां खुली रखें, उमस नहीं रहेगी, छतों को ठंडा रखने के लिए रात में पानी का छिड़काव कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर हम झुलसती हुई गर्मी से अपने आप को बचा सकते हैं, जब तक मानसून हमारे घर दस्तक ना दे। फिलहाल दस्तक दे रहा है समय एक मधुर गीत के लिए।

कार्यक्रम आसपास में श्रोताओं आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये कार्यक्रम आप सुन रही हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। सेंट जॉन्स कॉलेज में एमबीए और एमसीए की पढ़ाई भी होगी। कॉलेज ने शैक्षणिक सत्र 2026-28 से इन पाठ्यक्रमों का संचालन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। कॉलेज में दोनों नए पाठ्यक्रम AICTE के अनुमोदन और डॉ एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की संबद्धता से संचालित होंगे। पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया को शुरू करते हुए प्राचार्य ने बताया कि कॉलेज छात्रों को ज्ञान कौशल और नैतिक मूल्यों से सशक्त बनाकर वैश्विक स्तर पर सफलता के लिए तैयार करेगा। दोनों ही पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के शताब्दी वर्ष के तहत लगने वाली प्रदर्शनी में गौरवशाली इतिहास दिखेगा। स्थापना दिवस और शताब्दी वर्ष समारोह की तैयारियों के लिए सोमवार को समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक विश्वविद्यालय के पालीवाल पार्क परिसर स्थित बृहस्पति भवन में हुई। कुलपति की अध्यक्षता में प्रदर्शनी समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित ये प्रदर्शनी केवल एक आयोजन नहीं बल्कि विश्वविद्यालय की गौरवशाली विरासत, शैक्षणिक उत्कृष्टता, सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को जन जन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होगी। प्रदर्शनी में कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी अभिलेख धरोहर संग्रहालय एवं शोध केंद्र, विजुअल आर्ट्स गैलरी, विश्वविद्यालय का 100 वर्षों का स्वर्णिम अतीत, केंद्रीय पुस्तकालय गैलरी, इनक्यूबेशन सेंटर एवं स्टार्टअप गैलरी, हुनर गैलरी, यूनिवर्सिटी फूड एंड न्यूट्रिशन गैलरी, इतिहास एवं संस्कृति विभाग का संग्रहालय, यूनिवर्सिटी सोशल कनेक्ट, G20 समिट एवं विश्वविद्यालय, टेक्नोलॉजी ट्री, खेलों इंडिया गैलरी, छात्र कल्याण एवं सांस्कृतिक गतिविधियां, इंटरनेशनल रिलेशन सेल, सामुदायिक रेडियो 90.4 तथा टाइम कैप्सूल सहित विभिन्न विषयक स्टॉल एवं गैलरियां स्थापित की जाएंगी।

आइए अब नजर डालते हैं रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ ने सम्मिलित आवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2026 के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके तहत 2349 पद भरे जाएंगे। आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। अन्य राज्यों के सभी वर्गों के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 जून 2026 कर दी है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 18 जून 2026 थी।

उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन प्रदेश में तेज गेंदबाज तैयार करने की दिशा में एक नई शुरुआत करने जा रहा है। इसके तहत फास्ट बॉलर स्पीड हंट नाम का कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें आगरा को 12 जिलों का मुख्य केंद्र बनाया गया है। 2 और 3 जुलाई को 2 दिवसीय ट्रायल में आगरा समेत 12 जिलों के 1200 से ज्यादा महिला और पुरुष तेज गेंदबाज अपनी रफ्तार का दम दिखाएंगे। वहीं SN मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में SGPGI लखनऊ के विशेषज्ञों की टीम पहले 25 गुर्दा प्रत्यारोपण करेगी। टीम में SN के नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट भी रहेंगे। इसके बाद SN की टीम द्वारा गुर्दा प्रत्यारोपण

प्रत्यारोपण किए जाएंगे। जुलाई के अंत तक गुर्दा प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू हो सकती है। आयुष्मान और राशन कार्ड धारकों को गुर्दा प्रत्यारोपण निःशुल्क सुविधा दी जाएगी।

आगरा में ही वरिष्ठ नागरिकों के एकाकीपन की समस्या के समाधान की दिशा में कमला नगर कर्मयोगी एनक्लेव में वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रस्तावित डे केयर सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिक कल्याण सेवा समिति की पहल पर ये तैयार हो रही है। इस कम्युनिटी हॉल का विधिवत शिलान्यास किया गया। केंद्र में वरिष्ठ नागरिकों के लिए वाचनालय, इंडोर गेम्स और सामाजिक गतिविधियों की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच नारियल फोड़कर डे केयर सेंटर का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में आसपास को जारी रखते हुए श्रोताओं, आइए सुनते हैं एक और मधुर भक्ति गीत।

कार्यक्रम आसपास में श्रोताओं आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। और आइए सुनते हैं गुमशुदा व्यक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं के बारे में। पहली सूचना के अनुसार रुचि पत्नी विमल कुमार निवासी कल्याणपुर थाना भोगांव जनपद मैनपुरी ये दिनांक 15 मई 2026 से लापता है। रंग गोरा चेहरा लंबा जिस्म गहरा कद 5 फुट 2 इंच व उम्र 27 वर्ष है। गुमशुदगी के दौरान ये लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर थाना भोगांव जनपद मैनपुरी पर सूचित करें।

अनुसूचना के अनुसार अर्चना उर्फ नन्ही पत्नी उजागर लाल निवासी विरायमपुर थाना भोगांव मैनपुरी ये दिनांक 19 मई सन 2026 से लापता हैं। रंग गोरा चेहरा लंबा शरीर सामान्य कद 5 फुट 1 इंच और इनकी उम्र 28 वर्ष है। गुमशुदगी के दौरान ये लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर थाना भोगांव जनपद मैनपुरी पर सूचित करें।

अंतिम सूचना के अनुसार तान्या कुमार पत्नी संतोष चंद्र निवासी रुई थाना भोगांव जनपद मैनपुरी ये दिनांक 18 मई सन 2026 से लापता हैं। इनका रंग गोरा चेहरा लंबा शरीर सामान्य कद 5 फीट 1 इंच है। साथ ही इनकी उम्र 25 वर्ष है। गुमशुदगी के दौरान ये गुलाबी रंग की साड़ी पहने हुए थी। इनसे संबंधित कोई भी सूचना मिलने पर थाना भोगांव जनपद मैनपुरी पर सूचित करें। और इसी के साथ ही गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं व आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास यहीं पर संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। हमारा अगला अनुप्रसारण दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसमें समय है समाचार प्रभात का, इंतजार कुछ पलों का।

0: समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान एलएनजी विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
1: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी। कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज दो पद्म विभूषण, सात

0: पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
1: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म भूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: नैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश की कृष्णापट्टनम और काकीनाड़ा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल है। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और

0: 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 बजे से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 बजे के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
1: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
0: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता। बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया। बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले 6वें व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए SIT गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अधिग्रहण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में आग लगने के वाकये के सिलसिले में 4 ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया है। 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। कीमियावी खाद लाने वाले 4 बहरी जहाज अब नए हुर्मुज को पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहे हैं। कतर के हुक्काम ने रास लफान एलएनजी धमाके में 12 भारतीय शहरियों की मौत होने की तस्दीक की है। और यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट आज कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारतीय चैलेंज की कयादत करेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। नई दिल्ली में एक प्राइवेट मीडिया हाउस के जेर एहतमाम एक समिट से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि गुज़श्ता दहाई के दौरान मुल्क की कामयाबियां भरोसे, इस्तेकाम और आलमी सतह पर वसीतर बहबूद के तई अहद की बदौलत हासिल हुई हैं।
1: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
0: G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस में हालिया शिरकत का तज़किरा करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आलमी रहनुमाओं ने मुल्क के मफादात को मुकद्दम रखने के तई भारत की पुख्ता अज़्म को तस्लीम किया है और ये एक ऐसा फलसफा है जिसका मुल्क की पॉलिसियां और तरक्याती एजेंडा तय करने में अहम रोल रहा है। सरकार के गुज़श्ता 12 साल को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी के फरोख और मकामी अशिया के लिए हिमायत जैसे इकदामात इसलिए कामयाब हो सके कि लोगों ने मुल्क की तामीर के जज्बे को अपनाया।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही हैं, उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं।
0: जनाब मोदी ने कहा कि हालिया बरसों में तकरीबन 25 करोड़ अफराद गुर्बत से बाहर आए हैं, जिससे एक नया बड़ा मुतवस्सित तबका उभरा है और इक्तिसादी सरगर्मियों को तकवीत मिली है।
1: 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, न्यू मिडिल क्लास में आए हैं, तो इसका फायदा केवल उन परिवारों तक नहीं रहता बल्कि मिडिल क्लास का भी इतना फायदा होता है क्योंकि ये नया कंज्यूमर है जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है, उसे अल्टीमेटली मिडिल क्लास के लिए अवसर बनते हैं। यानी गरीबी कम होना केवल वेलफेयर का ही विषय नहीं है, यह अवसरों के विस्तार की गाथा है, नई एस्पिरेशन की प्रेरणा है।
0: सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाजात तकसीम करने की तकरीब के दौरान पद्म अवार्ड्स 2026 अता करेंगी। पद्म अवार्ड्स 3 जुमरों, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में अता किए जाते हैं और मुल्क के आला तरीन शहरी एजाजात में शामिल हैं। आज मुनक्किद होने वाली इस तकरीब में सदर जमहूरियत 65 पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस साल हुकूमत ने कुल 131 पद्म अवार्ड का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड शामिल।

0: एवार्ड्स हासिल करने वालों में 19 खवातीन शामिल हैं और 16 अफराद को बाद अजमर्ग ये एवार्ड्स दिए जाएंगे। टेनिस के सरकर्दा साबिक खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूती, फिल्म गुलूकारा अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा उन 56 शख्सियात में शामिल हैं जिन्हें सदर जमहूरिया आज पद्म एवार्ड से नवाजेंगी। इन एवार्ड्स की शुरुआत 1954 में की गई थी और हर साल यौम जमहूरिया के मौके पर इनका ऐलान किया जाता है। मज़कूरा एवार्ड्स गैर मामूली काम के एतराफ़ में तफवीज़ किए जाते हैं और आर्ट, समाजी काम, अवामी उमूर, साइंस, इंजीनियरिंग, तिजारत व सनत, अदविया, अदब व तालीम, खेल, सिविल सर्विस जैसे मुतअद्दी शोबों में ये एवार्ड्स अता किए जाते हैं। आकाशवाणी न्यूज़ दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
1: आकाशवाणी का खबरों का शोभा आकाशवाणी पर पीपल्स पद्मा की सीरीज के तहत खसूसी प्रोग्राम नश्र कर रहा है। इस सीरीज के तहत पद्म अवार्ड्स याफ्ता शख्सियात की जिंदगी और खिदमात पर मबनी एक बसीरत अफरोज प्रोग्राम पेश किया जाता है।
2: नैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सीख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये प्रोग्राम आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 पर सुबह 9:10 से सुना जा सकेगा। इसके अलावा आकाशवाणी के ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी दस्तियाब रहेगा। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने लखनऊ में पेश आए आग लगने के हादसे के तनाजुर में रियासती हुकूमत के 4 ओहदेदारान को मुअत्तल कर दिया है। मस्कुरा हादसे में 15 तलबा हलाक हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 6 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया है और इनमें से 4 अफराद को कल रात गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
4: रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी आग बुझाने वाले महकमे और बिजली महकमे के 4 अहलकारों को मुअत्तिल कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने 6 नामजदों मुलजिमों और दीगर कसूरवार अफराद के खिलाफ BNS और उत्तर प्रदेश फायर सर्विस एक्ट के मुतालिका दफात के तहत FIR दर्ज की है। आग लगने के इस वाक़े की आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है और खसूसी जांच टीम बनाई गई है जो 7 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कल सपहर आग लगने के इस सानहा में कम अज कम 15 अफराद की मौत हो गई थी जिनमें बेशतर 16 से लेकर 25 साल की उम्र के तलबा थे। 9 तलबा जख्मी हुए जिन्हें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में दाखिल किया गया है। बेशतर अमवात दम घुटने की वजह से हुई। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के वजीर अमित शाह आज नई दिल्ली में भारत की कौमी जरई इमदाद बाहमी मार्केटिंग फेडरेशन नेफेड के नीलामी पोर्टल का आगाज करेंगे। नीलामी के अमल में शफाफियत को मुस्तहकम बनाने और कामकाज को सहल बनाने की समत ये एक अहम कदम है। उम्मीद है कि मस्कुरा पोर्टल से नीलामी से मुतालिक सरगर्मियों को मरबूत करने और किसानों, मेंबर इदारों और मुतालिका फरीकों के मफाद में नेफेड के मजमुई कामकाज को वसत देने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म फराहम हो सकेगा। बाद में जनाब अमित शाह नेफेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अरकान के साथ एक मीटिंग की सदारत करेंगे। इस मीटिंग में नेफेड अपनी सरगर्मियों और पेशरफ्त के बारे में एक प्रेजेंटेशन पेश करेगी। नेफेड का मुस्तकबिल का खाका भी पेश किया जाएगा। केमिकल्स और कीमियावी खाद महकमे की वजारत ने कहा है कि यूरिया, डाई अमोनियम फॉस्फेट, DAP और सल्फर की खेप लाने वाले 4 मालबरदार बहरी जहाजों ने गुज़श्ता हफ्ते आबनाए हुरमुज को कामयाबी के साथ पार कर लिया और अब ये मुल्क में अपनी अपनी मुकर्ररा बंदरगाहों की तरफ जा रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा में पारादीप बंदरगाह और गुजरात में मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। वजारत ने कहा है कि कीमियावी खाद की इस दरामद से मौजूदा जरई जरूरियात की तकमील को मजीद तकवियत मिलेगी। वजारत ने यह जानकारी दी है कि मुल्क में कीमियावी खाद का मजमुई स्टॉक

196 लाख टन है, जबकि पिछले साल की इसी मुद्दत में ये 168 लाख टन था। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने चीन के वजीर खारजा वांग यी के साथ कल नई दिल्ली में बातचीत की, जिसमें बाहमी ताल्लुकात को मामूल पर लाने में पेशरफ समेत दोतरफा रवाबित के अहम पहलुओं पर तवज्जो मरकूज की गई। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों के मीटिंग के मौके पर यह बातचीत हुई। जनाब डोभाल ने मीटिंग में इस बात पर जोर दिया कि मुस्तहकम और तामीरी दोतरफा ताल्लुकात से तरफैन के दरमियान बाहमी एतमाद और बेहतर मुफाहिमत कायम करने में मदद मिलेगी। दोहा में भारतीय सिफारतखाने ने यह ऐलान किया है कि कतर के हुकाम ने इस बात की तस्दीक की है कि इतवार की रात को रास लफान में हुए हादसे में 12 भारतीय शहरी हलाक हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सिफारतखाने ने सोगवार खानदानों से ताजियत का इजहार किया और महलुकीन के लिए दुआ की। पोस्ट में मजीद बताया गया है कि कतरी हुकाम ने

0: सोमवार की रात को रासलफान में हुए हादसे में 12 भारतीय शहरी हलाक हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सिफारतखाने ने सोगवार खानदानों से ताजियत का इजहार किया और महलुकीन के लिए दुआ की। पोस्ट में मजीद बताया गया है कि कतरी हुक्काम ने तस्दीक की है कि हादसे में जख्मी होने वालों की हालत मुस्तहकम है और वो जेरे इलाज हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस हादसे में होने वाले जानों के जिया पर दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि दोहा में वाकई भारतीय सिफारत खाना इस हादसे से मुतासिर होने वाले भारतीय शहरियों के खानदान की मदद के लिए कतरी हुकाम के साथ करीबी इश्तराक से काम कर रहा है और उनके राबते में है। कतर के सबसे बड़े गैस के मरकज में हुए धमाके के बाद कम अज कम 13 अफराद हलाक और 16 जख्मी हुए हैं। दाखिली उमूर की वजारत ने बताया कि दोहा में रासलफान जोन में वाकई शहर के अहम रकीक कुदरती गैस एलएनजी की प्रोसेसिंग के मकाम पर ये तकनीकी हादसा पेश आया। कतर के तवानाई के वजीर ने कहा कि इस धमाके से मुल्क की बरामदात मुतासिर नहीं होंगी। यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। इसमें सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारतीय चैलेंज की कयादत करेंगे। मर्दों के सिंगल जुमरे के पहले राउंड में आलमी नंबर 14 लक्ष्य सेन का मुकाबला बेल्जियम के जूलियन काराजी से होगा, जबकि किदाम्बी श्रीकांत चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू का सामना करेंगे। मिक्स डबल्स में ध्रुव रावत और मीनाक्षी की जोड़ी इंडोनेशिया के वीरावन एहसान आदम और सेरेना कानी के खिलाफ मैच के साथ अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। मर्दों के एफआईएच हॉकी प्रो लीग के इफ्तिताही मैच में आज भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। चीन के हुलुम्बियर में मुनक्किदा एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ये पहला मुकाबला होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि भारत एक काबिल भरोसा मईशत के तौर पर दुनिया में तेजी से उभर रहा है। पिछले 12 वर्षों में शुरू की गई फलाही स्कीमों से आवाम को फायदा पहुंचा है। वजीर खारजा और डॉक्टर ए जयशंकर ने मंगोलिया के अपने हम मनसब से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तालीम और सकाफत और कई तरक्याती प्रोजेक्टों समेत अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। इस खबर को आज के अखबारों ने नुमाया किया है। अजीत डोभाल की सदारत में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मशीरों की दो रोजा मीटिंग कल नई दिल्ली में शुरू हुई। कौमी सिक्योरिटी की बदलती हुई सूरत हाल और सिक्योरिटी खतरात के तनाजुर में नई टेक्नोलॉजी के रोल पर हुई बातचीत, ये खबर भी आज के अखबारों ने खसूसियत के साथ शाये किया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड्स अदा करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में आग लगने के वाकये के सिलसिले में 4 ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया है। 4 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। कीमियावी खाद लाने वाले 4 बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज को पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहे हैं। कतर के हुक्काम ने रासलफान एलएनजी धमाके में 12 भारतीय शहरियों की मौत होने की तस्दीक की है। और यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट आज कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारतीय चैलेंज की कयादत करेंगे। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। सुबह के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

गुलजार का लिखा हुआ गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। इस गीत को संगीतबद्ध किया था मदन मोहन ने और फिल्म का नाम था मौसम। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोसले व साथियों की आवाज़ों में। शब्द रचना इंदिवीर की है, धुन बनाई है राजेश रोशन ने और फिल्म का नाम है खून भरी मांग।

और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर व साथियों की आवाजों में। फिल्म का नाम है दाग, गीतकार हैं साहिल, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम श्रोताओं आगे भी जारी रहेगा। मिलते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है।

चोरी चोरी चुपके चुपके। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में। शब्द रचना समीर की थी, संगीत अनु मलिक का दिया हुआ। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत कुणाल गांजावाला और सुनिधि चौहान की आवाजों में। शब्द रचना समीर की है, धुन बनाई है हिमेश रेशमिया ने और फिल्म का नाम है चुप चुप के।

चुप चुप के। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना कुणाल कांचावाला और सुनिधि चौहान की आवाजों में। इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 9:15 होने को हैं। हमारा अगला अनुप्रसारण लखनऊ के आकाशवाणी केंद्र से किया जाएगा, जिसमें कुछ ही देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए महोबा और सिद्धार्थनगर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं महोबा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित श्रोतिये का।
2: 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग के तहत महोबा में योग सप्ताह का आयोजन किया गया। जिले के विभिन्न ऐतिहासिक और प्राकृतिक

0: सांस्कृतिक स्थलों पर योग शिविरों का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर योगाभ्यास किया। योग के माध्यम से स्वस्थ एवं निरोगी जीवन का संदेश दिया गया। योग प्रशिक्षक शकिन गुप्ता, सुनीता कुशवाहा ने प्रतिभागियों को कॉमन योग प्रोटोकॉल का अभ्यास कराया। योग सप्ताह के तहत 18 जून को विजयनगर पक्षी विहार, 19 जून को जैन तीर्थंकर मंदिर तथा 20 जून को आधारशिला वृद्धाश्रम एवं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजकीय स्टेडियम में भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री मनोहर लाल सहित बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर योग किया। योग शिविर में शामिल 85 वर्षीय शिव कुमार गोस्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है और आज विश्व में 170 से अधिक देशों में लोग योग अपना रहे हैं।
1: इस बार जो थीम है 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कि वृद्ध जनों को जो है प्रोत्साहित करिए, वो मंदिरों में भजन पूजन रामायण गीता तो पढ़ते हैं, लेकिन मूल रूप से जब तक किए कि सारे वृद्ध जन योगाभ्यास लेते करें, ताकि हम करेंगे वृद्ध जन तो हमारे बच्चे नाती पोते सब उसको देख करके करेंगे और चारों तरफ जो है एक निरोग का जो वातावरण है वो तो कायम होगा।
0: उन्होंने कहा कि इस वर्ष की थीम वृद्ध जनों के स्वस्थ जीवन को समर्पित है और योग के माध्यम से बुजुर्ग न केवल निरोगी रह सकते हैं बल्कि युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा भी बन सकते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की ओर से महोबा में नया जिला विकास प्रबंधक कार्यालय स्थापित कर दिया है। इससे अब जिले में कृषि व ग्रामीण विकास को गति मिलेगी। अभी तक हमीरपुर के जिला विकास कार्यालय की ओर से महोबा जिले में नाबार्ड की गतिविधियां संचालित होती थीं। महोबा की विशिष्ट चुनौतियों और अवसरों को ध्यान में रखते हुए नाबार्ड ने यहां कार्यालय खोला है, ताकि बेहतर पहुंच, हितधारकों के साथ निकट समन्वय स्थापित हो सके। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक डॉक्टर पुनीत कुमार ने बताया कि नाबार्ड पहले से ही महोबा में कई योजनाओं का समर्थन कर रहा है, जिसमें सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण, किसान समूह, वाटर सेड, विकास व आजीविका संवर्धन शामिल हैं। अब ऋण प्रवाह में सुधार होगा और जनपद के ग्रामीण विकास को गति मिलेगी। अब तक मोरंग और गिट्टी के लिए पहचान रखने वाला महोबा जनपद जल्द ही जिरकोनियम जैसे बहुमूल्य खनिज के लिए भी जाना जाएगा। हरपालपुर और महोबकंठ क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले जिरकोनियम भंडार की पुष्टि हुई है। इसके खनन का लाइसेंस बंगाल की माहेश्वरी माइनिंग कंपनी को दिया गया है। जिरकोनियम का उपयोग दंत चिकित्सा, आभूषण निर्माण, रासायनिक उद्योगों और उच्च तापमान वाले संयंत्रों में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में पहली बार इस खनिज का भंडार मिला है। इससे महोबा को नई पहचान मिलेगी। इसके खनन से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही खनन और उससे जुड़े उद्योगों में निवेश बढ़ेगा। महोबा देश के महत्वपूर्ण खनिज मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बनाएगा। जिरकोनियम उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश अब उड़ीसा, तमिलनाडु और केरल के बाद देश का चौथा राज्य बनने जा रहा है। एकीकृत बागवानी मिशन योजना के तहत महोबा जिले में प्याज लहसुन के आधुनिक भंडार गृह बनाए जाएंगे। इन्हें खास तौर पर बांस और टीन से तैयार किया जाएगा। यह सभी प्राकृतिक तरीके से बनेंगे। सरकार इसके लिए किसानों को अनुदान देगी, ताकि पैदावार सुरक्षित रहे और किसान औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर न हो। जिला उद्यान अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि जिले में करीब 500 हेक्टेयर में प्याज और 200 हेक्टेयर में लहसुन की खेती होती है। हर साल भंडारण न होने से 10-15% फसल बर्बाद हो जाती है। नए भंडार गृह बनाने से किसान अपनी उपज रोककर अच्छे दाम मिलने पर बेच सकेंगे, जिससे उत्पादन बढ़ने को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए सरकार प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अनुदान भी देगी। योजना अंतर्गत कुल इकाई लागत का 50% या अधिकतम 30 लाख रुपए अनुदान के रूप में दिया जाएगा। जिला उद्यान अधिकारी ने किसानों से शासन की इस योजना का लाभ लेने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोबा को 697 करोड़ रुपए की 88 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। 13 साल बाद गोरखगिरी पहुंचे सीएम ने यहां रोपवे बनाने और इसे एडवेंचर टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में बनने वाली तोप मिसाइलों से पाकिस्तान और दुश्मन थर्रा रहा और यहां के देसावरी पान को पहचान और बीड़े के जरिए क्षेत्र को वैश्विक पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए अर्जुन सहायक परियोजना, केन बेतवा लिंक और हर घर नल योजना का जिक्र किया, जिसने बुंदेलखंड की बहनों को पानी के संकट से मुक्ति दिलाई। महोबा जिले में शिक्षा और ज्ञान वर्धन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए सदर विधायक राकेश गोस्वामी, विधान परिषद सदस्य जितेंद्र सिंह सेंगर एवं जिलाधिकारी गजल भरद्वाज ने संयुक्त रूप से राठ रोड स्थित राजकीय पुस्तकालय में 5 स्मार्ट लाइब्रेरी का फीता काटकर शुभारंभ किया।
2: महोबा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सिद्धार्थनगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है डॉक्टर सावन श्रीवास्तव का।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: के नेतृत्व वाली भाजपा एनडीए सरकार के 12 वर्ष सफल पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में बड़े स्तर पर जनसंपर्क अभियान और जश्न मना रही है। इस अवसर पर भाजपा ने सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित बताया है। इस क्रम में भाजपा देश भर में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन और मीडिया संवाद आयोजित कर रही है। सरकार की इन बड़ी उपलब्धियों को जनता तक पहुँचाने के लिए पार्टी द्वारा 5 विशेष बुकलेट भी जारी की गई है। पार्टी का संकल्प है कि इन नीतियों के आधार बनाकर साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जाए। जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी विकास खंड परिसर में भाजपा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि सांसद जगदम्बिका पाल व पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक जय प्रताप सिंह कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर खंड विकास अधिकारी कृतिका अवस्थी ने सभी को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। इस दौरान सांसद व विधायक ने उपस्थित जन समूह को संबोधित किया, साथ ही केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को लोगों में साझा की।
1: भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष के कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के सभी विकास खंडों पे केंद्र सरकार की योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों को प्रदर्शनी के रूप में लगाया गया है और एक स्वास्थ्य शिविर 14 जून से 16 जून तक भी लगाया गया।
0: जनपद सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र में स्थित हिंदू भवन में पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 54वां जन्मदिन को सेवा, समर्पण और जन कल्याण की भावना के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर 55 यूनिट रक्तदान किया। इस दौरान उपस्थित हिंदू संगठन के लोग व भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुख्यमंत्री के दीर्घायु होने की कामना भी की। जनपद सिद्धार्थनगर की थाना सोरतगढ़ पुलिस व सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है कि अपराध व अपराधियों पर निरंतर अंकुश लगाने को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अभिषेक महाजन के नेतृत्व में जिले की पुलिस व सहयोगी पुलिस टीम सक्रिय है। सोरतगढ़ थाना अध्यक्ष नवीन कुमार सिंह, एसआई संतोष यादव, मैं पुलिस टीम मुखबिर की सूचना पर गंचौरा तालाब के पास एक युवक को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए युवक के पास से पुलिस ने चोरी के सोने चांदी के आभूषण व 5,000 रुपए नगद बरामद किया। जनपद सिद्धार्थनगर के इटवा तहसील क्षेत्र में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय महुई से नवनिर्मित अतिरिक्त कक्षा कक्ष का भव्य उद्घाटन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर मुख्य अतिथि ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वल और माल्यार्पण किया। इसके साथ ही विद्यालय की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत की मनमोहक प्रस्तुति की गयी, जिसकी मुख्य अतिथि द्वारा भूरी भूरी प्रशंसा की गयी। सिद्धार्थनगर जिले में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के गांव चलो अभियान के तहत मिठवल ब्लॉक के ग्राम पंचायत बघौली में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री विधायक जय प्रताप सिंह ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पूर्व मंत्री विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। केंद्र सरकार 12 वर्ष पूर्ण होने पर सिद्धार्थनगर जिले में पहुंचे प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार के द्वारा 12 साल में किए गए कार्यों की उपलब्धियों को मीडिया के सामने रखा और बताया गया कि किस प्रकार से इन 12 सालों में केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश की योगी सरकार द्वारा लगातार विकास के कार्य किए गए। सिद्धार्थनगर जिले में आगामी मानसून और संभावित बाढ़ की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों को लेकर बांसी स्थित राप्ती नदी तट पर राज्य स्तरीय बाढ़ राहत एवं बचाव मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान SDRF प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस विभाग, नगर पालिका तथा आपदा मित्रों ने संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव कार्यों का प्रदर्शन कर आपात स्थिति से त्वरित कार्रवाई के तैयारियों का जायजा लिया। सिद्धार्थनगर से सटे भारत नेपाल सीमा के आने जाने वाले रास्तों की निगरानी अब CCTV कैमरों के माध्यम से होगी। क्रिटिकल गैप योजना अंतर्गत भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 23 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। लगाए गए इन CCTV कैमरों और ककराहा बॉर्डर के अंतर्राष्ट्रीय गेट के चेक पोस्ट पर अस्थायी कमरा और शौचालय का निर्माण का लोकार्पण जिलाधिकारी ने किया।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का

साहिर का लिखा हुआ गीत अभी आपने सुना, आशा भोसले मन्ना डेवा साथियों की आवाजों में। धुन बनाई थी रवि ने और फिल्म का नाम था अमानत। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। गीतकार हैं गुलशन बावरा, संगीतकार रवि और फिल्म का नाम है मॉडर्न गर्ल।

आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत हेमंत कुमार के स्वर में, शब्दशना शकील बदायूं की, संगीत हेमंत कुमार का और फिल्म का नाम है 20 साल बाद।

लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 9:45 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं चंद लोकगीत। गायक कलाकार हैं भूपेंद्र। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं कादर खान, ढोलक पर परमानंद और साइड रिदम पर राजकुमार पांडे।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम। गायक कलाकार थे भूपेंद्र। आपके साथ संगतकर्ता में हारमोनियम पर आपका साथी रहे थे कादिर खान, ढोलक पर परमानंद और साइड रिदम पर राजकुमार पांडे। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 10 बज चुके हैं। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरिता।

कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी के सुर में। फिल्म का नाम था आप तो ऐसे न थे, शब्दशना निदा फाजली की थी, संगीत उषा खन्ना का। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का दिया हुआ। फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर व साथियों की आवाजों में अभी आपने सुना फिल्म आन मिलू सजना का गीत। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी के सुर में। फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है।

सिर्फ तुम, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अमीन साबरी, फरीद साबरी व साथियों की आवाजों में। शब्दशना समीर की थी, धुन बनाई थी नदीम शवन ने। और इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरिता यहीं पर संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं बेगम परवीन सुल्ताना का गाया राग तोड़ी में ख्याल गायन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बेगम परवीन सुल्ताना का गाया राग तोड़ी में ख्याल गायन। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं बेगम परवीन सुल्ताना का गाया राग दीनी तोड़ी में ख्याल गायन।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बेगम परवीन सुल्ताना का राग देनी तोड़ी में ख्याल गायन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम आज के कलाकार, और मैं आज आपके साथ आपकी रेडियो साथी नीतू दुबे। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज के कलाकार में आज मैं आपसे बात करने जा रही हूं हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और राजनेता राज बब्बर जी के बारे में। साथियों, इनका जन्म 23 जून यानी कि आज के ही दिन 1952 को उत्तर प्रदेश के टूंडला में हुआ था। साथियों, इनके अभिनय की बात करें तो बचपन से ही इनकी रुचि अभिनय में थी। इन्होंने नई दिल्ली स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय की शिक्षा प्राप्त की और रंगमंच से अपने करियर की शुरुआत की। साथियों, 70 और 80 के दशक में राज बब्बर ने हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई। साथियों, कलाकार के जीवन में बहुत सी परेशानियां भी आती हैं, लेकिन कलाकार तो वही होता है जो हर मुश्किल को पार करते हुए आगे बढ़े और अपनी एक अलग पहचान बनाए।

साथियों, हम बात कर रहे हैं राज बब्बर के बारे में। साथियों, राज बब्बर ने अपने अभिनय सफर की शुरुआत नाटकों से की और 1980 में आई फिल्म इंसाफ का तराजू में इन्होंने एक नकारात्मक भूमिका से उन्हें जबरदस्त सफलता मिली। इसके बाद तो इन्होंने कई फिल्मों निकाह, आज की आवाज, प्रेम गीत और सांवरिया जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम किया। उनके गंभीर और दमदार किरदारों की खूब सराहना की गई। राज बब्बर ने अपने दमदार अभिनय से किरदार को पर्दे पर जीवंत करने का काम किया, जिससे वे लोगों के दिलों पर छा गए। इन्होंने अपने करियर में कई जबरदस्त फिल्में दी और राज

नीति में भी इन्होंने अपनी आवाज बुलंद की। साथियों, राज बब्बर एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने हीरो विलेन के अलावा अन्य भूमिकाओं में भी एक अलग मिसाल पेश की। उनकी इसी कला ने दर्शकों को मुरीद बना दिया। इन्होंने फिल्मों के अलावा टीवी सीरियल बहादुर शाह जफर, महाभारत और महाराजा रणजीत सिंह में भी शानदार भूमिका निभाई।

साथियों, ये प्यारा सा गीत आपने सुना प्रेम गीत फिल्म से। साथियों, कलाकार तो वही है जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों पर राज करे। ऐसे ही कलाकार हैं राज बब्बर। साथियों, फिल्मों के अलावा ये अपनी निजी जीवन को लेकर भी सुर्खियों में रहे। 1975 में इन्होंने मशहूर अभिनेत्री नादिरा से शादी की। इनके दो बच्चे हुए, आर्य बब्बर और जूही बब्बर। और 1986 में इन्होंने फिल्म अभिनेत्री स्मिता पाटिल से शादी की, जिनसे इन्हें प्यार हो गया था। उसी साल उनका बेटा हुआ प्रतीक बब्बर, जिसके जन्म के कुछ हफ्ते बाद ही स्मिता पाटिल का निधन हो गया। जीवन के उतार चढ़ाव के साथ और फिल्मी दुनिया में अपना नाम बनाने के बाद इन्होंने 1989 में राजनीति में कदम रखा। उन्होंने जनता दल के साथ जुड़कर राजनीति करियर की शुरुआत की। बाद में वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। राजनीति के सफर में 1994 से 1999 तक वे राज्यसभा सदस्य भी रहे। साथियों, आपको बता दें कि राज बब्बर 3 बार लोकसभा के सदस्य और 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं।

साथियों, राज बब्बर के अभिनय में सादगी और एक अलग ही अंदाज नजर आता है जो उनको खास बनाता है। हर अभिनेता की एक अलग पहचान होती है जो उसे अलग बनाती है। ऐसे ही हैं राज बब्बर, जिन्होंने अपने अभिनय से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। उन्होंने अपने भाई किशन के साथ मिलकर फिल्म निर्माण कंपनी बब्बर फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की। राज बब्बर साथियों दिल के भी अच्छे इंसान हैं, किसी की मदद करने को भी वो आगे आ जाते हैं। आपको पता है हिंदी फिल्म शक्ति जो कि 1982 में आई थी, उसमें अमिताभ बच्चन द्वारा निभाई गई भूमिका पहले राज बब्बर को दी गई थी, लेकिन बाद में ये भूमिका अमिताभ बच्चन को दी गई।

साथियों, जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है और साथियों, सफलता भी यूं ही नहीं मिलती। एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है सफलता के लिए। बहुत मेहनत से मंजिल तक पहुंच पाते हैं। एक साधारण रंगमंच कलाकार से लेकर बॉलीवुड के दिग्गज सितारे और फिर एक कद्दावर राजनेता बनने तक राज बब्बर का जीवन संघर्ष, प्यार और उतार चढ़ाव से भरा रहा। साथियों, जीवन में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है जो जिंदगी का रुख बदल देता है। आपको बता दें, ऐसा ही हुआ था राज बब्बर जी के साथ। पता है, जब वे सातवीं कक्षा में पढ़ते थे तब उन्होंने एक फिल्म देखी, जमीन के तारे। उस फिल्म में बबलू और डेजी ईरानी ने बाल कलाकार के रूप में काम किया। उस फिल्म को देखने के बाद उनके मन में भी अभिनेता बनने की जिज्ञासा जागी।

साथियों, आज उनके जन्मदिन पर हमारी तरफ से उनको स्वस्थ और सुखद जीवन की कामना। इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11:30 हो चुके हैं। अब आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो साथियों, बने रहिए अपनी रेडियो दोस्त नीतू दुबे के साथ इस रेडियो के सफर पर और सुनते रहिए अपने मनपसंद कार्यक्रम। साथियों, तो अब हम बात करते हैं अपने अगले कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत की, जिसमें हम आज आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस की, जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। साथियों, सबको खुशहाल जीवन जीने का अधिकार है। ये बात सही है कि जीवन साथी चले जाने के बाद महिलाओं के जीवन में बहुत सी कठिनाइयां और दुख आते हैं, लेकिन उन्हें भी खुशियां चाहिए। जीवन नीरस नहीं होना चाहिए, आखिर उनका क्या कसूर। पति के निधन के बाद एक महिला के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। दुख और अकेलेपन के साथ साथ कई बार उसे परिवार और समाज की भी उपेक्षा झेलनी पड़ती है। ऐसे में उसे सहानुभूति से ज्यादा सम्मान, सहयोग और आत्मनिर्भर बनने के अवसरों की आवश्यकता होती है, क्योंकि जीवन रुकने का नहीं, चलने का नाम है।

साथियों, जीवन रुकने का नहीं चलने का नाम है। तो हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के बारे में। साथियों, दुनिया भर में करोड़ों विधवा महिलाएं सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक चुनौतियों का सामना करती हैं। समय के साथ काफी बदलाव तो आया है, लेकिन कई स्थानों पर आज भी उन्हें भेदभाव, उपेक्षा और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा संपत्ति के अधिकारों के लिए आज भी उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में ये दिवस उनके अधिकारों की रक्षा और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का संदेश देता है। हर किसी के अपनी शादी को लेकर और शादी के बाद के जीवन को प्यार से बिताने के सपने होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये सपने सभी के पूरे हो जाएं। कई लोगों के साथ किसी न किसी वजह से उनके जीवन साथी का साथ छूट जाता है। ऐसे में महिलाओं के हाथ दुख और निराशा रह जाती है। आज भी समाज में महिलाओं को उस नजर से नहीं देखा जाता जिसकी वो हकदार हैं। ऐसे में समाज की जिम्मेदारी बनती है कि विधवाओं को भी बाकी के लोगों की तरह दर्जा मिले, उन्हें भी खुशियों के साथ जीने का अधिकार है, क्योंकि जीवन कभी भी ठहरता नहीं है।

साथियों, जीवन चलने का ही नाम है और वो ही आगे बढ़ते हैं जो समय के साथ चलते हैं। दुख दर्द आते हैं लेकिन जीवन में रुकना नहीं है। साथियों, सभी उम्र क्षेत्र और संस्कृति की विधवाओं को विशेष पहचान दिलाने के लिए 23 जून 2011 को पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाने की घोषणा की गई और तब से हर साल इस दिन को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में विधवा महिलाओं की स्थिति में सुधार हो सके ताकि वे भी बाकी लोगों की तरह सामान्य जीवन जी सकें और बराबरी का अधिकार प्राप्त कर सकें, क्योंकि भले ही हम आज कितनी ही तरक्की कर चुके हैं लेकिन विधवाओं को आज भी बराबरी की नजर से नहीं देखा जाता है। उनके जीवन में कहीं न कहीं दुख और दर्द रहता ही है।

साथियों, आज भी दुनिया की लाखों विधवाओं को गरीबी, हिंसा, बहिष्कार, बेघर, बीमार और स्वास्थ्य जैसी समस्याओं और कानून व समाज में भेदभाव सहन करना पड़ता है, जिससे उन्हें बहुत मानसिक कष्ट से गुजरना पड़ता है। इसीलिए ये दिवस महिलाओं की समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ये दिवस विधवाओं की स्थिति पर प्रकाश डालता है, जिससे पता चलता है कि उन्हें समाज में किस प्रकार की उपेक्षा एवं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर नागरिक समाज संगठन भी समाज के इस उपेक्षित वर्ग की अनदेखी करते हैं। आमतौर पर विधवाओं को समाज से बहिष्कार जैसी स्थितियों से भी गुजरना पड़ता है। विधवाओं और उनके बच्चों के साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार मानव अधिकारों की श्रेणी में गंभीर उल्लंघन है और आज के विकास में बड़ी बाधाओं में से एक है।

साथियों, किसी महिला के विधवा हो जाने के बाद समाज तो छोड़ दीजिए, परिवार में भी उनको वैसा सम्मान नहीं मिल पाता जिसकी वो हकदार हैं। परिवार और समुदाय की ये जिम्मेदारी है कि वे उन्हें सहयोग, सुरक्षा और आत्मविश्वास प्रदान करें। साथ ही ये भी जरूरी है कि उनके प्रति मौजूद पूर्वाग्रहों और नकारात्मक धारणाओं को समाप्त किया जाए। कानून भी सभी नागरिकों को समान अधिकार और गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस इसी संदेश को मजबूत करता है कि विधवा महिलाएं सहानुभूति की नहीं बल्कि सम्मान, समान अवसर और अधिकारों की हकदार हैं। सभी को समान रूप से जीने का और खुश रहने का अधिकार है।

श्रोता, इसी गीत के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुविचार के लिए। तो आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का, यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे, गांव गणेशधाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलाऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी, और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि इसी तरह से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। स्वागत है एक बार फिर से, और आइए अब चलते हैं हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भारत की विभिन्न झीलों के बारे में, याद है ना। हमने बात की थी मणिपुर की अनोखी झील लोकटक, हिमालय की सुरम्य वादियों में बसी मानसरोवर झील, ओडिशा की चिल्का झील और कश्मीर की डल झील की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओं, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र, रहस्यमयी और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होगा उनके बारे में जानना, है ना। लेकिन पहले आपको ये तो बता दें कि हम गुफा को भौगोलिक रूप से परिभाषित कैसे करेंगे। तो आइए सुनते हैं इसकी परिभाषा। श्रोताओं, आम बोलचाल की भाषा में हम झील, पर्वत, लगून, मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओं, गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछें कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती या पर्वत या समुद्र के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी खोखली जगह को गुफा कहते हैं। हाँ, ये कभी कभी मानव निर्मित भी हो सकती है। तो आइए अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अद्भुत गुफा की, जिसे हम भीम बैठका गुफा के नाम से जानते हैं। श्रोताओं, इस नाम के पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है। ऐसा कहते हैं कि यह नाम महाभारत के भीम से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भीम इस स्थान पर रुके थे, भीम बैठका यानी भीम के बैठने की जगह। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। सचमुच ये बड़ी रोचक बात है, इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। तो आइए श्रोताओं, अब जानते हैं कि भीम बैठका की गुफा

0: है कहाँ? तो आपको बता दें, ये जगह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, जो राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, और वो प्रश्न ये है कि भीम बैठका की गुफाओं का पता कैसे चला? तो श्रोताओं, इसके पीछे बड़ा मनोरंजक किस्सा है। वहां के स्थानीय लोग तो इन गुफाओं के बारे में जानते थे, लेकिन इसका पता विश्व को तब चला जब डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने इसके बारे में प्रामाणिक ढंग से जानकारी दी। तो आइए जानते हैं कैसे पता चला डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी को। तो आपको बता दें कि डॉक्टर विष्णु वाकणकर एक जाने माने पुरातत्वविद रहे हैं। वर्ष था 1956। एक बार वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। ट्रेन विंध्य पर्वतमाला से होकर जा रही थी। श्रोताओं, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर को जरूर याद रखिएगा। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसी चट्टानों और पहाड़ियों को देखा जो बड़ी कलात्मक लगी। वे दूसरी चट्टानों से भिन्न थीं। वे उन्हें अपनी फ्रांस और स्पेन की यात्रा के दौरान देखी गई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों वाली चट्टानों जैसी लगी। तो फिर क्या था, वे उतर गए अगले स्टेशन पर और उस स्थान पर पहुंचे। बाद में उन्होंने बताया कि पहली गुफा में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वहां बहुत सारे शैल चित्र यानी पत्थरों पर बने चित्र देख लिए, जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। जी हाँ श्रोताओ, इन गुफाओं में 30,000 वर्ष तक पुराने शैल चित्र हैं, जो पुरापाषाण युग से मध्यकाल तक की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु वाकणकर को सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और वर्ष 2003 जुलाई में यूनेस्को ने भीम बैठका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया। ये खोज पुरातत्व और मानव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि भारत में मानव सभ्यता कितनी प्राचीन और निरंतर है। तो आइए श्रोताओं, आप जानते हैं कि इन गुफाओं में क्या ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मानव आवास है, जिसमें 600 से भी अधिक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स हैं। ये प्रकृति द्वारा बने आवास हैं। इन गुफाओं में शिकार, सामूहिक नृत्य, युद्ध, पशु पक्षी और प्रारंभिक मानव की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र हैं। श्रोताओं, इन चित्रों में गेरुआ, लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये रंग वनस्पति से बने हैं, इसलिए हजारों वर्षों बाद भी ये टिके हुए हैं। अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। ये वो जगह है श्रोताओं, जहां संभवतः आदि मानव ने पहली बार पत्थरों की दीवारों को कैनवस बनाया। हम भीम बैठका की गुफाओं को भारत के इतिहास की पहली चित्र गैलरी भी कह सकते हैं। तो श्रोताओं, भीम बैठका की गुफाएं सचमुच अद्भुत हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन दोनों पतों पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी वसंती। श्रोताओं, ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण नेत्री वसंती के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया? माँ की गोद ने और नदियों की घाटियों में हजारों हजारों साल से माँ ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में वो हम सफर रही है।

लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस माँ के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं। 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगलों को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा गौरा देवी थी।
1: और इस बार भी कोसी की रक्षा के लिए एक महिला ही आगे आई। हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन,
1: बावरी है। अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हाँ चल घर चल। अरे चल सब खोज रहे हैं तुझे। अरे चल ना जल्दी कर।

0: तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।

बेटी तू बर्बाद हो गई, तेरी दुनिया हमेशा के लिए।

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी, तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई। मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो। ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको। तुम अपने जीवन को मायने दे सको।
0: बसंती घबरा कर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी?

0: बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
0: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसीदी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे
1: दीदी,
2: क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी, वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है, चल ठीक है दीदी, चलो चलो।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका उपाय क्या है, क्या करें? हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।
3: कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

अब हम लौटते हैं लक्ष्मी आश्रम की ओर, जहां सुबह सवेरे झोला लेकर बसंती बहन गांव का रुख कर रही है। ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं। वो रोज सुबह 6 बजे बरासे घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं। शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। एक दिन बसंती को महिलाओं का एक झुंड मिला। सभी के हाथों में रस्सी और दराती थी। वे सब बहुत तेजी से जंगल की ओर जा रहे थे। बसंती दीदी समझ गई कि ये सब लेसाल गांव की महिलाएं हैं और जंगल में लकड़ी काटने जा रही हैं। बसंती दीदी ने उन्हें पुकारा।

0: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
1: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
0: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
2: वो भला क्यों? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
0: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
1: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
2: हाँ?
1: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
2: और क्या
1: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
2: हाँ?
0: आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
1: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा, पर कोसी को हम कैसे बचा सकते हैं?
0: आमा इसका जवाब तेरे पास है।
1: मेरे पास?
0: हाँ तेरे पास। आमा तुम इन सब को बताओ कि कोसी नदी बनी कैसे है।
1: कोसी बनी कैसे? ये कैसा सवाल है? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे पेनाथ जंगल के बांज बुरांश के घने पेड़ प्राकृतिक जल को संचित करते हैं और उसी से कोसी का जन्म हुआ?
2: और क्या?
0: बिल्कुल ठीक। ऐसे में अगर हम जंगल काटेंगे तो कोसी में पानी घटेगा या बढ़ेगा?
2: घटेगा।
1: अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई। खाली हमारे समझने से क्या होता है, हम अकेले क्या कर सके हैं?
0: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
1: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
2: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो
3: चलो चलो चलो।
2: हाँ जल्दी चलो, हम सबको बताते हैं।
4: और इन औरतों का काफिला एक बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, खीराकोटा, कांटली आदि गांवों में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने ये साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे नई फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम का पहला तराना आइए सुनते हैं मुझसे दोस्ती करोगे फिल्म से, स्वर लता मंगेशकर और उदित नारायण का है। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सजाया है राहुल शर्मा ने।

मुझसे दोस्ती करोगे इस फिल्म का तराना अभी आपने सुना, स्वर लता मंगेशकर और उदित नारायण का था। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सजाया था राहुल शर्मा ने। आइए अगला तराना सुनते हैं यारियां फिल्म से, शफाकत अमानत अली के स्वर में।

श्रोताओं, यारियां फिल्म का तराना अभी आपने सुना। आइए अब सुनते हैं अगला तराना, कल हो ना हो फिल्म से, स्वर अलका याग्निक और शान का है। जावेद अख्तर के लिखे गीत को संगीत से सजाया है शंकर एहसान लॉय ने।

कल हो न हो इस फिल्म का तराना भी आपने सुना अलका याग्निक और ईशान के स्वर में। जावेद अख्तर के लिखित को संगीत से सजाया था शंकर एहसान लोय ने। आकाशवाणी आगरा से आप सुन रहे हैं नई फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम का अगला तराना ये सुनते हैं बचना ए हसीनों फिल्म से।

बचना ए हसीनो इस फिल्म का तराना अभी आपने सुना स्वर के और शिल्पा राव का था। अन्विता दत्त के लिखे गीत को संगीत दिया था विशाल शेखर ने। श्रोताओ कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं साया फिल्म का ये तराना उदित नारायण के स्वर में। गीत रचना सईद कादरी की है और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

1530 किलो हर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ निफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निफेड किसानों की सेवा कर रहा है।
1: नाफेड ने एक प्रकार से नाफिक्स डॉट इन दृष्टि ईआरपी और नाफेड कल्याण ये चार पहलों की शुरुआत तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
0: इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
2: They all constitute an important threats for us.
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राप्त दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है। अयोध्या राम मंदिर में प्राप्त दान के दुरुपयोग के आरोपों के सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश

0: लखनऊ के अलीगंज इलाके में कल दोपहर एक कसीरुल मंजिल इमारत में एक कोचिंग और एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 15 तुलबा की मौत हो गई और कई दीगर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए केजीएमयू ट्रामा सेंटर में दाखिल कराया गया। हादसे की इतला मिलते ही वजीर आला योगी आदित्यनाथ अपना अलीगढ़ दौरा छोड़कर सीधे लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने जाय वकू का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। बाद अजा उन्होंने जख्मियों से मुलाकात के लिए केजीएमयू का दौरा भी किया। वजीर आला ने पुलिस के डायरेक्टर जनरल और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला को पूरे वाकये की तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी देर रात लखनऊ पहुंचे। जाय वकू का मुआयना करने के बाद उन्होंने जख्मियों से मिलने और उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए केजीएमयू का दौरा किया। वजीर दिफा ने वाकये को अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि जिम्मेदारी का तयन करने के लिए तहकीकत की जाएगी। दरियासना वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर हुकूमत ने वाकये की जांच के लिए 2 रुकनी जांच कमेटी तश्कील दी है। लखनऊ आतिशजदगी के वाकये में पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हमारे नामा निगार ने इतला दी है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार किया गया। हमारे नामा निगार ने बताया,
1: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। इस फायर ब्रिगेड पुलिसकर्मी, SDRF और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि राज्य के DGP और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी और आग लगने के कारणों का पता लगाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, मरकजी वजीर मुमलिकत बराए खजाना और बीजेपी के रियासती सदर पंकज चौधरी, नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य, SP सरबरा अखिलेश यादव, BSP सरबरा मायावती और कई दीगर वुजरा ने लखनऊ आतिशजदगी के वाकये को अलमनाक करार दिया है और खानदानों से दुख का इजहार किया है। वजीर आजम ने मरने वालों के लवाहिकीन को कौमी रिलीफ फंड से 2-2 लाख रूपये और जख्मियों को 50-50 हजार रूपये की माली इमदाद का ऐलान किया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी वालों के लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हजार रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे शहरी सरमायाकारी तकरीब में पद्म अवार्ड पेश करेंगी। हमारे नामानिगार के इतला है कि कुल 65 अवार्ड आज पेश किए जाएंगे, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश की 4 शख्सियत समेत 56 पद्मश्री शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
2: उत्तर प्रदेश की जिन हस्तियों को पद्मश्री मिलेगा उनमें कला के क्षेत्र में अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव, शिक्षा के क्षेत्र में मंगला कपूर के नाम शामिल हैं, जबकि कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रहने वाले रघुपत सिंह को मरणोपरांत ये सम्मान दिया जाएगा। इससे पहले पिछले महीने 25 मई को श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
0: भारतीय जनसंघ के बानी सदर और अजीम माहिर तालीम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यौम शहादत के मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ, नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक, आबी बिजली के वजीर स्वतंत्र देव सिंह और दीगर मौजजीन ने उनके मुजस्मे पर फूल चढ़ाए। इस मौके

0: पार्टी अहदेदारान और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद रहे। इस मौके की मुनासिबत से उत्तर प्रदेश के महकमे जंगलात ने बड़े पैमाने पर रियासत भर में दरख्त लगाने की मुहिम शुरू की है। एक पेड़ माँ के नाम के उनवान से इस मुहिम का मकसद माहौलियात के तहफ्फुज़ और रियासत को सरसब्ज बनाने के बारे में बेदारी पैदा करना है। आज रियासत के तमाम 75 अज़ला में दरख्त लगाए जा रहे हैं। वजारत बराए अकलियती उमूर हुकूमत हिंद के तहत हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2027 के लिए अहल दिलचस्पी रखने वाले आजमीन से ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की हैं। इस हवाले से जारी करदा बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन के मुताबिक ऑनलाइन दरख्वास्तें 22 जून 2026 से शुरू होंगी और 20 जुलाई 2026 तक रात 11:59 तक जारी रहेंगी। ख्वाहिशमंद आजमीन हज कमेटी की सरकारी वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in या हज सुविधा मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शनावास सी की तरफ से जारी करदा नोटिस में कहा गया है कि हज नशिस्तों की मनसूखी पर भारी जुर्माना होगा, इसलिए आजमीन को मुकम्मल तैयारी और पुख्ता आजम के बाद ही दरख्वास्त देना चाहिए। और रियासत में गर्मी की लहर जारी है। दरियसना कल दोपहर गरज चमक के साथ होने वाली हल्की बारिश ने मशरकी उत्तर प्रदेश के कई जिला बशमूल गोरखपुर महाराजगंज कुशीनगर और बस्ती के रिहायशियों को कुछ राहत पहुंचाई। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान देवरिया गोरखपुर संतकबीरनगर कुशीनगर महाराजगंज सिद्धार्थनगर और बलरामपुर समेत कई जिला में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। ताहम महकमा मौसमियात ने दर्ज हरारत में कोई खास तब्दीली की पेशगोई नहीं की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:15 हो चुके हैं। अब बहने सुनेंगी अपना मनपसंद कार्यक्रम घर संसार।

कार्यक्रम घर संसार सुन रही हमारी सभी बहनों को वंदना तुली का प्यार भरा नमस्कार। बहनों कैसी हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगी और व्यस्त भी होंगी। भाई व्यस्त होना तो बहुत अच्छी बात है, पर अस्त व्यस्त ना हो, क्योंकि बहनों कई बार क्या होता है कि जीवन में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब सब कुछ थम सा जाता है। जीवन में कई बार परिस्थितियाँ हमारी इच्छाओं के विपरीत होती हैं। जीवन साथी का छूट जाना किसी भी महिला के लिए बेहद कठिन समय हो सकता है, लेकिन अनेक महिलाएं इस दुख को अपनी कमजोरी नहीं बनने देती, बल्कि हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ जीवन की नई राह चुनती हैं। कहते हैं जीवन की दूसरी पारी आसान नहीं होती, लेकिन जब आत्मबल मजबूत हो तो हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। परिवार और समाज का सहयोग भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहनों आज 23 जून है और आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस हमें ये याद दिलाता है कि विधवा महिलाओं को केवल सहानुभूति की नहीं बल्कि सम्मान, अवसर और समान अधिकारों की भी आवश्यकता है। और यदि हम विधवा महिलाओं को प्रोत्साहन दें, उनके निर्णयों का सम्मान करें और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर दें, तो वे न केवल अपना जीवन संवार सकती हैं बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा बन सकती हैं। आज अनेक महिलाएं शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय और सामाजिक कार्यों के माध्यम से अपनी नई पहचान बना रही हैं। आज कई महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर या फिर छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करके बच्चों की शिक्षा और परिवार की जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाते हुए ये साबित कर रही हैं कि जीवन किसी एक मोड़ पर रुकता नहीं है। बहनों हमेशा याद रखिए, एक अध्याय के समाप्त होने का अर्थ ये नहीं कि पूरी कहानी खत्म हो गई। कई महिलाएं अपने संघर्षों को शक्ति में बदलकर जीवन की दूसरी पारी को सफलता की नई मिसाल बना रही हैं। और ये दिवस हमें उन महिलाओं के साहस को सलाम करने का अवसर भी देता है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी हार नहीं मानी और अपने आत्मबल से नई पहचान बनाई। बहनों जीवन की दूसरी पारी भी उतनी ही सुंदर, सार्थक और सफल हो सकती है जितनी पहली। इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलिए आइए सुनते हैं ये मधुर गीत।

0: मैनू, क्या आपने कभी गौर किया है कि हम दूसरों की गलतियां तो तुरंत पकड़ लेते हैं, लेकिन अपनी कमियों पर उतना ध्यान नहीं देते। यही बात हमें याद दिलाती है प्रसिद्ध कहावत, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। जी हाँ मैनू, हमारी आज की वार्ता का विषय भी यही है। आइए सुनते हैं वार्ता, और वार्ताकार हैं कुसुम रावत।
1: महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस में सामाजिक अनुभवों व ज्ञान की बातों का भंडार है। मेघनाथ वध होने के पश्चात लंका की महिलाएं रावण की आलोचना करती हैं, तब रावण उन्हें संसार की नश्वरता को इंगित करते हुए ज्ञान की बातें करता है। वह स्वयं तो पतित हो चुका है, पर शुभ और पवित्रता की बातें कर रहा है। तभी तुलसीदास कहते हैं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरही ते नर नघनेरे। अर्थात दूसरों को उपदेश देने में तो लोग बहुत निपुण होते हैं, परंतु जो अपने उपदेशों के अनुसार ही आचरण भी करते हों, ऐसे लोग कम ही होते हैं। उपदेश देने का अर्थ होता है किसी के हित की बात करना, अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करना, लोगों को अच्छे आचरण तथा व्यवहार सिखाने के लिए प्रेरित करना, किसी को सही राह दिखाने के लिए अच्छी बातें बताना, या विद्वानों द्वारा लोगों को धर्म और नीति संबंधी बातें बताना। जब उपदेशक स्वयं नीतिगत, सद्व्यवहारी और कर्तव्य पालन करने वाला होता है, तो उसकी बातें सामने वाले को प्रभावित करती हैं और प्रेरणा देती हैं। इस संदर्भ में इस एक घटना का उल्लेख अक्सर किया जाता है। एक बार एक महिला गांधी जी के पास अपने बच्चे की शिकायत लेके आई कि वह बहुत गुड़ खाता है, जिससे उसके दांत भी खराब हो रहे हैं। गांधी जी इस आदत को छुड़वाएं। इस पर गांधी जी ने उन्हें एक हफ्ते बाद आने को कहा। हफ्ते भर बाद आने पर उन्होंने फिर उन्हें अगले हफ्ते आने को कहा। इस प्रकार 3 हफ्ते बीत गए। चौथी बार आने पर गांधी जी ने बच्चे को प्यार से समझाया कि ज्यादा गुड़ खाना ठीक नहीं है, कम खाया करो। फिर उन्होंने महिला से कहा कि अब बच्चा कुछ दिनों में गुड़ खाना छोड़ देगा। इस पर महिला ने जिज्ञासावश पूछा कि यह बात तो आप पहली बार में ही कह सकते थे, फिर इतने चक्कर क्यों लगवाए? इस पर गांधी जी ने कहा कि 4 हफ्ते पहले मैं भी बहुत गुड़ खाता था, और मैं किसी को ऐसी सीख कैसे दे सकता हूँ जिसे मैं खुद व्यवहार में ना लाता हूँ। ऐसे ही बाबा कबीर दास का उदाहरण है कि वे फकीर थे, अपने अनुभवों से सीख लेते हुए उस पर अमल करते हुए उन्होंने जो उपदेश दोहों के रूप में आम जन को दिए, वे आज भी प्रासंगिक हैं। जैसे

0: चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन के शाह। यानी लोभ मोह माया से दूर रहकर लोगों को सही बातें बताकर फकीरी में रहने वाला ही राजा है। कबीरदास, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, भगत सिंह, अब्दुल कलाम आजाद जैसे बहुत से महानुभवों के वचन आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं था। कलाम जी ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और मजबूत इरादों से विपरीत परिस्थितियों के बावजूद देश के सर्वोच्च पद को सुशोभित किया था। उनके कथनों को उपदेश मानकर ग्रहण करने से सबका भला ही होगा। उन्होंने कहा, अगर चार चीजों का पालन किया जाए, उद्देश्य, ज्ञान, मेहनत और दृढ़ता, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। कलाम जी के वाक्यों से प्रेरित होने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने स्वयं उनके राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन की ईमानदारी देखी है। तुलसीदास जी का सदियों पहले लिखा गया यह वाक्य आज ज्यादा प्रासंगिक हो रहा है। यानी लगभग हर क्षेत्र के दिग्गजों पर यह वाक्य सटीक बैठ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं ऐसे जनसेवकों की जिनके कांधों पर हमारे देश की उन्नति और विकास की जिम्मेदारी होती है। वे जनता को तो उपदेश देंगे कि अपने देश के प्रति ईमानदार रहो, भ्रष्टाचार ना करो, टैक्स समय पर चुकाओ, देश का मान रखो, नदियां स्वच्छ रखो, पर्यावरण बचाओ, पर स्वयं क्या करते हैं? अनैतिक और अनियमित तरीकों से धन इकट्ठा करते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़वाते हैं, दूसरे देशों में जाकर अपने देश की बुराई करते हैं, नदियों को गंदा करने और खोखला करने वाले उद्योगों को अप्रत्यक्ष रूप से वरद हस्त देकर बढ़ावा देते हैं, अपनी अनैतिक संपदा को विदेशों में जमा करते हैं, अपने बच्चों को देश में न पढ़ाकर विदेशों में पढ़वाते हैं, अपने बच्चों को सेना में भेजकर जनता को प्रेरित करने के बजाय उन्हें फिल्म बिजनेस और राजनीति में ही भेजते हैं। इन्हीं पर यह वाक्य सबसे सही सिद्ध होता है। यदि इनकी कथनी व करनी में साम्य होता तो आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी इन्हीं उपदेशों को आज भी दोहराने की जरूरत न पड़ती। इन्हीं के समकक्ष आते हैं तथाकथित धर्मगुरु, जिन पर जनता आंख मूंद कर श्रद्धा दिखाती है। वे भड़कीले वस्त्रों से सुशोभित होकर महंगे व सब सुविधाओं से युक्त अपने आलिशान महलों नुमा आश्रमों से लोगों को संसार, धन व शरीर की नश्वरता का पाठ पढ़ाते हैं, त्याग और तपस्या समझाते हैं। अज्ञानी जनता उनकी जय जयकार करती रहती है और वे अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। इनके अतिरिक्त आज एक अन्य क्षेत्र बड़ी तेजी से उभर कर आया है, जहां यह वाक्य लगभग 80% लागू होता है, और वह क्षेत्र है आधुनिक एकल परिवार, जहां माता पिता ने भले ही अपना बचपन मौज मस्ती बेफिक्री से बिताया हो, पर अपने बच्चों पर हजार बंदिशें लगा रहे हैं। खुद पढ़ाई में भले ही औसत रहे हों, पर बच्चों को सबसे अच्छा रिजल्ट लाने, IIT IIM में दाखिला लेने को उसे उपदेश दे देकर ट्यूशन पढ़ा पढ़ाकर मशीन बनाने में लगे हुए हैं। छोटे बच्चों के माता पिता बच्चों को मोबाइल लैपटॉप से खेलने के लिए तो मना करेंगे, पर खुद ज्यादा वक्त उसी में लगे रहेंगे। इसको देखकर बच्चे भी जवाब देते हैं कि आप खुद तो हर वक्त मोबाइल पर रहते हैं। इसी कारण बच्चे भी एक कान से सुनकर दूसरे कान से इन बातों को निकाल देते हैं। जो माता पिता बच्चों के सामने वो ही करते हैं जिनके लिए बच्चों को कहा जा रहा है, जैसे बच्चे को पढ़ने को बोला है तो खुद भी स्वयं रचनात्मक करें, बच्चे को बाहर खेलने को बोला है तो खुद भी बाहर टहलें, बच्चे की हॉबी विकसित करने के लिए खुद की भी रुचियों को समय दें या अपनी जिम्मेदारी के कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करते रहें, तो देखिए बच्चे भी आपका ही अनुसरण करेंगे। अंत में व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि सामान्यतया बुद्धि का एक सामान्य स्तर होता है, अपवादों को छोड़कर, तो हम स्वयं को हीन दुखियारा क्यों समझें कि दूसरों से उपदेश लेने की जरूरत पड़े। अपनी शिक्षा, जागरूकता और चीजों व स्थितियों को समझने की क्षमता का निरंतर विकास करते रहें, भावनात्मक तौर पर अपने आप की कमजोरियों का विश्लेषण करें, उनका सामना करें, उनसे निपटें। वास्तविक विद्वानों सत्पुरुषों से ही ज्ञान लें, दूसरों से सीख लें, उपदेश नहीं। अपनी पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मान्यताओं का विश्वास पूर्वक पालन करें, जो बुरा लगे उसे छोड़ दें। परिवार, समाज, देश से प्रेम करें, नियम कानूनों का पालन करें, फिर किसी पर उपदेश कुशल बहुतेरे जैसे उपदेशक की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बहनों, आज की वार्ता भी कोई उपदेश नहीं बल्कि मेरे मन के भाव हैं।
1: बहनों, अभी आपने सुनी कुसुम रावत की वार्ता पर उपदेश कुशल बहुतेरे। चलिए बात करते हैं बहनों, गर्भावस्था हर महिला के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है और इस दौरान माँ के स्वास्थ्य का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं के लिए समय पर टीकाकरण बेहद आवश्यक माना जाता है।

0: गर्भावस्था में लगाए जाने वाले टीके माँ को गंभीर बीमारियों से बचाने के साथ साथ नवजात शिशु को भी शुरुआती महीनों में सुरक्षा प्रदान करते हैं। विशेष रूप से टिटनेस और डिप्थीरिया जैसे इंजेक्शन से बचाव के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। मेनो मातृत्व टीकाकरण से डिलीवरी के दौरान इन्फेक्शन का खतरा कम होता है और नवजात शिशु में कई गंभीर बीमारियों की आशंका भी घटती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को अपनी नियमित जांच के साथ साथ टीकाकरण की जानकारी भी स्वास्थ्य कर्मियों से अवश्य लेनी चाहिए। बहनों, आज स्वास्थ्य केंद्रों और सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध है। नियमित प्रसव पूर्व जांच के दौरान डॉक्टर या आशा कार्यकर्ता टीकाकरण की सही जानकारी देते हैं। इसलिए बहनों, गर्भावस्था की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण अवश्य कराएं। और याद रखें, एक छोटा सा टीका माँ और बच्चे दोनों के लिए सुरक्षा की बड़ी गारंटी बन सकता है। और स्वस्थ माँ ही स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज की नींव है। तो बहनों, यदि आपके परिवार में कोई गर्भवती महिला है तो उसे समय पर जांच और टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। संतुलित आहार, समय पर जांच और नियमित टीकाकरण, यही है स्वस्थ मातृत्व की पहचान। बहनों, अभी कहीं जाइएगा नहीं, रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल लेते एक छोटा सा अंतराल।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: बहनों, कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन बदलती जीवन शैली और अनियमित खान पान के कारण कई बीमारियां चुपचाप हमारे जीवन में दस्तक दे रही हैं। ऐसी एक बीमारी है डायबिटीज, जो आज हर उम्र के लोगों को प्रभावित कर रही है। डायबिटीज यानी मधुमेह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर रक्त में मौजूद शुगर यानी ग्लूकोज को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता, और यदि समय रहते इसका पता ना लगाया जाए और उपचार ना किया जाए तो ये हार्ट, किडनी, आँखों और नसों को भी प्रभावित कर सकता है। बार बार प्यास लगना, बार बार यूरिन महसूस होना, अत्यधिक भूख लगना, थकान महसूस होना, घाव का देर से भरना और धुंधला दिखाई देना, मैंने ये कुछ सामान्य लक्षण डायबिटीज़ के होते हैं। और यदि इनमें से कोई भी लक्षण लगातार दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन शैली भी डायबिटीज को नियंत्रित रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और तनाव से दूरी, ये सभी अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। याद रखिए, 30 मिनट की रोजाना फिजिकल एक्टिविटी, हरी सब्जियों और फलों का सेवन और नियमित स्वास्थ्य जांच आपको डायबिटीज के खतरे से बचाने में मदद कर सकती है। बहनों, डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है जिससे हमें डरना चाहिए, लेकिन इसे हल्के में लेना भी ठीक नहीं होता। जागरूकता, समय पर जांच और सही उपचार से एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन जिया जा सकता है। इसलिए अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज ना करें और समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य कराएं। तो बहनों, इसी संदेश के साथ आप स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपने साथ साथ अपने परिवार के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। बहनों, समय के साथ बहुत कुछ बदल रहा है। तकनीक ने जीवन को आसान बनाया है, काम करने के तरीके बदले हैं, लोगों की सोच और जीवन शैली में भी परिवर्तन आया है। लेकिन इन सब बदलावों के बीच एक चीज आज भी हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है, और वो है परिवार। परिवार केवल साथ रहने का नाम नहीं बल्कि प्यार, विश्वास, सहयोग और संस्कारों की वो नींव है। जो हमें हर परिस्थिति में संभालती है। कहते हैं, परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला होता है। यहीं से बच्चे बोलना, चलना, व्यवहार करना और जीवन के मूल्यों को सीखते हैं। आधुनिक जीवन की व्यस्तता के बावजूद परिवार की जिम्मेदारी पहले से भी कहीं अधिक बढ़ गई है। आज बच्चों के सामने इंटरनेट और सोशल मीडिया के रूप में जानकारी का विशाल संसार

0: परिवार है। ऐसे में सही और गलत के बीच अंतर समझाने का काम परिवार ही करता है। माता पिता और बुजुर्गों का मार्गदर्शन बच्चों को सही दिशा देता है। बदलते समय में परिवार भावनात्मक सुरक्षा का भी सबसे बड़ा आधार है, क्योंकि कहते हैं कि जब व्यक्ति तनाव, चिंता या किसी कठिनाई का सामना करता है तो परिवार का साथ ही उसे नई ऊर्जा और आत्मविश्वास प्रदान करता है। बहनों, अब वो समय है कि संयुक्त परिवारों की जगह छोटे परिवारों का चलन बढ़ा है, लेकिन रिश्तों की गर्माहट और आपसी संवाद आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है। परिवार के सदस्यों के बीच खुलकर बातचीत, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान और साथ बिताया गया समय रिश्तों को मजबूत बनाता है। और बुजुर्गों की भूमिका भी परिवार में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके अनुभव और जीवन के सबक नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक बनते हैं। वहीं युवा पीढ़ी नई सोच और तकनीक ज्ञान के माध्यम से परिवार को आगे बढ़ाने में योगदान देती है। बहनों, समय चाहे कितना भी बदल जाए, परिवार का महत्व कभी कम नहीं होता। बदलती दुनिया में यदि हम अपने रिश्तों को समय दें, संवाद बनाए रखें और एक दूसरे का सम्मान करें तो परिवार हमारी सबसे बड़ी शक्ति बना रहेगा। आइए अपनी व्यस्त दिनचर्या से थोड़ा समय अपने परिवार के लिए अवश्य निकालें, एक दूसरे की बात सुनें, भावनाओं का सम्मान करें और रिश्तों की डोर को मजबूत बनाएं, क्योंकि मजबूत परिवार ही एक संवेदनशील, संस्कारी और सशक्त समाज की नींव होते हैं। तो चलिए इसी बात पर आइए सुनते हैं ये गीत।
1: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम चिक चिक बम।

बहनों, प्यार और भाईचारे का ये संदेश हम सबके जीवन में मिठास घोलता रहे, इसी कामना के साथ आज का घर संसार कार्यक्रम समाप्त करने की वंदना तुली को भाग्य दीजिए। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना मनपसंद कार्यक्रम घर संसार। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:45 हो चुके हैं। अब आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आज आप सुनेंगे कुछ भजन। आइए पहले सुनते हैं पंडित राजन साजन मिश्र का ये भजन।

श्रोता, इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अभी यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: recruitment exam manipulation case. Lionel Messi becomes the highest goal scorer in FIFA World Cup history and leads Argentina into knockout stage. And in hockey, India to face Pakistan in opening match of FIH Pro League in London today. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, हुर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैं आपका काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है। तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सिख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास कर।
1: ये कार्यक्रम आज FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
5: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
1: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था।

0: विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
1: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
0: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
1: आने वाले दो सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
0: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा यह संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
1: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स डॉट इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत की। तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा है कि होर्मुज डडमरो मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
2: वी नीड टू बी कॉग्निजेंट ऑफ द न्यू सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड चैलेंजेस।
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
2: दे ऑल कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट थ्रेट्स फॉर अस।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रिर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया।

0: या है उनमें से चार को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इसमें फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार 3rd दिन भी बारिश हो रही है।
2: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश होने से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा, हॉर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन

0: निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आप सुनेंगे विदुषी शोभा गुरटू का राग दादरी में गायन, उसके बाद ठुमरी माज खमाज में गायन।

श्रोता, इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। रेडियो में 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:45 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं पुरानी फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं आस का पंची फिल्म से, लता मंगेशकर और मुकेश के स्वर में।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मेरे सनम फिल्म का ये गीत आशा भोसले के स्वर में। मजरू के लिखे गीत को संगीत में ढाला है ओपी नैयर ने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ पुरानी फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद का पुनः प्रसारण। संवादक हैं विशेष कुमार शर्मा और प्रस्तुतकर्ता अनिंद्र सिंह।

0: हमारे किस श्रोता का है और कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? हेलो
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: सर मैं सिंधौली मीरगंज जिला बरेली से जीशान वारसी बात कर रहा हूँ।
0: क्या हाल है जीशान जी?
1: सर हाल एकदम बढ़िया है, आप बताएं। आकाशवाणी भी लोग कहते हैं
0: एकदम बहुत अच्छे हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। और आप लोग कार्यक्रम सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगा कि इतनी दूर तक आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं।
1: जी जी बिल्कुल सर, ये असल में सुनने की वजह तो सिर्फ आप ही हैं, क्योंकि आप लोग इतने मन से और बहुत खूबसूरती के साथ प्रोग्राम हम तक पहुंचाते हैं, तो हमारी मजबूरी बन जाती है आपको सुनना।
0: देखिए, मजबूरी की कोई बात नहीं है, खुशी की बात है ये। और
1: बिल्कुल,
0: सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि अगर हम प्रयास कर रहे हैं और आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, तो बस यही हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात होती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल।
0: जिशान जी क्या करते हैं?
1: सर मैं टेलरिंग का काम करता हूँ और उसके साथ साथ आकाशवाणी से कनेक्ट रहता हूँ, आकाशवाणी के प्रोग्राम सुनता रहता हूँ।
0: कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं हमारे?
1: सर एक तो आपका जो रात में आता है पत्रों पर फरमाइशी प्रोग्राम,
0: रजनीगंधा,
1: उसे भी सुनता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें जो भी उद्घोषक उस प्रोग्राम को प्रस्तुत करते हैं उनकी प्रस्तुति बहुत लाजवाब रहती है।
0: जी आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: सर आज मुझे गीत सुनना है, फिल्म का नाम है आप तो ऐसे ना थे। इस फिल्म का सर कोई भी गीत सुनवा दें।
0: आप गीत के बोल बता दीजिए, जो आपको पसंद है हम वही सुनवाएंगे।
1: सर फिल्म गीत के बोल हैं, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है।
0: अच्छा, ये तीन ट्रैक हैं उसमें, आपको मालूम है, एक मोहम्मद रफी का गाया हुआ है,
1: सर
0: एक
1: ये मनहर उदास साहब की आवाज
0: मनहर। जी जी जी जी, तो ठीक है जीशान जी, मनहर उदास की आवाज में लीजिए, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
1: जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया।

दोस्तों आज सोमवार है, रात के 10 बजे हैं और आप जानते हैं कि इस समय आप सुनते हैं अपना पसंदीदा रेडियो फोन इन कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। जी हाँ, ये कार्यक्रम हमारा होता है आपके द्वारा फोन पर की गई फरमाइशों के आधार पर। तो आज इस कार्यक्रम के साथ हाजिर हूँ मैं, आपका रेडियो हमसफर विशेष कुमार शर्मा। स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार और आइए सुनते हैं आज का पहला फोन।

0: मनहर उदास की आवाज में आप सुन रहे थे आप तो ऐसे न थे फिल्म का ये गीत, और इसके लिए फरमाइश की थी बरेली से जिशान ने। आइए सुनते हैं, अगले कॉलर लाइन पर हैं, कहाँ से हैं और कौन है। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: थैंक यू, मैं बोल रही हूँ ललित।
0: ललित जी कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं दयालबाग से बोल रही हूँ, संत विहार।
0: ललित जी क्या करते हैं आप?
1: मैं टीचर हूँ।
0: आवाज से पता चल रहा है आपके कि आप कोई ऐसा काम जरूर करती हैं जिसमें कि बोलने की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल।
0: क्या विषय पढ़ाती हैं आप?
1: मैं हिंदी की टीचर हूँ।
0: अरे वाह, बहुत खूब। हिंदी के टीचर तो आजकल बहुत कम मिलते हैं, है ना?
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: लेकिन लेकिन एक मैंने देखा है कि आजकल जैसे अंग्रेजी माध्यम का बोलबाला है या लोग पसंद करते हैं, और ऐसे में हिंदी का टीचर होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है।
1: हाँ,
0: क्या महसूस करती हैं?
1: कहा आपने, और मैं तो हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए मैंने तो पुस्तकें भी लिखी हैं, तो मेरा तो यही प्रयास रहता है कि हिंदी जन जन तक पहुँचे।
0: बिल्कुल, क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा भी है, और हिंदी में हम जितना काम करें तो एक तरह से यूं मान के चलिए कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, ये हमारी पहचान है सर।
0: बिल्कुल। कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं आप?
1: मैं 10th, 11th, 12th।
0: अच्छा, अभी आपने कहा है कि कुछ किताबें भी आपने लिखी हैं, तो कौन सी क्लास की किताब लिखी है या कोई पर्सनल अपनी किताब कोई लिखी है?
1: मैंने दो किताबें तो जो है हिंदी के उत्थान के लिए ही लिखी है
0: जी,
1: राष्ट्रभाषा विमर्श और हिंदी ही हमारी मातृभाषा क्यों। इसके साथ साथ मेरी 14 किताबें और लिखी हैं मैंने।
0: की अच्छा, आपके अध्ययन और अध्यापन कार्य में रेडियो का कुछ महत्व है क्या?
1: रेडियो का मेरे जीवन में ही बहुत महत्व है।
0: अच्छा।
1: हाँ, मेरा बहुत समय से जुड़ाव रहा है, और घर पे भी काम करते करते मुझे गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है।
0: वेरी गुड। आज के इस हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: वैसे तो मुझे, मैं सही बात बताऊँ आपको, मेरे को पुराने गीत बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन एक गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, दिल ही तो है फिल्म का है, तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल।
0: वाकई गीत बहुत अच्छा है, मुकेश की आवाज में है।
1: बहुत प्यारा गाना है
0: जी। ललित जी तो लीजिए, सुनिए आप अपनी पसंद का ये खूबसूरत गीत।
1: थैंक यू।
2: तुम अगर

0: मुकेश की आवाज में ये गीत आपने सुना, फिल्म का नाम था दिल ही तो है, और इस गीत के लिए फरमाइश की थी ललित ने दयाल बाग आगरा से। और हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं, आइए सुनते हैं कौन है और कहाँ से हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
1: जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ग्राम लालो से बात कर रहा हूँ, नरेंद्र
0: नरेंद्र जी, अरे हमारे तो बहुत पुराने श्रोता हैं यहाँ।
1: जी। हाँ जी हाँ, बहुत दिनों बाद सर आपसे बात हो रही है, पहली बार हो रही है आपसे इस कार्यक्रम में।
0: अच्छा
1: आते रहा करो सर कार्यक्रम में।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ जी
0: नरेंद्र जी, क्या करते हैं आप इस समय?
1: सर, मैं कोसी छाता काम करता हूँ कपड़े की कंपनी में
0: अच्छा, उसमें क्या काम रहता है आपका?
1: जी सर। उसमें मशीन पर रहते हैं, ऑपरेटरी में
0: अच्छा,
1: कपड़ा डाइंग करे कलर होता है उसमें।
0: तो जब आप मशीनों पे काम करते हैं तो कुछ सुरक्षा का ध्यान रखते हैं?
1: सुरक्षा सर हमारी वो ड्रेस मिलती है, पैरों में जूते पहनने के लिए ग्लव्स मिलते हैं, हाथों के लिए आंखों में चश्मा मिलता है लगाने के लिए,
0: जी
1: और टेम्परेचर रहता है सर बहुत ऊपर का, पसीना नीचे आ जाता है,
0: गर्मी बहुत ज्यादा रहती है।
1: गर्मी बहुत रहती है, हीटिंग दी जाती है कपड़ों के लिए। उसमें मशीनें बड़ी बड़ी एक एक टन की वॉशिंग मशीन है वहाँ कपड़े
0: अच्छा,
1: धुलने की।
0: तो मशीनों की वजह से, उनकी गर्मी की वजह से आपको भी गर्मी में रहना पड़ता है?
1: जी, रहना पड़ता है, कितना भी उकर लो वहाँ तो गर्मी सर लगेगी, क्योंकि मशीनों का टेम्परेचर तापमान इतना दिया जाता है कि
0: अच्छा,
1: बस पूछो मत, बहुत ज्यादा गर्मी।
0: तो गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा ध्यान रखने की भी जरूरत है अपने स्वास्थ्य के लिए भी, तो इसके लिए क्या करते हैं फिर आप?
1: जी सर, समय समय पर वहाँ जैसे दिक्कत रोक टोक नहीं है, समय समय पर जाते रहते हैं पानी वानी पीने के लिए, और अच्छी व्यवस्था है।
0: अच्छा,
1: जैसे कोई दिक्कत है तो ग्लूकोज के पानी भी मिलता है वहाँ, नींबू पानी भी मिलता है दोपहर में सबके लिए,
0: अच्छा
1: एक टंकी भर दी जाती है ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी,
0: अच्छा
1: ज्यादा ठंडा भी नहीं है।
0: तो ये कंपनी की तरफ से सारी व्यवस्था होती है?
1: जी, बहुत अच्छी व्यवस्था है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सर गर्मी तो लगेगी, घर पे भी गर्मी लगती है वहाँ भी लगती है।
0: अच्छा हाँ, नहीं ये तो बात बिल्कुल सही है, गर्मी तो मौसम भी, वैसे गर्मी का इस समय तो काफी गर्मी है, धूप भी काफी निकलती है इस समय,
1: जी हाँ
0: तो वैसे भी हमको अपने स्वास्थ्य के दृष्टि से काफी ध्यान रखना चाहिए, और इन दिनों में शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए खूब पानी पीना चाहिए।
1: जी।
0: आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे इस कार्यक्रम में?
1: सर एक गाना है, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए वाला, फिल्म
0: फिल्म का नाम बताएंगे?
1: का नाम तो सर पता नहीं, पर
0: फिल्म का नाम हम बता देते हैं, फिल्म का नाम है पति पत्नी और वो।
1: वो ये बहुत ही प्यारा गाना है, अच्छा लगता है सर।
0: जी, गीत हमने शुरू कर दिया है आपके साथ, और कौन सुनेगा इस गीत को?
1: सर हमारे घर वाले हैं, हमारे भैया जी हैं, बड़े ब्रजोहन और बच्चे हैं, फैमिली वाले सर, माँ का बाबू जी,
0: अच्छा
1: एक हमारे
0: अच्छा
1: दोस्त हैं सौरभ लवानी हैं कोला से।
0: जी, तो
1: सर
0: ठीक है
1: आपसे
0: रेन जी,
1: बात करके बहुत अच्छा लगा सर।
0: आपसे बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगता है।
1: जी धन्यवाद सर, थैंक यू।
0: लीजिए सुनिए अपनी पसंद का गीत।

कह दो कि आ रहे हैं साहब, नहा रहे हैं।

0: महेंद्र कपूर की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था पति पत्नी और वो, और इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश की थी लालू से नरेंद्र ने। और आइए अब देखते हैं हमारा अगला फोन कहाँ से है और कौन से गीत की फरमाइश है। हेलो
1: हेलो
0: हेलो हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो,
1: हेलो।
0: आपको हमारी आवाज मिल रही है?
1: हाँ मिल रही है जी।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: मैं सागर सिंह कुशवाहा बोल रहा हूँ।
0: सागर सिंह कुशवाहा।
1: हाँ जी
0: कहाँ से बोल रहे हैं
1: बसई नवाब दौलतपुर राजस्थान।
0: सागर जी?
1: हाँ जी
0: आप जब भी फोन करते हैं आपका फोन लग जाता है,
1: हाँ जी
0: बहुत सौभाग्यशाली हैं आप।
1: हाँ भाग्यशाली है।
0: हमारे बहुत से श्रोताओं की शिकायत रहती है कि वो फोन करते हैं और फोन नहीं लगता है, लाइन बिजी मिलती है,
1: बिल्कुल
0: और आपके लिए हमेशा लाइन खाली मिलती है। ऐसा क्यों?
1: बिल्कुल नसीब है हमारा।
0: अच्छा,
1: हाँ जी
0: बहुत
1: है।
0: खूब। जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या करते हैं सागर जी?
1: मैं राजमिस्त्री हूँ।
0: अच्छा, तो इन दिनों बहुत गर्मी है, काम चल रहा है इस समय कहीं?
1: काम चल रहा है। सुबह शाम 7 बजे से लगाते हैं, 11 बजे ने बंद कर देते हैं जी। ठेका
0: अच्छा, तो ठेके पर काम करते हैं या अमानी के हिसाब से करते हैं, कैसे करते हैं आप?
1: में हम कर लेते हैं, अमाने पे भी करते हैं।
0: कितने पैसे लेते हैं एक दिन के?
1: 800 रुपया चल रहा है।
0: ज्यादा नहीं है?
1: ज्यादा नहीं है भाई, यहाँ पर इतनी पैसा है।
0: और समय कितना रहता है काम करने का?
1: 7 घंटे।
0: 7 घंटे।
1: हाँ
0: अच्छा, गर्मियां बहुत ज्यादा है, काम करते समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ठीक है?
1: बिल्कुल रखते हैं साफ का ध्यान। तो
0: कौन सा गीत सुनेंगे सागर जी?
1: कागज कलम दबा के वो कौन सी फिल्म का है?
0: कागज कलम दबात ला,
1: हाँ जी
0: लिख दूं दिल तेरे नाम करूं।
1: बिल्कुल जी।
0: फिल्म का नाम नहीं मालूम आपको?
1: नहीं, मेरे हमारे से तो मैं बता देता पहले ही।
0: अच्छा चलिए कोई बात नहीं सागर जी, फिल्म का नाम हम बता देते हैं। फिल्म का नाम है हम जो है आपको ये गीत सुनवाते हैं। और कौन सुनेगा इस गीत को आपके साथ?
1: मेरे साथ में मेरा दोस्त है एक, खाना फसमा
0: नाम बताइए।
1: बाबूलाल दोनारी से।
0: भैया सागर जी देखिए, दोस्त आपके साथ में और आपको दोस्त का नाम नहीं मालूम, आप दोस्त से नाम पूछ रहे हैं, ये कैसी दोस्ती है?
1: हाँ तो मेरे साथ में रहता है, ये काम करता है मेरे साथ। अरे मैं दिमाग में दे जा रहा हूँ, दिमाग में ध्यान
0: अच्छा
1: निकल जा रहा है दिमाग
0: चलिए चलिए कोई बात नहीं, लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत सुनिए, गीत चल रहा है, ठीक है?
1: बात करोगे मिस्त्री से, मेरे साथी से?
0: लाइए बात करा दीजिए।
1: हेलो।
0: हेलो,
1: हाँ भाव,
0: स्वागत है आपका हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में। आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम साहब बाबूलाल है।
0: बाबूलाल। अच्छा भैया बाबूलाल, अपने दोस्त को समझाइए कि भाई मेरा नाम याद रखा करो, इतनी जल्दी भूल जाते हैं आपके नाम को।
1: जी आप ऐसा काम के चक्कर में।
0: अच्छा काम में ज्यादा मन लगता है?
1: काम में ज्यादा बिजी देते हैं।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, हम कोई भी काम करें तो उसे लगन के साथ करना चाहिए, बहुत ही मन से करना चाहिए, ठीक है? चलिए आप भी इसी गीत को सुनेंगे।
1: सुनाए
0: ठीक है, तो गीत चल रहा है, लीजिए सुनिए आप, ठीक है?
1: ठीक है।

0: सागर सिंह कुशवाहा की पसंद पर आपने सुना फिल्म हम का ये गीत। और हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम का अगला गीत आपको कौन सा सुनने को मिलेगा ये तो हमारे कॉलर ही बताएंगे, और कॉलर इस समय लाइन पर हैं, आइए सुनते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं लालिमा वत्स।
0: एक बार फिर से बताइए।
1: मैं लालिमा वत्स।
0: लालिमा वत्स कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं यहाँ जयराम बाग दयालबाग से।
0: आज दयालबाग से बहुत फोन आ रहे हैं हमारे पास। ऐसा क्यों?
1: एक तो छुट्टियां भी चल रही है ना।
0: अच्छा छुट्टियों की वजह से। अच्छा तो छुट्टियां किस चीज की है, कहाँ पढ़ाते हैं क्या कहीं आप स्कूल में हैं?
1: मैं खंदौली में टीचर हूँ।
0: प्राइमरी स्कूल में?
1: जी।
0: अच्छा तो स्कूल तो शायद 16 तारीख से खुल गए हैं।
1: नहीं 16 से खुल गए थे, फिर उसके बाद फिर से छुट्टी कर दी गई है टीचर्स की 20 तारीख तक, और बच्चों की 15 से ज्यादा है उनको।
0: क्या ये गर्मी की वजह से कर दी है क्या?
1: हाँ गर्मी की, अब हर साल हुआ करेगी।
0: अच्छा
1: जिस तरह ही जाएंगे बच्चे।
0: सरकार ने ऐसा आदेश कर दिया है कि अब हर साल।
1: हाँ।
0: कब तक छुट्टी रहा करेगी? 24 जून तक।
1: हाँ 24 जून तक बच्चों की छुट्टी रहा करेगी।
0: अच्छा कहा जाता है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे कम आते हैं, इसकी वजह क्या होती है?
1: नहीं ऐसा नहीं है, मेरे स्कूल में तो जितनों का नामांकन है उससे भी ज्यादा बच्चे आते हैं, बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते हैं। कुछ स्कूल है जहाँ पे नहीं आते, पर हमारे स्कूल में और मेरे आसपास के स्कूलों में भी नामांकन पूरा ही रहता है बच्चों का।
0: जो कुछ स्कूल है उनकी क्या वजह रहती है बच्चों के ना आने की?
1: अब उनके ये रीजन रहते हैं कि दरअसल क्या है, गाँव में तो मम्मियाँ लेके अपने बच्चों को चली जाती है अपने मायके, फिर वो एक एक महीने बाद आ रही हैं, शादी है, शादी में चले गए, 10 दिन के लिए चले गए तो बच्चा नहीं आ रहा है, तो पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है और फिर थोड़ा नामांकन भी कम हो जाता है।
0: तो लालिमा जी जहाँ तक हम समझते हैं खंदौली भी रूरल ब्लॉक है।
1: जी।
0: आपकी पोस्टिंग भी रूरल में ही होगी कहीं?
1: हाँ।
0: तो वहाँ नामांकन इतना अच्छा क्यों है गाँव में?
1: गाँव में एक तो बहुत बड़ा गाँव नहीं है
0: जी,
1: तो मतलब बच्चों को भेजते हैं वहाँ पे, जागरूक हैं पेरेंट्स, जागरूक हैं
0: जी।
1: बच्चा नहीं आ रहा है तो वो पूरा कारण बता के जाते हैं कि इस कारण नहीं आ रहा है। एक भी बच्चा अगर जैसे मेरे यहाँ भी कोई बच्चा एब्सेंट होता है
0: जी,
1: तो पहले पेरेंट्स मुझे फोन करके बता देते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं इसलिए बच्चा नहीं आ पाएगा, इतने दिन नहीं आ पाएगा। पेरेंट्स को जागरूक होना बहुत जरूरी है इस मामले में।
0: आपकी बातचीत से यही निष्कर्ष निकला कि पेरेंट्स को जागरूक होना बहुत जरूरी है, और

0: जागरूक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं उनके लिए?
1: उसके लिए देखिए, अगर बच्चा नहीं आ रहा है, कुछ जैसे पेरेंट्स जागरूक हैं वो तो खुद फोन करते हैं, नहीं है तो हमारे यहाँ से टीचर्स मैं भेजती हूँ स्कूल से।
0: अच्छा।
1: तो टीचर्स उनके घर में जाके संपर्क करते हैं, उनको समझाते हैं। और हमारे इतना ज्यादा आया हुआ है बच्चों के गेम्स की किट वगैरह, तीन तीन किट आई हुई है, साइंस किट, मैथ किट, ये सब। तो बच्चों का अट्रैक्शन उस तरफ होता है और बच्चे गेम्स खिलाए जाते हैं तरह तरह के, जो उनको घर में नहीं मिल पाते वो स्कूल में आके उनको मिल जाते
0: हैं। तो लालिमा जी,
1: हाँ, अब बहुत सुधार हुआ है बेसिक पे तो खास तौर से। अब जाके देखिए इतनी अच्छी रंगाई पुताई वहाँ पर और टाइलीकरण वगैरह सब बहुत अच्छे से है।
0: यानी एक ढांचागत जो विकास है वो काफी हद तक हुआ है।
1: है बहुत।
0: तो आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: मैं मुकद्दर का सिकंदर का, दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, वो गाना सुनना चाहूंगी।
0: जी जी। और इस गीत को कौन सुनना चाहेगा आपके साथ? नाम ले दीजिए।
1: मेरे साथ चाहत, गजल, अभिषेक जी, ये सब सुनना चाहेंगे।
0: ठीक है लालिमा जी, मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये गीत लीजिए, सुनिए लता मंगेशकर की आवाज।

ये था मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गीत। इसे गाया था लता मंगेशकर ने और इसके लिए हमें फोन किया था दयाल बाग आगरा से लालिमा वत्स ने। और हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम का आखिरी गीत था क्योंकि समय हो चुका है, 10:30 बज गए हैं और आज का ये कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद समाप्त करने की अपने रेडियो साथी विशेष कुमार शर्मा को

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद का पुनः प्रसारण। संवादक थे विशेष कुमार शर्मा और प्रस्तुतकर्ता थे अनेन्द्र सिंह। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:30 हो चुके हैं। हमारी इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं समाप्त होता है। सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी आगरा है। संध्या के 5 बजने को हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में सबसे पहले सुनते हैं हिंदी में समाचार।

0: आइए राष्ट्रपति भवन चलें।
1: इस विशेष प्रसारण में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कुछ ही क्षणों में

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी आगरा है। संध्या के 5:05 हुए हैं। आइए अब जानते हैं आज की सांध्यकालीन और कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:10 पर भक्ति परक फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम सुर संध्या में। रोज की तरह कार्यक्रम युववाणी होगा 5:30 पर। आज के कार्यक्रम में सामाजिक सुरक्षा और समानता विषय पर होगी चर्चा। साथ ही सुनिएगा समकालीन विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की सीमाएं विषय पर रुखसार से वार्ता। शाम 6:00 का समय रहेगा कार्यक्रम ग्रामीलोक का। आज के कार्यक्रम में रसायन मुक्त खेती विषय पर चर्चा सुनिएगा और वार्ताकार सैयद फैज बख्श से धान की उन्नत खेती विषय पर सुनेंगे वार्ता। कार्यक्रम मजदूर मंडल में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस विषय पर की जाएगी चर्चा और वार्ताकार सरिता कुमारी से सुनिएगा वार्ता। विषय रहेगा संघर्ष और सफलता के बीच आज की नारी। सात बजकर 10 मिनट पर भावना वरदान शर्मा से सुनिएगा वार्ता। विषय रहेगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की दृष्टि में अखंड और संघीय भारत कार्यक्रम विविधा में। 7:31 पर आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान से अनिंद्र सिंह की खास बातचीत।

रात्रि 8 बजे होगा देशभक्ति परक कार्यक्रम भारत भारती और 8:30 पर चित्रपट संगीत का लीजिएगा आनंद। रात्रि 10:30 पर प्रस्तुत किया जाएगा शास्त्रीय संगीत। ये तो था आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आइए अब जानते हैं कल की प्रातःकालीन सभा में क्या है खास।

सुबह 6:05 पर होगा कार्यक्रम वंदना और 6:25 पर कार्यक्रम चिंतन, जिसमें आप सुनेंगे महर्षि रमन के विचार। गायक कलाकार महेंद्र कपूर से सुनिएगा श्री रामचरितमानस गान कल सुबह 6:35 पर। खेती की बातें क्रम में कल सुबह 6:45 पर सुनेंगे कुंदन सिंह की वार्ता, विषय रहेगा खेती की उपयोगिता कैसे बढ़ाएं। सुबह 7:10 का समय होता है स्वास्थ्य चर्चा का। कल के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे खून चढ़ाने से पहले सावधानियां विषय पर वार्ता। वार्ताकार होंगे डॉक्टर H.L. राजपूत। कल सुबह 7:31 का समय रहेगा आसपास की घटनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास का। सदाबहार फिल्मी गीतों का आनंद उठाइएगा कार्यक्रम गीतांजलि में, समय 8:45। 9:45 पर सुनिएगा राधे श्याम से लोक संगीत और 10:30 पर सुनिएगा पंडित राजन साजन मिश्रा से ख्याल गायन। अभी आपने जाना आज की सांध्यकालीन और कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 5:10। आइए अब आनंद लेते हैं भक्ति परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या का।

ये भक्ति गीत हमने लिया था फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से, जिसे लिखा था पंडित नरेंद्र शर्मा ने, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आवाज थी लता मंगेशकर की। अगली प्रस्तुति फिल्म अपराधी से है, जिसे संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, रचना आनंद बख्शी की है और आवाज दी है मोहम्मद अजीज ने।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

फिल्म मास्था के इस भक्ति गीत को सुरों से सजाया था सारंग देव ने, रचना गुलजार की थी और आवाज थी रवि शंकर की। आकाशवाणी आगरा पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुर संध्या। अगला भक्ति गीत फिल्म फिजा से है, संगीत रचना यार रहमान और आलेख गुलजार का है और आवाज है कादर गुलाम मुस्तफा और मुर्तजा गुलाम मुस्तफा की।

अभी आपने सुना भक्ति पर प्रेम संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या। मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा। संध्या के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार युवा साथियों, मैं आपकी रेडियो हमसफर दीक्षा एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ आपका अपना मन पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, जहाँ हमेशा की तरह हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी लिसनर्स हेल्दी और हैप्पी होंगे। दोस्तों, आजकल मौसम का तो कोई भरोसा ही नहीं रहा है, कब चेंज हो जाए कुछ पता ही नहीं चलता। अब देखिए ना, अब से करीब 1 से 1.5 घंटे पहले तक इतनी तेज धूप थी, फिर अचानक से इतनी तेज आंधी आ गई। ऐसे में दोस्तों, आप कोशिश करें कि जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक अपने घर से बाहर ना निकलें, और खास तौर पर गाड़ी लेकर। चलिए दोस्तों, आपसे बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। दोस्तों, किसी भी देश की प्रगति केवल आर्थिक विकास से नहीं बल्कि उसके नागरिकों के जीवन की सुरक्षा और सम्मान से भी नापी जाती है। इसी सोच को साकार करती है सामाजिक सुरक्षा, यानी सोशल सिक्योरिटी, जिसका मतलब है एक ऐसी व्यवस्था जो नागरिकों को जीवन की विभिन्न परिस्थितियों जैसे कि बीमारी, एक्सीडेंट, बेरोजगारी, मातृत्व, विकलांगता और वृद्धावस्था के दौरान जरूरी सहायता और संरक्षण प्रदान करे। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में स्वयं को असहाय महसूस ना करे। साथियों, हमारे देश में सोशल सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई तरह की योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें कि पेंशन योजनाएं, स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, ESIC, जीवन बीमा, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे श्रमिकों के लिए भी कई तरह के वेलफेयर प्रोग्राम शामिल हैं। इन योजनाओं का लक्ष्य समाज के हर एक वर्ग, खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक सुरक्षा का लाभ पहुंचाना है। सोशल सिक्योरिटी का मतलब केवल फाइनेंशियल सपोर्ट तक सीमित नहीं है,

ये लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और उन्हें फ्यूचर के लिए आश्वस्त बनाती है। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को ये विश्वास हो जाता है कि संकट के समय उसे सहायता मिलेगी, तो वो अपने परिवार और समाज के विकास में आर्थिक प्रभावी योगदान दे सकता है। आज के समय में जब जीवन शैली और कार्य परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं, सोशल सिक्योरिटी की जरूरत और भी ज्यादा बढ़ गई है, खासतौर से अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे लोगों, महिलाओं, सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांगजनों के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही सोशल सिक्योरिटी केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समाज और नागरिकों की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और अपने आसपास के लोगों को भी इनके प्रति जागरूक करना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनका लाभ उठा सकें। दोस्तों, एक सुरक्षित नागरिक ही एक सशक्त समाज और मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इसलिए सामाजिक सुरक्षा केवल एक योजना नहीं, बल्कि समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की आधारशिला है। इसी के साथ दोस्तों, अब वक्त हो चुका है हमारे युवा श्रोताओं के मनोरंजन का, जिसके लिए हम आपको लेकर के चलेंगे संगीत की दुनिया में। पर उससे पहले आज का सवाल। तो दोस्तों, आज का सवाल है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के सबसे युवा कुलपति कौन थे। आप इस सवाल का जवाब ढूंढिए और साथ ही साथ आनंद लें इस गीत का।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युववाणी में, जहां आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो होस्ट दीक्षा को। दोस्तों, इस म्यूजिकल ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपसे पूछा था एक सवाल, जो था यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के सबसे युवा कुलपति कौन थे। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने इसका जवाब खोज निकाला होगा। तो जवाब है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने मात्र 33 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के वाइस चांसलर बने थे, और आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उनके योगदान, राष्ट्रवादी विचारों और भारत के प्रति उनके समर्पण, एकता और अखंडता को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। और इसी के साथ अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट अतुलनीय भारत की ओर, जिसमें आज हम आपको भारत की एक ऐसी प्राकृतिक धरोहर से परिचित करवाएंगे जो अपनी अनुपम सुंदरता, समृद्ध जैव विविधता और सांस्कृतिक महत्व के लिए जानी जाती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वेम्बनाड झील की। केरल राज्य में स्थित वेम्बनाड झील न केवल राज्य की सबसे बड़ी झील है, बल्कि भारत की सबसे लंबी झीलों में भी शामिल है। लगभग 96 किलोमीटर लंबी ये झील अलपुझा, कोट्टयम और एर्नाकुलम जैसे जिलों से होकर गुजरती है। इसे वेम्बनाड कायल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, वेम्बनाड झील केरल के प्रसिद्ध बैकवाटर्स का प्रमुख हिस्सा है। बैकवाटर्स झीलों, नहरों और लैगून का एक ऐसा नेटवर्क है जो कि केरल की पहचान बन चुका है। यहाँ की हाउस बोट यात्रा देश विदेश से आने वाले टूरिस्ट को विशेष रूप से आकर्षित करती है। शांत जलधाराओं के बीच तैरती हाउस बोट्स, नारियल के पेड़ की कतारें और हरियाली से भरपूर दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं लगते हैं। साथियों, वेम्बनाड झील बायोडायवर्सिटी की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ कई तरह की मछलियाँ, जलीय जीव और पक्षी भी पाए जाते हैं। झील के आसपास स्थित कुमारकुम क्षेत्र प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जहां हर साल दूर दूर देशों से कई तरह के पक्षी आते हैं। ये स्थान पक्षी प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। इस झील का अर्थ

0: सामाजिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। स्थानीय समुदाय मछली पालन और जल परिवहन के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, झील के आसपास की कृषि व्यवस्था भी काफी हद तक इसी पर निर्भर करती है। हर साल केरल का प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस भी इसी झील में आयोजित किया जाता है। इस रोमांचक नौका दौड़ में लंबी और पारंपरिक स्नेक बोट्स भाग लेती हैं, जिन्हें देखने के लिए हजारों पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं। ये आयोजन केरल की संस्कृति और परंपरा की एक अनूठी झलक प्रस्तुत करता है। हालांकि बढ़ते प्रदूषण और मानवीय गतिविधियों के कारण इस झील के संरक्षण की आवश्यकता भी लगातार महसूस की जा रही है। इसलिए दोस्तों, सरकार और स्थानीय समुदाय मिलकर इसके प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखने के प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, वेम्बनाड झील केवल एक जलाशय नहीं, बल्कि प्रकृति, संस्कृति और पर्यटन का अद्भुत संगम है। यह हमें भारत की प्राकृतिक समृद्धि और विविधता का एहसास कराती है। यही तो है हमारा अतुलनीय भारत। इसी रोचक जानकारी के साथ अतुलनीय भारत का यह अंक यहीं समाप्त होता है। आइए दोस्तों, अब हम सुनते हैं वार्ता, जिसका विषय है समकालीन विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की सीमाएं। वार्ताकार हैं रुखसार।
1: कहा जाता है कि युद्ध जीतने से बड़ी उपलब्धि युद्ध को होने से रोकना है। इसी महान उद्देश्य के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की विनाशकारी त्रासदी के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य था विश्व शांति की रक्षा करना, राष्ट्रों के बीच सहयोग बढ़ाना, मानव अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाना। पिछले 8 दशकों में संयुक्त राष्ट्र ने शांति स्थापना मिशनों, मानवीय सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। लेकिन आज का विश्व 1945 का विश्व नहीं है। तकनीक, अर्थव्यवस्था, राजनीति और सुरक्षा की चुनौतियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। ऐसे में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या संयुक्त राष्ट्र आज की चुनौतियों के अनुरूप स्वयं को बदल पाया है। समकालीन विश्व में संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे बड़ी सीमा है सुरक्षा परिषद की वीटो शक्ति। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के पास वीटो का अधिकार है। यदि इनमें से कोई एक देश किसी प्रस्ताव का विरोध कर दे तो वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता, चाहे विश्व के अधिकांश देश उसके पक्ष में ही क्यों ना हो। परिणाम स्वरूप कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र प्रभावी कार्यवाही करने में असमर्थ दिखाई देता है। ये व्यवस्था समानता के सिद्धांत पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। दूसरी सीमा है महाशक्तियों का राजनीतिक प्रभाव। कई बार संयुक्त राष्ट्र के निर्णय अंतर्राष्ट्रीय न्याय के बजाय शक्तिशाली देशों के राजनीतिक हितों से प्रभावित होते हुए दिखाई देते हैं। इससे छोटे और विकासशील देशों का विश्वास कमजोर पड़ता है और संगठन की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। तीसरी सीमा है निर्णयों को लागू करने की सीमित क्षमता। संयुक्त राष्ट्र के पास अपने निर्णयों को लागू कराने के लिए कोई स्वतंत्र सेना या बाध्यकारी शक्ति नहीं है। उसे सदस्य देशों के सहयोग पर निर्भर रहना पड़ता है। यदि कोई देश उसके प्रस्तावों का पालन ना करे तो अक्सर संयुक्त राष्ट्र केवल अपील या प्रतिबंध तक ही सीमित रह जाता है। चौथी सीमा है बदलती वैश्विक चुनौतियों के अनुरूप धीमी कार्य प्रणाली। आज साइबर अपराध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग, डिजिटल निगरानी, अंतरिक्ष सुरक्षा और जैविक खतरों जैसे नए मुद्दे सामने आए हैं। इन विषयों पर अभी भी संयुक्त राष्ट्र की नीतियां पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हो सकी हैं। तेजी से बदलती दुनिया में निर्णय प्रक्रिया इस प्रभावशीलता को प्रभावित करती है। पांचवी सीमा है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संकट। विश्व लगातार बढ़ते तापमान, समुद्र के बढ़ते स्तर, सूखा, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने अनेक जलवायु सम्मेलन आयोजित किए हैं, लेकिन अधिकांश निर्णय सदस्य देशों की स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं पर आधारित है। परिणाम स्वरूप लक्ष्य तय होते हैं पर उनका पूर्ण क्रियान्वयन अक्सर नहीं हो पाता। छठी सीमा है वित्तीय निर्भरता। संयुक्त राष्ट्र का बजट सदस्य देशों के योगदान पर निर्भर करता है। जब बड़े योगदानकर्ता देश अपने भुगतान में देरी करते हैं या राजनीतिक कारणों से आर्थिक दबाव बनाते हैं, तब संगठन की कोई योजनाएं प्रभावित होती हैं। सातवीं सीमा है प्रतिनिधित्व का अभाव। आज भारत, ब्राजील, जर्मनी, जापान और अनेक अफ्रीकी देशों जैसी उभरती शक्तियां वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। फिर भी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता अभी भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की व्यवस्था पर आधारित है। इससे वर्तमान

मान वैश्विक वास्तविकताओं का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। कोविड-19 महामारी ने भी संयुक्त राष्ट्र की सीमाओं को उजागर किया। वैश्विक संकट के समय देशों ने कई मामलों में राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी। वैक्सीन, चिकित्सा संसाधनों और आपूर्ति श्रृंखला के मामलों में वैश्विक सहयोग अपेक्षित स्तर पर नहीं दिखा। इससे ये स्पष्ट हुआ कि वैश्विक संस्थाओं को और अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है। आज विश्व यूक्रेन रूस संघर्ष, पश्चिम एशिया में तनाव, आतंकवाद, साइबर हमलों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दुरुपयोग और जलवायु आपदाओं जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है। ऐसे समय में संयुक्त राष्ट्र के सामने केवल युद्ध रोकने का नहीं बल्कि विश्वास, सहयोग और न्याय पर आधारित नई वैश्विक व्यवस्था बनाने का दायित्व भी है। मित्रों, आलोचना का उद्देश्य किसी संस्था को कमजोर करना नहीं बल्कि उसे अधिक प्रभावी बनाना होता है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र में सुधार समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि सुरक्षा परिषद का लोकतांत्रिक विस्तार किया जाए, वीटो शक्ति पर पुनः विचार हो।

0: किसी संस्था को कमजोर करना नहीं बल्कि उसे अधिक प्रभावी बनाना होता है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र में सुधार समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यदि सुरक्षा परिषद का लोकतांत्रिक विस्तार किया जाए, वीटो शक्ति पर पुनः विचार हो, विकासशील देशों को उचित प्रतिनिधित्व मिले, निर्णय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बने और नई वैश्विक चुनौतियों के लिए प्रभावी तंत्र विकसित किया जाए, तो संयुक्त राष्ट्र पहले से कई अधिक सशक्त, न्यायपूर्ण और विश्वसनीय संस्था बन सकता है। विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में भारत सदैव वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पूरा विश्व एक परिवार है की भावना में विश्वास रखता है। भारत का मानना है कि 21वीं सदी की चुनौतियों का समाधान 21वीं सदी की वास्तविकताओं के अनुरूप संस्थाओं से ही संभव है। अंत में मैं महात्मा गांधी जी के इस विचार के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। शांति का कोई अलग मार्ग नहीं होता, शांति ही मार्ग है। आइए हम सब एक ऐसे संयुक्त राष्ट्र की कल्पना करें जो केवल राष्ट्रों का संगठन न होकर मानवता की सामूहिक आशा, न्याय और समानता का सशक्त प्रतीक बने।
1: साथियों, अभी आपने सुनी वार्ता जिसका विषय था समकालीन विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की सीमाएं। वार्ताकार थी रुखसार। अब एक बार फिर से दोस्तों वक्त हो चला है एक म्यूजिकल ब्रेक का, तो आइए चलते हैं।

दोस्तों, आज की डिजिटल दुनिया में हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा स्क्रीन के इर्द गिर्द घूमता है। पढ़ाई हो, काम हो, मनोरंजन हो या दोस्तों से बातचीत, हर चीज़ के लिए हम मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट का यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बढ़ता हुआ स्क्रीन टाइम हमारी सेहत पर क्या असर डाल रहा है? दोस्तों, लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों में थकान, सरदर्द, नींद की समस्या और गर्दन व पीठ में दर्द जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और इतना ही नहीं, लगातार ऑनलाइन रहने से तनाव, चिंता और कंसंट्रेशन में कमी जैसी मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम ग्रीन टाइम यानी प्रकृति के बीच बिताए गए समय को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। पार्क में टहलना, पेड़ पौधों के बीच समय बिताना, आउटडोर गेम्स खेलना या गार्डनिंग करना न केवल बॉडी को एक्टिव रखता है, ये मन को भी शांति और ताजगी देता है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि हर दिन कुछ समय प्रकृति के साथ बिताने से तनाव कम होता है, मूड बेहतर होता है और मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग होती है। इसलिए कोशिश करें कि हर एक घंटे के स्क्रीन टाइम के बाद कुछ मिनट्स का ब्रेक ज़रूर लें और दिन में कम से कम आधा घंटा खुले वातावरण में ज़रूर बिताएं। याद रखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी हमारी ज़रूरत है लेकिन प्रकृति हमारी शक्ति है, इसलिए स्क्रीन और ग्रीन टाइम के बीच बैलेंस बनाना ही स्वस्थ जीवन की कुंजी है।

अभी आपने सुना युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा। सब 6 बजे हैं। अब आप सुनेंगे किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम ग्रामीण लोक।

ग्रामीण लोक कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी रेडियो दोस्त ऋतुजा का राम राम नमस्कार। मित्रों, संध्या के 6 बज चुके हैं और आज के कार्यक्रम की इस कड़ी में बात कुछ जीवन से जुड़ी, यानी मिट्टी से जुड़ी, क्योंकि मिट्टी ही एक ऐसा तत्व है जिसमें ताकत है जीवन के संचार की, यानी एक बीज को एक विशाल वृक्ष के रूप में विकसित करने की। सोचिए, अगर एक बीज को मिट्टी ना मिले या जहरीली मिट्टी मिले तो क्या होगा? भाई, सीधी सी बात है, या तो बीज पनपेगा ही नहीं, या फिर दूषित मिट्टी के कारण बीज में भी जहर का अंश मिल जाएगा, यानी उससे तैयार फसल भी दूषित होगी और इसका सीधा असर मानव स्वास्थ्य पर ही पड़ेगा। और आज के समय में रासायनिक खाद के अंधाधुंध इस्तेमाल से यही हो भी रहा है। साथियों, रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों के लंबे समय तक प्रयोग से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है, साथ ही जल प्रदूषण भी बढ़ता है। और इसके साथ ही लगातार रासायनिक खाद के इस्तेमाल से मिट्टी के प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ और ह्यूमस कम हो जाते हैं, जिससे मिट्टी खटोर और बंजर हो जाती है। और हाँ, रासायनिक खाद में मौजूद घुलनशील नमक भी मिट्टी के पीएच स्तर को बिगाड़ देते हैं और इस कारण केंचुए फायदेमंद बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और मिट्टी में पाए जाने वाले तत्व जिंक, बोरॉन और आयरन जैसे जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। और साथियों, सबसे गंभीर बात यह है कि रासायनिक खाद से तैयार फसल का सीधा असर मानव स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, जिससे कैंसर, त्वचा रोग, हार्मोनल असंतुलन जैसी समस्याएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। हमारे कुछ किसान भाई जो अज्ञानता या ज़्यादा उपज के लालच में रासायनिक खाद का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं, वही जान लें कि शुरुआती पैदावार भले ही अच्छी मिल जाए, लेकिन लगातार रासायनिक खाद के इस्तेमाल से मिट्टी की ताकत घटने लगती है और नतीजतन हर वर्ष अधिक फसल प्राप्त करने के लिए अधिक मात्रा में खाद खरीदनी पड़ती है, जिससे खेती घाटे का सौदा बनने लगती है।

और आर्थिक लाभ घटने लगता है। तो भैया हम तो यही कहेंगे कि रासायनिक खाद के घातक प्रभावों से बचने के लिए जैविक उर्वरकों को अपनाइए और मिट्टी की स्वस्थ सेहत के साथ मानव जीवन भी खुशहाल हंसता खिलखिलाता बनाइए और फिर हमारे साथ गुनगुनाइए।

0: साथियों, आज हम मिट्टी से जुड़ी बात कर रहे थे। जैसे एक अच्छी उपज के लिए मिट्टी का सेहतमंद होना जरूरी है, वैसे ही एक संस्कारी संतान की निर्मिति में भी उसके परिवार और माता पिता की अहम भूमिका जरूर होती है। और ऐसी ही एक गुणी संतान थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी एवं शिक्षाविद के रूप में विख्यात थे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी अपने पिता के संस्कारों का ही अनुसरण किया और छोटी सी आयु में ही विद्या अध्ययन के क्षेत्र में कई सफलताएं अर्जित की और मात्र 33 वर्ष की आयु में ही कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक महान विचारक और शिक्षाविद थे, जिनका मानना था कि धर्म के आधार पर विभाजन गलत है। उन्होंने अपने जीवन में राष्ट्रीय हितों की प्रतिबद्धता को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता माना और भारतीय जनसंघ के रूप में एक नई पार्टी बनाई। आज देश की एकता और अखंडता के प्रखर उपासक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हम उनकी पुण्यतिथि पर नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट, जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: साथियों, खेती किसानी के काम में कभी फुर्सत नहीं मिलती, कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है। अब देखिए ना, आषाढ़ लगते लगते धान की फसल की तैयारी का समय करीब आ गया, तो भैया हम भी इसीलिए धान की बढ़िया उपज से जुड़ी जानकारी लेकर हाजिर हैं। तो आज हमें हमारे विशेषज्ञ फैज बख्श सैयद बताएंगे धान की उन्नत फसल प्राप्त करने के उपाय। तो चलिए सुनते हैं आज की ये वार्ता, धान की उन्नत खेती।
2: खरीफ फसलों में धान एक प्रमुख फसल है। इसकी उत्पादकता बढ़ाने हेतु काफी संभावनाएं हैं, लेकिन यह तभी संभव हो सकता है जब इसकी खेती वैज्ञानिक विधि से की जाए। धान की अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए कृषकों को जो बातें ध्यान में रखनी हैं, वे इस प्रकार हैं। स्थानीय परिस्थितियों जैसे क्षेत्रीय जलवायु, मिट्टी, सिंचाई साधन, जल भराव तथा बुवाई एवं रोपाई की अनुकूलता के अनुसार ही इसकी संस्तुत प्रजातियों का चयन करें। शुद्ध एवं प्रमाणित बीज बुवाई में प्रयोग करें। मृदा परीक्षण

आधार पर संतुलित उर्वरक, हरी खाद एवं जैविक खाद का प्रयोग करें। उपलब्ध सिंचाई क्षमता का पूरा उपयोग करते हुए समय से बुवाई एवं रोपाई करें। संस्तुत सघन फसल पद्धतियों को अपनाएं। किसी भी फसल की अधिक पैदावार लेने के लिए स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसकी उपयुक्त प्रजाति का चयन करना अति आवश्यक है। धान की रत्ना, गोविंद, मनहर, नरेंद्र 80 शीघ्र पकने वाली प्रजातियां हैं, जो पकने में 100 से 120 दिन का समय लेती हैं। साकेत 4, पंतधान 4, पंतधान 12, आईआर 50, सरजू 52 मध्यम अवधि में पकने वाली प्रजातियां हैं, जो पकने में 120 से 140 दिन का समय लेती हैं। इसकी महसूरी क्रॉस 116 देर से पकने वाली प्रजातियां हैं, जो पकने में 140 दिन से अधिक का समय लेती हैं। इनके अतिरिक्त टाट 3, बासमती 370, पूसा बासमती 1, हरियाणा बासमती, पूसा सुगंधी 2, पूसा सुगंधी 4 इसकी सुगंधित प्रजातियां हैं। ऊसर धान 1, नरेंद्र ऊसर धान 2 एवं 3 तथा CSR 10 इसकी उसरीली भूमि हेतु उपयुक्त प्रजातियां हैं। इसकी टाइप 100 महसूरी, चकिया 59, जलमग्न, मधुकर ऐसी प्रजातियां हैं जो निचले एवं जल भराव के लिए उपयुक्त हैं। अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए अब धान की संकर भी उपलब्ध हैं, जो सामान्य प्रजातियों की अपेक्षा लगभग 20% अधिक पैदावार देती हैं। PRS 10 एवं प्रो एग्रो की 6244 ऐसी ही धान की संकर प्रजातियां हैं। ध्यान यह रखना है कि इनका बीज प्रतिवर्ष नया प्रयोग किया जाएगा, जबकि सामान्य प्रजातियों के उत्पाद को ही किसान भाई 2-3 वर्ष सफलतापूर्वक प्रयोग में ला सकते हैं। अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए पहले इसकी पौध नर्सरी में तैयार की जाती है। 1 हेक्टर क्षेत्र में रोपाई हेतु महीन धान का 30 किलोग्राम, मध्यम धान का 35 किलोग्राम तथा मोटे धान का 40 किलोग्राम बीज पौध तैयार करने हेतु पर्याप्त रहता है। संकर धान के लिए 20 किलोग्राम बीज पर्याप्त है। रोग एवं बीमारियों से बचाव हेतु बुवाई से पूर्व बीज का शोधन अवश्य कर लें। इसके लिए 4 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या 40 ग्राम प्लांटोमाइसिन दवा 25 किलोग्राम बीज के शोधन हेतु पर्याप्त रहेगी। आवश्यक दवा को पानी में घोल लें तथा उसमें बीज का 1 रात भिगो रखना आवश्यक है। दूसरे दिन बीज को घोल से निकालकर छाया में फरेरा कर लें, तत्पश्चात नर्सरी में बुवाई हेतु प्रयोग करें। रोपाई की जाने वाले क्षेत्रफल के 15वें भाग में नर्सरी तैयार करें, यानी 15 हेक्टर में रोपाई करने हेतु आपको 1 हेक्टर क्षेत्रफल में नर्सरी डालनी होगी। नर्सरी में 100 किलोग्राम नाइट्रोजन एवं 50 किलोग्राम फास्फोरस तत्व के रूप में प्रयोग करें। नर्सरी में पौधों की सुरक्षा कीट एवं बीमारियों से करते रहें। खैरा रोग से बचाव हेतु 500 ग्राम जिंक सल्फेट को 250 ग्राम चूने के पानी के साथ 100 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसी प्रकार सफेदा रोग से बचाव हेतु 400 ग्राम फेरस सल्फेट को 250 ग्राम चूने के पानी के साथ 100 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। आवश्यकता अनुसार इन दवाओं के 2-3 छिड़काव किए जा सकते हैं। अगर आपके पास पैडी ट्रांसप्लांटर उपलब्ध है तो इसके लिए मैट टाइप की नर्सरी तैयार करें। अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग किया जाए। यदि यह संभव न हो तो शीघ्र पकने वाली प्रजातियों हेतु

120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं 60 किलोग्राम पोटास तत्व के रूप में प्रयोग किया जाए। मध्यम देर से पकने वाली प्रजातियों हेतु 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटास तत्व के रूप में प्रयोग करें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस एवं पोटास की पूरी मात्रा रोपाई के पूर्व प्रयोग करें। नाइट्रोजन की शेष मात्रा को दो बराबर बराबर भागों में बांटकर कल्ले फूटते समय तथा वाली बनने की प्रारंभिक अवस्था पर प्रयोग करें। 2 क्विंटल प्रति हेक्टर की दर से जिप्सम या पायराइट का प्रयोग बेसल ड्रेसिंग के रूप में करने से फसल को लोह एवं गंधक की आवश्यक मात्रा प्राप्त हो जाती है। सिंगल सुपर फॉस्फेट के प्रयोग से भी गंधक की कमी को दूर किया जा सकता है। लगातार धान गेहूं फसल चक्र वाले क्षेत्रों में हरी खाद का प्रयोग करें अथवा 10-12 टन प्रति हेक्टर की दर से गोबर की खाद या कंपोस्ट प्रयोग में लाएं। जायद में मूंग की खेती करने से धान की फसल को 15 किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत होती है। इसी प्रकार सनई या ढेंचा की हरी खाद से लगभग 40 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत होती है। धान की अच्छी पैदावार के लिए इसकी समय से रोपाई करना अत्यावश्यक है, अन्यथा पैदावार में कमी आती है। 130 से 140 दिन में पकने वाली प्रजातियों की रोपाई जून के तीसरे सप्ताह से जुलाई मध्य तक तथा शीघ्र पकने वाली प्रजातियों की रोपाई जून के तीसरे सप्ताह से जुलाई के अंत तक करना चाहिए। इसी प्रकार देर से पकने वाली प्रजातियों की रोपाई जुलाई के अंत तक कर देनी चाहिए। बासमती धान की रोपाई 15 जुलाई तक कर देना चाहिए। सामान्यतः रोपाई हेतु 21 से 25 दिन की पौध उपयुक्त होती है। देर से पकने वाली प्रजातियों एवं ऊसर हेतु 30 से 35 दिन की पौध उपयुक्त रहती है। सामान्य परिस्थितियों में एक स्थान पर 2-3 पौधे रोपाई में प्रयोग करें। देर से रोपाई करने में 3-4 पौधे लगाएं। उर्वरा भूमि में रोपाई 20x15 सेंटीमीटर के फासले पर करें। अच्छी पैदावार के लिए 50 हिल प्रति वर्ग मीटर होनी चाहिए। उसरीली भूमि एवं देर से रोपाई करने की स्थिति में 65 से 70 हिल प्रति वर्ग मीटर होना चाहिए। धान की फसल को खाद्यान्नों में सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इस फसल को रोपाई के एक सप्ताह तक कल्ले फूटते समय, बाली निकलते समय, फूल खिलते समय तथा दाना भरते समय पानी की विशेष आवश्यकता होती है। अतः इन अवस्थाओं पर अगर वर्षा न हो तो सिंचाई अवश्य कर देनी चाहिए। धान की फसल से खरपतवारों को नष्ट करने हेतु खुरपी एवं पेडी बीटर का प्रयोग करें। खरपतवार नाशी रसायनों द्वारा भी यह कार्य किया जा सकता है। रोपाई वाले धान में खरपतवारों को नष्ट करने हेतु ब्यूटाक्लोर 5% ग्रेनुल्स की 30 से 40 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टर की दर से प्रयोग करें। दवा प्रयोग के समय खेत में 3 से 4 सेंटीमीटर पानी भरा होना चाहिए। अन्य फसल की तरह धान की फसल में भी कीट एवं बीमारियों का प्रकोप होता है, जिनसे फसल सुरक्षा हेतु सजग रहना चाहिए। इसके लिए बुवाई से पूर्व बीज का शोधन अवश्य करें। खैरा रोग से बचाव हेतु 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट को 2.5 किलोग्राम चूने के पानी के साथ 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर बने घोल का छिड़काव करें। जीवाणु झुलसा के लिए 15 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन व 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड अथवा 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति हेक्टर की दर से आवश्यक पानी में घोलकर छिड़काव करें। सफेदा रोग से बचाव हेतु 4 किलोग्राम फेरस सल्फेट को 2.5 किलोग्राम चूने के पानी के साथ 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। पत्ती लपेटक कीट से बचाव हेतु 1.25 लीटर इंडोसल्फान या क्यूनल्फास

0: रिएक्टर की दर से आवश्यक पानी में घोलकर छिड़काव करें। गंदी कीट की रोकथाम हेतु 5% मेलाथियन या 0.4% फेनवल रेट पाउडर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से भुरकाव करें। बाल काटने वाले सैनिक कीट से बचाव हेतु 1.5 लीटर क्लोरोपायरीफॉस 20 ईसी अथवा डाइक्लोरोवास 76 ईसी का प्रयोग प्रति हेक्टर की दर से करें।
1: अभी आपने सुनी वार्ता धान की उन्नत खेती और आज हमारे वार्ताकार थे फैज बख्श सैयद। भैया, समय बड़ी तेजी से बदल रहा है। आए दिन नए नए तरीके की मशीनें बन रही हैं और कुछ मशीनें तो ऐसी बन गई हैं कि बस एक आवाज़ दो और मन चाहा काम करवा लो, यानी कि रोबोट जो आपके हर काम में मददगार है, यहाँ तक कि खेती किसानी के कामकाज में भी। साथियों, अब तो AI से चलने वाली ऐसी मशीन भी आ गई है जो फसल के शुरुआती दौर में ही रोग की पहचान कर लेती है और एक बटन दबाने मात्र से फसल कटाई से लेकर खरपतवार हटाने तक का काम कर सकती है। तो भैया, आप भी अपनाइए नई तकनीक और बन जाइए स्मार्ट किसान और पाइए इसी कड़ी में हमसे आज और कल के तापमान मौसम का ज्ञान। आज यानी मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहा एवं न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। कल यानी बुधवार को भी अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और साथियों, तपती दोपहरी और गर्मी के मौसम में अब हम विदा लेते हैं। अभी हम विदा लेने से पहले करते हैं गीत संगीत फुहार की ओर

अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम्य लोक, मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 6:30 और 12 सेकंड हुए हैं। अब समय है कार्यक्रम मजदूर मंडल का।

कार्यक्रम मजदूर मंडल के सभी श्रमिक भाई बहनों को, सभी श्रोताओं को कल्पना सरकार का नमस्कार। और श्रमिक भाई बहनों, आज भी आपसे मुलाकात हो रही है। हर रोज की तरह ढेर सारी बातें होंगी, दिल की बातें, लेकिन आज कार्यक्रम की शुरुआत में ना आपसे आज का प्रश्न पूछ लेते हैं ताकि आपको समय मिल जाए उसका उत्तर ढूंढने के लिए। तो आपको बताना है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी। आप सोचिए, टाइम काफ़ी है, लेकिन अभी आपको ले चलते हैं प्राचीन भारत के सफ़र पर। साथियों, प्राचीन भारत को, हमारे देश को सोने की चिड़िया भी कहते थे, है ना। स्वर्ण युग था साथियों, गुप्त काल को स्वर्ण युग की उपाधि दी गई है क्योंकि इस युग में ना आर्यभट्ट ने शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज की थी। अब सोचिए, जीरो के आगे, टू के आगे जीरो नहीं होता, तीन के आगे जीरो नहीं होता, तो नंबर नंबर ही रह जाते हैं ना, बढ़ते नहीं, 20 नहीं बनता, 200 नहीं बनते। तो आर्यभट्ट का बहुत बड़ा योगदान है। इसी तरह कालिदास जैसे महान साहित्यकार भी इसी युग में हुए। अजंता एलोरा की गुफाएं में जो उत्कृष्ट चित्रकारी आप देखते हैं ना, मूर्ति कला जो उसमें दिखाई देती है, उन गुफाओं में इसी युग की ही देन है। और प्रथम सर्जन सुश्रुत, उसे कैसे भूल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी के सामने उनकी मूर्ति है, तो बड़े गर्व की बात है ना हमारे लिए। तो इसी युग में ही हुए हैं। पता है साथियों, भारत की जो प्राचीन काल में अर्थव्यवस्था थी ना, मजबूत थी, देश में शांति थी, लोगों के पास पर्याप्त धन था, जीवन सुखमय था, यहाँ तक कि विधवाओं को सम्मान दिया जाता था, उनको पुनर्विवाह का अधिकार भी था। लेकिन धीरे धीरे विदेशी हमलों के कारण देश में अनेक सामाजिक कुरीतियाँ फैल गई। सती प्रथा, प्रदा प्रथा के साथ नारी का जो जीवन था ना, नरक जैसा हो गया था, अंधकार में, कष्टमय हो गया था। उनका मुंडन करा दिया जाता था, यानी सारे बाल सिर से कटवा दिए जाते थे। खान पान में भी प्रतिबंध था, बहुत सारी चीज़ों को खाने की मनाही थी। उन्हें एकांत में जीवन बिताना पड़ता था, अशुभ माना जाता था। किसी के सामने आ जाए तो सोचिए, वहाँ से वो निकल जाती थी, बाहर हो जाती, अरे हाय हाय करते हुए, ऐसी सोच हो गई थी। लेकिन ईश्वरचंद विद्यासागर, राममोहन राय ने इसका विरोध किया

विधवाओं के साथ दुर्व्यवहार का प्रतिरोध किया। पता है साथियों, जब राम मोहन रॉय के भाई जगमोहन की मृत्यु हो गई तो उनकी भाभी को सती प्रथा के चलते सती होना पड़ा और इस दर्दनाक घटना ने उनके जीवन को बदल दिया। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ अपना पूरा जीवन लगा दिया और ईश्वर चंद विद्यासागर के साथ काम करने लगे। साथियों, ईश्वर चंद विद्यासागर एक महासुधारक थे। उन्होंने पुराने हिंदू शास्त्रों की गहराई से अध्ययन किया और साबित किया कि प्राचीन ग्रंथों में भी विधवाओं को विवाह की अनुमति थी, क्योंकि जो वो दौर था ना साथियों, कोई उनकी बात नहीं मान रहा था। भाई, विधवाओं को अकेले ही रहना पड़ेगा, उनके साथ बहुत कड़े नियम बांध दिए गए थे, तो जिसका वो विरोध कर रहे थे। तो ब्रिटिश सरकार के पास गए तो ब्रिटिश सरकार को सरकार ने उनके उनसे कहा कि भाई 1000 हस्ताक्षर वाली एक याचिका दाखिल करो। उस समय लोगों को मनाना साथियों इस विधवा विवाह के लिए बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने किया। विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में लगभग उन्होंने 1000 हस्ताक्षर वाली एक याचिका दाखिल की। उनके आंदोलन के कारण ही साथियों देश का पहला अधिकारी हिंदू पुनर्विवाह संपन्न हुआ। उन्होंने तो अपने इकलौते बेटी की शादी बिना एक विधवा से कराई थी। विधवाओं के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त करना था साथियों उनका मकसद। लेकिन अफसोस, आज भी आप देखते होंगे कि कई घरों में, कई जगहों में उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उन्हें अशुभ माना जाता है। आज आप पावन नगरी वृंदावन बनारस में जाएंगे तो वो अकेली दिखाई देंगी, परिवार से दूर, इस भेदभाव की वो शिकार हो रही हैं। देखिए साथी, वो जानबूझकर तो विधवा नहीं हुई ना, दोबारा शादी कर जीवन जीने का वो हक रखती हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस जो कि आज हम मना रहे हैं, उसका उद्देश्य यही है साथियों, क्योंकि दुनिया भर में जितनी भी विधवाएं हैं उनको अनेक रूप से आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, तो लोगों को जागरूक करता है ये दिवस साथियों, कि ये बताए कि विधवाओं को भी जीने का हक है, उन्हें सम्मान देना चाहिए। साथियों, आज बिना पति की मृत्यु के बाद महिलाओं को संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है। बेचारी बच्चों के साथ यदि माता पिता साथ देते हैं, जो कि अधिकतर देते हैं, उनके यहाँ रहने चली जाती हैं। यदि भाई भाभी अच्छे ना हुए तो वो भी दुश्वार हो जाता है। बहनों, देखिए साथियों, आपको अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, आत्मसम्मान की रक्षा स्वयं करनी होगी, अधिकारों के लिए स्वयं लड़ना होगा। बेशक अपनों का सहयोग भी ज़रूरी है, इसके लिए देखिए आपको शिक्षित होना होगा, क्योंकि शिक्षा ही आपको जागरूक कर सकती है, आपको जीने की राह दिखा सकती है, आपको आपकी खुशियों से रूबरू करा सकती है, और तब आपका मन यूँ गुनगुना कर खुशी के साथ इस तरह बह सकता है।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: तो हाँ साथियों, हम बात कर रहे थे हमारी बहनों की, हमारे देश की महिलाओं की। साथियों, ये तो सच है कि जब घर में बेटियों को, बहनों को, महिलाओं को प्यार सम्मान दिया जाता है ना, उस घर में खुशियां ही खुशियां होती हैं। और आज की महिला तो साथियों मल्टीटास्कर है, एक साथ ढेरों काम कर लेती हैं। आज वो इतनी सशक्त है कि वो अपने सपनों को पूरा करने, लक्ष्य तक पहुँचने के लिए जी जान लगा देती हैं। लेकिन देखा ये जाता है कि सूर्य के उदय होते ना होते वो खड़ी हो जाती है।

0: काम से आने के बाद भी कामों में लगी रहती है। छुट्टी क्या है वो जानते ही नहीं। हाँ, कह सकते हैं संघर्ष और सफलता के बीच आज की जो नारी है ना, उसमें आत्मविश्वास कूट कूट के भरा है। लेकिन उसको अपनों का साथ भी चाहिए, उसके दर्द उसके संघर्ष में साथ देने में उसका अपनों का सहयोग होना चाहिए। चलिए संघर्ष और सफलता के बीच आज की नारी की स्थिति क्या है, इस विषय पर ही हम बात करते हैं वार्ता के माध्यम से। वार्ताकार है सरिता कुमारी।
1: प्राचीन काल से लेकर अब तक भारतीय नारी शक्ति ने हमें पढ़ने पर अपनी शक्ति और संघर्ष से दुनिया को चमत्कृत किया है। मगर आज जिस उत्साह और विश्वास के साथ आज की नारी ने जिस तरह समाज की तस्वीर को बदला है, वह काबिले तारीफ है। परंपरावादी सोच से आगे निकलते हुए आज की हर बेटी अपने लक्ष्य को भेदने के लिए संघर्षरत है। वैसे तो आज संपूर्ण समाज ने ही अपनी सोच में सुधार किया है, मगर देश के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां बेटियों के प्रति सोच में मगर सुधार की जरूरत है। बड़ी खुशी मिलती है जब हमें किसी समाचार से पता चलता है कि देश की किसी बेटी ने अपने देश का नाम रोशन किया है। ऐसे ही समाचार प्रत्येक घर की बेटी को जागृत करते हैं और एक रास्ता भी दिखाते हैं कि हम भी वो कर सकते हैं जिससे दुनिया में हमारी पहचान हो। ऐसी पहचान के लिए संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है। एक तरफ जहां पुरुषों के लिए किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है, वहीं दूसरी तरफ बेटियों की दो छोर पर संघर्ष करना होता है। एक तरफ अपना करियर जिसमें नारी शक्ति शासन प्रशासन राजनीति डॉक्टर इंजीनियर खेल पत्रकारिता अंतरिक्ष विज्ञान के अलावा टीवी सीरियल में महिलाएं आज अपना जबरदस्त कौशल दिखा रही हैं। किरण बेदी पीटी उषा बछेंद्री पाल और आज के दौर में सानिया मिर्जा साइना नेहवाल पीवी सिंधु, ये ऐसे नाम हैं जो देशवासियों को गर्व करने का मौका देते हैं। आज की तारीख में समझदार इंसान बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं मानता, बेटियों को बराबर के मौके उपलब्ध कराता है। मगर फिर भी देश में आज भी कुछ इलाकों में लोगों ने बेटियों को वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई हैं जिसकी वे हकदार हैं, बल्कि कई जगह तो ये भी देखा जाता है कि बेटियों की पढ़ाई रोककर शादी कर दी जाती है। एक बेटी जो अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुकी है, उसके इस चक्रव्यूह को तोड़ना बस मुश्किल काम हो जाता है। और जो बेटी इस झंझावत से निकलकर अपनी तैयारी में जुट जाती है, वो ही दुनिया के सिर माथे की बिंदिया बनती है। आज की तारीख में शायद ही कोई नारी हो जिसने कुछ कर दिखाने का सपना ना सजोया हो। एक प्रत्येक मानव का ये सपना होना भी चाहिए और आज की नारी बदलते परिवेश में समाज और देश के लिए कुछ करना चाहती है तो हमें उसे रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उसके द्वारा किए जा रहे संघर्ष में उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसकी राह में कांटे बिछाने का काम करना चाहिए। मूल बात यह है कि यदि हमारे परिवार पड़ोस का माहौल सहज और सहयोगपूर्ण है और किसी के चरित्र पर बेवजह लांछन और आरोप लगाने की दूषित प्रवृत्ति नहीं है, तो फिर हमें किस बात की चिंता। और यदि एकाध शख्स आस पड़ोस में ऐसा मौजूद है तो उसकी परवाह किए बिना हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी स्थिति में देखा गया है कि बेटियों पर जब भी ऐसे आरोप आए हैं, वे उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ती हैं। हाँ, मगर ऐसी स्थिति में बेटी के घर वालों के हौसले कुछ कुंद हो जाते हैं। बस यही वक्त होता है जब हम ऐसी सोच के व्यक्ति को पीछे छोड़ते हुए आगे निकलना है। ऐसा समय किसी भी बेटी के जीवन में विजयी होने के समान है जब उसके माता पिता भाई बहन उसके कांधे से कांधा मिलाकर उसका साथ देते हैं। और जब ऐसी बेटी के ऐसे घर वाले हों, भला उसको आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। ऐसी बात नहीं है कि जो नाम नारी जगत में महान है उन्होंने संघर्ष नहीं किया। अगर हम उनसे उनकी सफलता के बारे में पूछते हैं तो संघर्ष में एक नई दास्तान हमारे सामने आती है। इसलिए हमें कभी भी संघर्ष करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। और वैसे भी

मानव का जीवन तो संघर्षमय होता है, उसमें भी महिलाओं को अधिक संघर्ष करना पड़ रहा है। आज की नारी का किसी मामले में संघर्ष आने वाली पीढ़ी को एक सुलभ रास्ता उपलब्ध कराएगा। फिर किसी भी समाज में ऐसा नहीं होगा जो एक बेटी के रास्ते को रोक सके। ये खुशी की बात है कि दुनिया के बहुत सारे देश महिलाओं की शक्ति, विचार और विविधता से समाज को सुधारने की दिशा में काम होना देखना चाहते हैं, जिससे समाज में खुशहाली और समृद्धि आए। इन सब बातों के अलावा हमें ये भी देखना होगा कि बेटियों के स्वास्थ्य के प्रति कोई समझौता ना हो। देखा जाता है कि घर की गृहिणी सबको भरपेट खाना खिलाकर जो बचता है उसे ही खाकर पानी पी लेती है, फिर चाहे उसके लिए भोजन कम ही क्यों ना पड़ गया हो। अब हमें ये भी नहीं करना है, क्योंकि कमजोर मातृशक्ति होगी तो देश को मिलने वाली नौनिहाल

0: उसे ही खाकर पानी पी लेती है, फिर चाहे उसके लिए भोजन कम ही क्यों ना पड़ गया हो। अब हमें ये भी नहीं करना है, क्योंकि कमजोर मात्र शक्ति होगी तो देश को मिलने वाली नौनिहाल दुर्बल होंगे। ऐसी स्थिति से हमें अपने आप को बचाना है और अपना, अपने बच्चों और देश का भी ख्याल रखना है। ये सभी काम स्वच्छता के साथ हो तो सेहत निर्माण में भी ऐसा करना सहायक होगा। कहा भी जाता है कि जहाँ स्वच्छता होती है वहीं पर स्वास्थ्य होता है, और अच्छे स्वास्थ्य बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए अच्छे स्वास्थ्य के साथ संघर्ष करने का अपना एक अलग सुख है। आज की नारी सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ सके, इसके लिए आवश्यक कि वो पूरी तरह से शिक्षित हो, क्योंकि शिक्षा ही विकास की पहली सीढ़ी है। आज की नारी शिक्षित होगी तो आने वाली पीढ़ियां भी शिक्षित होंगी। नारी के संघर्ष में शिक्षा ही वो सबसे बड़ा हथियार है, जो हर तरह की बाधाओं को काटकर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त कराता है।
1: संघर्ष और सफलता के बीच आज की नारी, यही था आज का विषय वार्ता का, और इस विषय पर बातें कर रही थी, जानकारी दे रही थी हमारी आज की वार्ताकार सरिता कुमारी। साथियों, आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में एक प्रश्न पूछा था, आपको याद है? प्रश्न था, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, ये और कोई नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ये महान विभूति, महान शिक्षाविद थे, राष्ट्रवादी नेता, विचारक थे। साथियों, बचपन से ही ना वे पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने कम उम्र में ही बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली थी। मात्र 33 वर्ष की आयु में कोलकाता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने, और आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री बने। लेकिन देश हित के कुछ मुद्दों पर मतभेद होने के कारण उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनसंघ की स्थापना की। साथियों, जनसंघ आगे चलकर भारतीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण धारा बनी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मानना था दोस्तों कि भारत की एकता अखंडता सबसे ऊपर है। जम्मू कश्मीर से जुड़े विशेष प्रावधानों का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने प्रसिद्ध नारा भी दिया था, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। और इसका विरोध जताने के लिए वो जम्मू कश्मीर गए, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनका वहां निधन हो गया था। उनकी मृत्यु, उनका बलिदान साथियों हमें देश में एकता अखंडता बनाए रखने का संदेश देता है, क्योंकि उनका पूरा जीवन ना राष्ट्र की एकता, शिक्षा, जनसेवा को समर्पित जो था। उनके विचार, उनका योगदान आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है साथियों। जी हाँ साथियों, उनके विचार और सोच मुख्य रूप से राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय एकता, शिक्षा, सांस्कृतिक मूल्य पर आधारित थी। उनका विश्वास था कि शिक्षा राष्ट्र निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम है। उनका मानना था कि आधुनिकता के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण भी जरूरी है। वे लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक स्वतंत्रता के समर्थक थे। उनका विश्वास था कि सरकार को जनता के हित में कार्य करना चाहिए। उनका मानना था कि देश को अपनी क्षमताओं के बल पर आगे बढ़ना चाहिए। वे एक ऐसे भारत की कल्पना करते थे दोस्तों, जो मजबूत, एकजुट और अपनी सांस्कृतिक पहचान पर गर्व करने वाला राष्ट्र हो। देखिए साथियों, हमें तो अपने राष्ट्र पर गर्व है, अपनी संस्कृति पहचान पर अभिमान है। अब हल्दी की बात को ले लीजिए। देखिए, कहाँ इस्तेमाल नहीं होता, हर धार्मिक कामों में होता है, और 80% उत्पादन भारत में होता है। औषधि गुण के लिए भी जाना जाता है। तभी तो अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी मेडिकल सेंटर के शोधकर्ताओं ने हल्दी के घाव भरने वाले गुणों के उपयोग पर एक पैटर्न की मांग की थी, लेकिन भारत ने ये पैटर्न रद्द करवा दिया, क्योंकि हल्दी साथियों भारत

संस्कृति की एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। भोजन में, आयुर्वेद में, धार्मिक अनुष्ठानों में, सामाजिक परंपराओं में इसका इस्तेमाल होता आ रहा है। औषधि गुणों के बारे में क्या कहें, देखिए सूजन को कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट के गुण इसमें पाए जाते हैं, घाव भरने में सहायक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, गैस अपच पाचन संबंधी समस्याओं में उपयोगी है, त्वचा के लिए लाभकारी है, गठिया जोड़ों के दर्द में सूजन को कम करता है। ये इसकी चमत्कारी गुणों के कारण ही ना साथियों, हम हर घर में आप देखते होंगे कि हल्दी है, इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो भाई हमें तो इसके गुणों पर विश्वास है, और क्यों ना अब एक इस खुशी को जाहिर करें एक गीत के माध्यम से। सफलता का आशीर्वाद केवल उन्हीं को ही मिलता है जिन्होंने कभी संघर्ष के कदमों को स्पर्श किया हो।

आप भी उड़ान भरे, सपनों को पंख लगे, अंधेरों को चीर कर रोशनी की ओर बढ़ते जाएं, यही कामना है हमारी। लेकिन अभी कल्पना सरकार को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी हमारे मजदूर भाइयों ने सुना कार्यक्रम मजदूर मंडल। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। 7 बजने को हैं, आइए अब सुनते हैं हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से हैं। ये पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की तीन श्रेणियों में दिए जाते हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और पार्श्व गायिका अलका याग्निक को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किए गए। सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए काम करने का आह्वान किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के स्नातक दाखिलों के परिणाम आज घोषित कर दिए हैं। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस साल प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर्स के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक एलपीजी कैरियर, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर पाएंगे। कतर में हुए धमाके पर श्री जायसवाल ने बताया कि इस घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई।
2: रासलफान परियोजना में जो वहां

0: During the exercise, personnel from the National Security Guard, the Special Operations Group of the Jammu and Kashmir Police and the Central Reserve Police Force jointly carried out a combing and clearing operation across the base camp premises. In ISSF Junior World Championship, Indian shooter Shiva Narwal won the silver medal in the men's 10-meter air pistol junior event with an impressive performance, while Yug Pratap Singh Rathaur claimed the bronze in the same event in Zul, Germany. India also secured a silver medal in the men's 10-meter air pistol junior team event, where the trio of Shiva Narwal, Sandeep Bishnoi and Chirag Sharma combined to deliver a strong performance and finish on the podium. With these three medals, India's overall tally has risen to 15, comprising 5 gold, 3 silver and 7 bronze medals. In the FIFA World Cup, Portugal will face Uzbekistan in a Group K fixture at Houston in US. The match will begin at 10:30 p.m. IST. In Group L, England will take on Ghana in a highly anticipated clash in Boston at 1:30 a.m. And that is the end of this news bulletin. Surkhiyon mein.
1: न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी आगरा है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:10 हुए हैं। अब समय है कार्यक्रम विविधा का, जिसमें आज आप सुनेंगे भावना वरदान शर्मा से वार्ता। विषय है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की दृष्टि में अखंड और संघीय भारत।
2: आज हम एक ऐसे महान व्यक्तित्व का स्मरण करने जा रहे हैं जिन्होंने राष्ट्र सेवा, शिक्षा और राजनीति तीनों ही क्षेत्रों में अतुलनीय योगदान दिया है। माँ भारती के पुत्र, राष्ट्रभक्त, विद्वान, राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रबल समर्थक, भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने कहा, राष्ट्रधर्म सबसे बड़ा धर्म है और जीवन पर्यंत इसी सिद्धांत पर अडिग रहे। उनका मानना था, अखंड भारत की अवधारणा मात्र भौगोलिक नहीं है, बल्कि ये भारत के प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का स्वरूप है और भारत की संघीय व्यवस्था राष्ट्रीय अखंडता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और एकीकरण पर आधारित हो, अलगाववाद पर नहीं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनके लिए कहा कि अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न होते तो आज कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा न होकर पाकिस्तान का हिस्सा होता। पश्चिम बंगाल भी आज जो भारत का हिस्सा है तो उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का विशेष योगदान है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म कोलकाता में 6 जुलाई 1901 को हुआ। इनके पिता श्री आशुतोष मुखर्जी एक सुप्रसिद्ध शिक्षाविद थे जिन्हें बंगाल टाइगर की उपाधि प्राप्त थी। ये कोलकाता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे। अपने पिता के ही पदचिन्हों पर चलते हुए वे भी मात्र 33 वर्ष की उम्र में कोलकाता यूनिवर्सिटी के सबसे युवा वाइस चांसलर बने। राष्ट्र की एक अखंडता और संघीय भारत के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उनका मानना था कि भारतीय संस्कृति विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का समावेश है और यही उसका सौंदर्य है। भारत की प्राचीन गौरवशाली सभ्यता पूरे विश्व में अनूठी है। भारत को धर्म के आधार पर विभाजित करना इसकी आत्मा पर प्रहार करने जैसा होगा। वे विभाजन के प्रबल विरोधी थे, विशेष रूप से धर्म के आधार पर विभाजन को स्वीकार करने के लिए वो तैयार नहीं थे। उन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परिकल्पना को यथार्थ किया, साथ ही वे संघीय व्यवस्था की अवधारणा का समर्थन करते थे। उनका मानना था कि क्षेत्रीय विविधताओं और परंपराओं को साथ लेकर भारत जैसे विशाल देश को केंद्र संचालित शासन से चलाना संभव नहीं हो सकता, इसलिए संघीय व्यवस्था के द्वारा राज्य को संचालित करना चाहिए। भारत के प्रत्येक राज्य में

उसके मौलिक ढांचे और आधारभूत आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशासनिक व्यवस्था हो, तभी संघीय भारत का निर्माण हो सकेगा। साथ ही राष्ट्रीय एकीकरण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। बंगाल हो या कश्मीर, किसी भी राज्य को अलग से संवैधानिक पहचान ना दी जाए। भारत की सांस्कृतिक विरासत और उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसकी अखंडता ही सर्वोपरि है। राज्यों के लिए संघीय व्यवस्था हो, किंतु इसका अर्थ अलगाववाद कदापि नहीं होना चाहिए। उन्होंने आर्थिक एकीकरण को अत्यंत आवश्यक बताया। उनका मानना था कि देश के औद्योगिक विकास का लाभ देश के प्रत्येक राज्य तक पहुंचना ही चाहिए, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर औद्योगिक संतुलन बना रहे। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनावों की भूमिका के साथ साथ देशवासियों के मन में राष्ट्र के प्रति समर्पण या निष्ठा की भावना हो, ऐसा उनका सपना था। वर्तमान समय में भारत विकास के नए आयामों की ओर अग्रसर है। ऐसे में डॉक्टर मुखर्जी का जीवन दर्शन हमें बहुत आवश्यक संदेश देता है। राष्ट्रवाद और संघीय भारत में संतुलन रखते हुए एक सुदृढ़ विकसित भारत का निर्माण किया जाना चाहिए। उन्होंने जिस प्रकार राष्ट्रीय एकीकरण और अखंडता के विचार का सूत्रपात किया और साथ ही संघीय भारत की परिकल्पना को यथार्थ किया, ये विचारधारा अमृत काल में भारत को वैश्विक स्तर पर अलग पहचान बनाए रखने में सहायक होगी। 1939 में वे हिंदू महासभा में शामिल हुए। स्वतंत्र भारत में उनका अविस्मरणीय योगदान है। 1947 में डॉक्टर मुखर्जी को भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में शामिल किया गया। उन्होंने देश को तीन अति विशाल औद्योगिक उपक्रम दिए, जैसे कि चितरंजन लोकोमोटिव, सिंदरी कात कारखाना और हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट की स्थापना कर उन्होंने देश के औद्योगिक विकास को गति प्रदान की। भारतीय जनसंघ की स्थापना एवं संसद में उनका योगदान इस प्रकार रहा। मंत्रिमंडल में वैचारिक मतभेद के चलते उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, जिसके वे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। सन 1952 में वे प्रथम लोकसभा में अपने दो अन्य सदस्यों के साथ निर्वाचित हुए। नेहरू लियाकत समझौते के दौरान हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को देखते हुए व्यथित होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद उन्होंने 21 अक्टूबर 1952 को भारतीय जनसंघ की विधिवत स्थापना की और यही आज की भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने एकात्म मानवतावाद, अंत्योदय और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विचार दिया। उनका मंत्र था, सबका साथ सबका विकास, तुष्टीकरण किसी का नहीं। 1952 में कश्मीर में धारा 370 लागू की गई, तब इन्होंने जम्मू एवं कश्मीर प्रजा परिषद के मुद्दे को उठाया और मांग की कि उस राज्य का भारत के साथ ही विलय किया जाए। 1953 में जम्मू जाकर इन्होंने सत्याग्रह किया और विशाल जनसभा में कहा कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे। यही नारा लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया और श्रीनगर की जेल में ले जाकर रखा गया। 23 जून 1953 को रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी जेल में मृत्यु हो गई। उस समय उनकी उम्र केवल 51 वर्ष थी। रिपोर्ट में मृत्यु का कारण दिल का दौरा बताया गया। देश भर में भारत माँ के इस पुत्र के आकस्मिक निधन से शोक छा गया। आज कोलकाता पत्तन का नाम उनके नाम पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन के माध्यम से ग्राम विकास के कार्य हो रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन हमें सिखाता है कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है और सिद्धांतों के लिए किया गया त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। 23 जून को उनकी पुण्यतिथि पर हम केवल उनके जीवन दृष्टांत का स्मरण नहीं करते, बल्कि उनको जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास करते हैं। ऐसे राष्ट्र नायक को शत शत नमन।

0: अभी आपने सुनी कार्यक्रम विविधा में भावना वरदान शर्मा से वार्ता। विषय था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की दृष्टि में अखंड और संघीय भारत। मीडियम वेव 106.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर ऐप पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:19 हुए हैं। आपसे कुछ ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। ये प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।
1: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लखनऊ अग्निकांड मामले में एसआईटी और फॉरेंसिक टीम ने आज घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य। प्रदेश सरकार ने 4 अधिकारियों को किया निलंबित, 4 आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने आज गृह विभाग को सौंपी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट। कहा, अभी जुटाए जा रहे हैं और सबूत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में प्रदान किए पद्म पुरस्कार। प्रदेश के अनिल कुमार रस्तोगी, मंगला कपूर, चिरंजी लाल यादव और रघुबत सिंह पद्मश्री से सम्मानित। और वाराणसी में रोप वे सेवा का किराया तय, न्यूनतम ₹10 और अधिकतम ₹50 में होगी यात्रा। काशी स्मार्ट पास धारकों को मिलेगी 20% की छूट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ तन्वीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के मामले की जांच के लिए आज फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों ने संयुक्त रूप से घटनास्थल का निरीक्षण किया। विशेष जांच दल ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के बाद केजीएमयू पहुंचकर घायलों से भी बातचीत की। वहीं फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाने के साथ ही जांच के लिए पूरी इमारत को सील कर दिया है। पत्रकारों से बातचीत में एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने बताया कि जांच में सभी विभागों की जिम्मेदारी को देखा जाएगा और सभी पहलुओं पर गहराई से गौर करने के बाद रिपोर्ट दी जाएगी।
3: माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विशेष जांच दल का जो गठन हुआ है उसमें अभी हम लोगों ने डिटेल घटनास्थल का निरीक्षण किया है। हमें कुछ जो शुरुआती साक्ष्य मिले हैं उसके बेसिस पर हमें फर्दर लोगों से पूछताछ करनी है, विक्टिम से भी बातचीत करनी है। हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे, हर डिपार्टमेंट के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट जो कि निर्धारित समय सीमा है मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
2: इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर रात उच्च स्तरीय बैठक में दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित एसआईटी में संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात और लखनऊ के एडीजी जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। जांच दल 7 दिन में रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगा। अलीगंज पुलिस की ओर से देर रात इस मामले में 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर इमारत के मालिक सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही नगर निगम के 2 और ऊर्जा विभाग और फायर डिपार्टमेंट के 1-1 अधिकारी को निलंबित किया गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में घटना में जान गंवाने वालों के अंतिम संस्कार में शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है।
4: बहुत ही दुखद घटना है हमारे जीवन की। परिजनों को तत्काल यूपी गवर्नमेंट ने 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता पहुंचा दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2-2 लाख रुपए की सहायता पहुंचाई है और ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार पीड़ित परिजनों के साथ खड़ी है और भी जो भी आवश्यकता होगी हम पूरा कर जो भी कर सकते करेंगे। आगे घटनाएं न हो उसके उपाय किए जाएंगे और जो भी दोषी होंगे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
2: लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अवैध निर्माण को लेकर 2016 में

0: भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन दो महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। लखनऊ में अग्निकांड के बाद आज प्रदेश के सभी जनपदों में अग्निशमन सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासन ने होटलों और कोचिंग सेंटरों में चेकिंग अभियान चलाया। वाराणसी के दुर्गाकुंड क्षेत्र में वाराणसी विकास प्राधिकरण, पुलिस और फायर सर्विस की संयुक्त टीम ने निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर एक कोचिंग संस्थान को सील कर दिया। वहीं बस्ती, मेरठ, जौनपुर, अमरोहा, अंबेडकर नगर, फरुखाबाद, आगरा समेत अन्य जिलों में चेकिंग अभियान चलाकर नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है। एसआईटी के प्रमुख सदस्य और लखनऊ मंडल के आयुक्त विजय विश्वास पंत ने टीम के अन्य दो सदस्यों के साथ आज अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को ये प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बताया कि ये प्रारंभिक प्रतिवेदन है, एसआईटी की जांच अभी जारी है और सबूत जुटाए जा रहे हैं।
1: शासन द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है, जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में दो पद्म विभूषण, सात पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश की चार हस्तियों समेत 56 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति ने साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए एसिड अटैक सर्वाइवर मंगला कपूर को पद्मश्री से नवाजा।
3: प्रोफेसर मंगला कपूर, साहित्य एवं शिक्षा, शास्त्रीय संगीत।
2: राष्ट्रपति ने कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव को पद्मश्री से सम्मानित किया। कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रहने वाले रघुपत सिंह को मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया। उनकी पत्नी प्रेमवती ने ये पुरस्कार स्वीकार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में पद्म पुरस्कार पाने वाली प्रदेश की हस्तियों को बधाई दी और उनके योगदान को अमूल्य और सराहनीय बताया। इस वर्ष 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया था। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर लखनऊ के सिविल अस्पताल में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए उनका सर्वोच्च बलिदान प्रत्येक देशवासी के हृदय में सदैव राष्ट्रवाद की लौ प्रज्वलित करता रहेगा। यूपी टीईटी 2026 की परीक्षा अगले माह 2 से 4 जुलाई के बीच होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा प्रदेश के 60 जनपदों के 955 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र 30 जून से आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड किए जा सकते हैं। हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट और हज सुविधा मोबाइल ऐप पर 20 जुलाई तक पंजीकरण कराया जा सकता है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में डिजिटल रैंडम चयन प्रक्रिया के माध्यम से चयनित यात्रियों की सूची जारी की जाएगी। वाराणसी में रोपवे सेवा का किराया तय कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक कैंट, विद्यापीठ, रथ यात्रा और गोदौलिया स्टेशनों के बीच न्यूनतम किराया 10 रुपये और अधिकतम 50 रुपये निर्धारित किया गया है। कैंट से गोदौलिया तक की पूरी यात्रा मात्र 50 रुपये में होगी। काशी स्मार्ट पास धारकों को किराए में 20% की छूट मिलेगी। देश की पहली शहरी सार्वजनिक परिवहन रोपवे परियोजना कैंट से गोदौलिया तक लगभग 3.75 किलोमीटर मार्ग पर संचालित होगी। ज्येष्ठ माह के आखिरी बड़े मंगल पर आज प्रदेश के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की कतारें लगी हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्त दर्शन

0: के लिए पहुंच रहे हैं। लखनऊ में इस अवसर पर बड़ी संख्या में भंडारे लगाए गए हैं। प्रदेश के अधिकांश जनपदों में तेज गर्मी और लू का सिलसिला जारी है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने कहा कि अगले चार दिनों तक पूर्वी जनपदों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। हालांकि 27 जून के बाद बारिश होने की संभावना है।
1: कोई सक्रिय मौसमी तंत्र न होने के कारण पछुआ हवाएं आ रही हैं, जिसके कारण कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर हीट वेव या लू की स्थितियां बनी हुई हैं और इन स्थितियों के अगले चार दिनों तक बिना किसी विशेष परिवर्तन के ऐसे ही जारी रहने की संभावना है। 28 जून से पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा का एक नया दौर आरंभ होगा और 29 जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्कैटर्ड यानी कि कुछ जगहों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ अग्निकांड मामले में एसआईटी और फोरेंसिक टीम ने आज घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य। प्रदेश सरकार ने चार अधिकारियों को किया निलंबित, चार आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने आज गृह विभाग को सौंपी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट। कहा, अभी जुटाए जा रहे हैं और सबूत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में प्रदान किए पद्म पुरस्कार। प्रदेश के अनिल कुमार रस्तोगी, मंगला कपूर, चिरंजी लाल यादव और रघुपत सिंह पद्मश्री से सम्मानित। और वाराणसी में रोपवे सेवा का किराया तय, न्यूनतम 10 रुपए और अधिकतम 50 रुपए में होगी यात्रा। काशी स्मार्ट पास धारकों को मिलेगी 20% की छूट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
2: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

0: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:31 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान से अनेन्द्र सिंह की खास बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे आकाशवाणी आगरा स्टूडियो में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान जी उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने श्रोताओं की तरफ से हमारे आकाशवाणी आगरा स्टूडियो में। नमस्कार मैडम
2: जी। नमस्कार
1: मैडम। हमारे समाज में कहा जाता है यत्र नारेस्ति पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। महिलाओं की स्थिति को अगर हम देखें तो आज से ही नहीं बल्कि अगर हम देखें तो वैदिक काल से हमारे समाज में बहुत ऊपर उनका स्थान रखा गया है। लेकिन उसी समाज में महिलाओं की स्थिति जब ऐसी होती है जहां पर हमें सोचने की ज़रूरत हो, ख़ास तौर पर वो महिलाएं जो समाज को एक दिशा देने का काम करती हैं, आने वाली पीढ़ी को दिशा देने का काम करती हैं, उन महिलाओं के साथ जब अन्याय होता है तो हम सबको कहीं ना कहीं एक बुद्धिजीवी होने के नाते सोचने की ज़रूरत होती है। उन महिलाओं के लिए जो विधवा हो जाती हैं और उनकी जो सामाजिक स्थिति होती है वो ऐसी होती है जब हमें सोचना पड़ता है, जिसके बारे में शोषण की शिकार होती हैं, अत्याचार जब उन पर होते हैं, तब ये लगता है कि महिलाएं उपेक्षा की नहीं, उनको अधिकारों की आवश्यकता है। उसी समाज में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस जैसे दिवस हम मनाते हैं, ऐतिहासिक रूप से महिलाओं की जो स्थिति है उससे तो हम सब वाकिफ हैं, लेकिन ये जो पक्ष जिसकी मैं आज बात करना चाहता हूँ या कर रहा हूँ अपने कार्यक्रम में जी। उसके बारे में आपका क्या सोचना है?
2: एक्चुअली वैसे मैं आपको बताऊँ, जो अपनी मेरी

0: ओपिनियन है वो ये है कि जो ये आजकल एक प्रचलन सा बन गया है ना, हर चीज का दिवस मनाने का,
1: जी
0: और वो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, मुझे लगता है कि अगर भारत की बात की जाए तो ये हमारी कम से कम भारतीय संस्कृति से कहीं मैच नहीं करते ये दिवस। जैसे डॉटर्स डे है, फादर्स डे है, मदर्स डे है,
1: जी
0: या ये आज आपने बताया कि
1: अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस है।
0: अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस है। मुझे लगता है एक्चुअली ये पश्चिम का कल्चर है कि जहाँ शायद साल में ही एक बार मिलने का मौका मिलता, राइट?
1: जी
0: कि वो चाहे वो बच्चे हैं तो बच्चों का बना दिया कि भाई ये
1: एक दिन के लिए साल भर में हमने कैद कर दिया कि इस दिन
0: ना।
1: के लिए
0: हाँ,
1: पर्टिकुलरली
0: एक्चुअली
1: दिवस
0: क्या है,
1: हो गया।
0: क्योंकि वहाँ बहुत ऐसा सिस्टम है कि जो सभी सेपरेट रहते हैं, सबको बहुत प्राइवेसी चाहिए होती है, बच्चे अलग हैं, पेरेंट्स अलग हैं, सब कुछ अलग है, तो वो एक एक दिन फिक्स कर दिया जिससे कि एक दिन वो मिलेंगे और सबसे उस डे की बदौलत वो सबसे जाके मिलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय संस्कृति में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो अभी एक सामूहिक सबका रहने की परंपरा है और वो सब रहते भी हैं। लेकिन जो आपने एक विषय आज चुना है कि मैं तो ये कहूंगी अंतर्राष्ट्रीय वो कि विधवा
1: विधवा
0: दिवस है, लेकिन अगर विधवाओं की बात की जाए तो मुझे लगता है कि एक दिन ना चुन के, अगर जहां ऐसे लोग हैं जिनको हमारे हमारे थोड़े से सहयोग की जरूरत है, जिनको हमारे से थोड़ी सी हमसे थोड़ी सद्भावना की उम्मीद रखते हैं,
1: सहानुभूति चाहते हैं।
0: सहानुभूति की उम्मीद रखते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर तो हमें हर वक्त ही तैयार रहना चाहिए। उसके लिए मुझे नहीं लगता कि किसी एक दिन को हमें सेलेक्ट करना चाहिए कि भाई इस दिन ही हम इन सब के बीच में रहेंगे या रहेंगे, क्योंकि देखिए मैं ये कहती हूँ हर रिश्ते की अपनी एक वैल्यू होती है। अगर वो माँ बाप का रिश्ता है, बच्चों के लिए एक बाप की माँ की वैल्यू एक अलग होती है, वहीं एक पत्नी की पति की वैल्यू एक अलग होती है एक दूसरे की, तो हर रिश्ते की वैल्यू अलग होती है और हर रिश्ते का एक दर्द जो होता है वो भी एक अलग होता है।
1: बिल्कुल ठीक।
0: लेकिन अगर कहा जाए कि विधवा वाली जो बात आपने कहा कि जो विधवाएं हैं, मुझे लगता है कि वो एक ऐसा नासूर है कि जो कम से कम महिलाओं के जो जीवन में ऐसी महिलाओं की जो किसी योग्य नहीं है, कहीं अपने मतलब आत्मनिर्भर भी नहीं है वो हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही दुखदायी स्थिति उनके जीवन में रहती है। वो जो एक खालीपन है वो उनके जीवन में रहता है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बजाय हम इसे एक दिवस के रूप में मना के, अगर जहां ऐसे लोग हैं जिनके साथ हम रह सकते हैं, उनके हम थोड़ा प्यार दे सकते हैं, उनका हम थोड़ा मदद कर सकते हैं उनकी किसी भी रूप में, तो ऐसे लोगों से तो हमेशा जुड़े रहना चाहिए,
1: बिल्कुल,
0: मुझे
1: ये
0: लगता है।
1: बात
0: जी
1: बिल्कुल ठीक कही है आपने कि हमें इस केवल एक दिन के लिए ही नहीं, हमको हर वक्त, हम चूंकि मानव हैं और रिश्तों की जो अहमियत है, मुझे नहीं लगता कि भारतीय समाज से दुनिया सीखती आई है और भारतीय समाज में रिश्तों की जो अहमियत है उसको शायद पूरी दुनिया मानती और जानती है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम जब महिलाओं को अच्छा दर्जा देते हैं समाज में, तो वहीं ये भी है कि ऐसे समाज में विधवा स्त्रियों को अपशकुन के तौर पर भी देखा जाता है, खासकर जो विधवा हो जाते हैं या उनको उपेक्षा की भाव से देखा जाता है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक जो हमारा जो चरित्र है या हमारे जो एक नज़रिया है, खासकर विधवा समाज में जो है उनको लेके, उस पर भी हमें सोचने की तो आवश्यकता है ही।
0: देखिए वैसे तो मैं ये कहूंगी कि जो ये थोड़ी दकियानुसी जैसी बातें हैं कि जो जितना पहले था उतना अब नहीं है,
1: हाँ,
0: अब
1: परिवर्तन हो रहे
0: है ना,
1: हैं।
0: अब मैं ये कहूंगी कि हिंदुस्तान बदल रहा है, और अब तो मुझे लगता है कि जितना क्या बिल्कुल भी शायद नहीं है।
1: जी
0: मुझे अब कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलता कि जहाँ जो पहले बना दिया था कि एक विधवाओं के लिए रूम भी अलग होते थे, उनको निकलने नहीं देते थे, उनको कपड़े भी वाइट पहनने होते थे, कोई मेकअप नहीं कर सकती थी, किसी शुभ काम में वो नहीं जा सकती थी, इवन मतलब लोग कहते थे अरे भाई सुबह सुबह विधवा का मुंह देख लिया, तो ये जो चीजें थी ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रही थी। और ये किस प्लानिंग के तहत ये सब चीजें आगे बढ़ती गई, ये कहीं ना कहीं इन चीजों के, देखिए जैसा जितना हम आगे बढ़ रहे हैं, जितना साइंस आगे बढ़ रही है, जितना हम चीजों के खोज में जाते हैं, उतनी चीजों में बदलाव आ रहा है और
1: बिल्कुल
0: हिंदुस्तान बदल रहा है, मैं ये कहूंगी, जागरूकता आ रही है लोगों में, तो मुझे लगता है कि वो सारी चीजें नहीं है, वो सब खत्म
1: और
0: हो गई।
1: इसकी शुरुआत
0: तो
1: शायद जो है जब हमारी आजाद हुआ हिंदुस्तान और भारतीय जो पुनर्जागरण काल कहा जाता है, जहां राजा राम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोगों ने विधवा स्त्रियों के विवाह को लेके, और उसमें अगर हम नाम जोड़ना चाहें तो हमारे ज्योतिबा फूले, ऐसे कुछ लोग जो आए हमारे समाज में जिन्होंने विधवाओं की स्थिति को लेकर समाज में लोगों तक वो काम करने का प्रयास किया जो हमारे लिए एक आज नजीर है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा, इस बात पे मुझे ध्यान आया कि अभी हम माता अहिल्या बाई
1: होलकर
0: होल्कर

0: गर्जी का भी
1: जी
0: बहुत अच्छा एक, जो हमारे इतने विलुप्त से हो चुके थे, जो हमारा, जिसको कहना चाहिए कि जो हमारा हकीकत में जो हमारा इतिहास है, जो हमारे पूर्वज थे,
1: जी
0: जो हमारे, जो कहना चाहिए चाहे वो महिला हैं चाहे पुरुष थे, जो भी इतने ऐसे लोग, उन सबको दबा दिया गया था एक प्लानिंग के तहत। सिर्फ अगर मैं कहूं तो मुगल शासकों का या तो थोड़ा इतिहास रहा है, या फिर अगर बहुत ज्यादा उस तरफ जाते हैं तो थोड़ा कहीं कहीं अंग्रेजों का भी थोड़ा सा निकल आता है। अदरवाइज मुगल तो, क्योंकि हमने आज तक अगर इतिहास की बात की जाए तो इतिहास का एक तरह से मतलब ही वही समझ में आता था कि सिर्फ हमें मुगलों के बारे में जानना और मुगलों के बारे में पढ़ना। हमारा तो कोई अपना इतिहास ही नहीं छोड़ा किसी ने। लेकिन ये मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के सोच को, उनको बहुत ही, मतलब मैं कहती हूँ कि जितनी तारीफ करूं उतना कम है, कि आज जितने हमारे पुराने जो हमारे योद्धा थे, जो हमारे महापुरुष थे, जो हमारी ऐसी माताएं थी जिनसे आज सुन के और देख के भी प्रेरणा मिलती है, तो वो उन लोगों को उन्होंने समाज के में लाने का काम किया। अभी जैसे मैं बताऊंगी कि अहिल्याबाई जी के, जैसे हमने सारे में शताब्दी समारोह मनाया, उनका 300 शताब्दी समारोह था। आज मैं कह सकती हूं कि शायद मुश्किल से 10% लोग भी अहिल्याबाई जी का नाम सुना होगा, लेकिन अगर कहूं कि वो उनके बारे में जानते होंगे तो शायद वो भी नहीं जानते होंगे।
1: जी
0: एक आध 2% होंगे जो पुराने लोग की बता सकते हैं, पर ऐसा नहीं था कि उनको कहीं कहानियों में सुना जाता होगा ये, जबकि आज अगर उनको देखो तो क्या उनकी हिस्ट्री थी। मैं ये बात मतलब उससे भी जोड़ती हूँ, विधवा
1: गर्व
0: होने
1: से
0: से
1: आपका
0: भी
1: मस्तक जो है ऊंचा हो
0: ऊंचा हो
1: जाता
0: जाएगा
1: है
0: ये,
1: जब
0: मैं
1: अपने पूर्वजों के
0: यस।
1: बारे में जब हम
0: और जो
1: जानते और उनके
0: इतना
1: सामने में
0: सेक्रीफाइस
1: पढ़ते हैं।
0: करके कि जिनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई, जिनके बेटे की भी डेथ हो गई, जिनकी एक बेटी थी उसकी भी डेथ हो गई, उसके बावजूद उन्होंने इतना अपने आप को प्रूफ किया, और इस देश के लिए कुछ बताने की जरूरत नहीं कि उन्होंने क्या क्या किया।
1: जी
0: तो मुझे लगता है कि जब ऐसे चेहरे होते हैं तो फिर ये लगता है कि बीच में कुछ जरूर ऐसा पीरियड आया होगा कि जहां हमें और हमारी संस्कृति से हमें दूर किया गया, हमारे इतिहास को छिपाया गया, और जहां हम फिर ये सोचने में मजबूर हो गए कि भाई लड़कियों की स्थिति ऐसी है, विधवाओं की स्थिति ऐसी है। वरना मैं तो ये कहूंगी कि विधवा और लड़कियों के बारे में अगर हिंदुस्तान में बात की जाती है तो मुझे जरा कम समझ में आती है, क्योंकि यहाँ तो भारत को भी भारत माता कहते हैं,
1: जी
0: यहाँ भूमि को भी
1: माँ
0: भूमि
1: कहा
0: माँ
1: जाता है,
0: कहा जाता है, यहाँ नदियों को भी
1: माँ का
0: माँ
1: दर्जा
0: कहा
1: दिया
0: जाता
1: जाता
0: है।
1: है।
0: तो ऐसे में भला कैसे उपेक्षित किया जा सकता है महिलाओं को?
1: बिल्कुल ठीक
0: तो
1: बात कहा
0: ये
1: आपने कि हमारे समाज में इतने उदाहरण मिलेंगे आपको
0: जी
1: जिनसे हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है,
0: बिल्कुल
1: जिनको हमें पढ़ने और जानने समझने की जरूरत है। आपने कहा कि जो अहिल्याबाई होलकर का उदाहरण दिया, विधवाओं की जो स्थिति रही प्राचीन काल में देखें, बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए हैं हमारे समाज में जिन्होंने उनकी स्थिति को लेकर, विधवा पुनर्विवाह को लेकर बहुत आंदोलन किए और उसमें बहुत अपना योगदान दिया। आज की स्थितियों में अगर देखें तो वो जो विधवा पुनर्विवाह की स्थितियां हैं उनको लेकर समाज के दृष्टिकोण में आपको लगता है कि बदलाव अब आ रहे हैं?
0: हाँ बिल्कुल। अब एक्चुअली कहना चाहिए कि एक, जिसको कहते हैं ना कि एक स्वतंत्र विचार
1: जी
0: है अब ना, तो मुझे नहीं लगता कि अब किसी के ऊपर कोई इतनी बंदिशें कोई करता है, या कुछ इतना दकियानुसी तरीके से कोई बात करता है, या कुछ ऐसी बाउंडेशंस हैं। अब लोगों ने, लोगों को जिंदगी उनकी खुद की जीने का एक अधिकार दे दिया है समाज
1: जी
0: ने भी। तो अब तो कम से कम ये नहीं है कि कोई इतनी किसी पर कोई छींटाकशी करना या कुछ करना, बल्कि अब तो पुनर्विवाह की अगर बात की जाए तो लोग उसको अच्छा कर समझते हैं, उसको
1: और
0: अप्रिशिएट
1: सरकारी
0: करते हैं।
1: सरकारी व्यवस्था में और सामाजिक संस्थाएं भी शायद इसमें बढ़ चढ़कर प्रयास कर रही हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल 100%। सरकारी अगर मैं कहूँ तो सरकारी तो, अगर या तो पूरे महिलाओं के लिए कहा जाए तो सरकारी योजनाओं का तो रिकॉर्ड तोड़ योजनाएं हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार की हैं और चाहे वो केंद्र सरकार की हैं।
1: जी
0: और अब सामाजिक संस्थाओं ने, उन सब ने मोटिवेट ये करना शुरू किया है कि देखिए, अब पहले क्या है, पहले बहुत बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, ज्वाइंट फैमिली होती थी, तो घर में बहुत सारे होते थे। अगर बाई चांस किसी के साथ ऐसी दुर्घटना घट भी जाती थी तो वो महिला अपने आप को अकेला फील नहीं करती थी, क्योंकि परिवार में इतने सारे लोग होते थे।
1: जी
0: आज इतने छोटे परिवार हैं कि माँ बाप हैं, 2 बच्चे हैं, बच्चों में भी अगर एक बेटी है तो शादी हो गई, बेटा अगर कहीं नौकरी कर रहा तो चाहे, उसमें भी अगर हस्बैंड चला गया तो उस महिला का तो जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। तो सबका सोचना ये रहता है कि अगर उसको मिलता है कि उसका लाइफ पार्टनर कोई ऐसा है कि जो उसके साथ वो अच्छे से जिंदगी निकाल सकती है, खुश रह सकती है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है
1: बुराई नहीं
0: अगर मिल जाता है तो। सो
1: जी
0: क्योंकि वहां कोई ऐसी नीड नहीं होती किसी को कि भाई उसको पैसे की जरूरत है या कुछ भी है, पूरा परिवार संपूर्ण से एक साथी की जरूरत होती है जिससे हम अपने मन की बात कह सकते हैं, एक जिसके साथ हम अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर ये एक जिंदगी जीने के लिए बुरा नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: जी
1: समाज की सोच बदल रही है।
0: जी बिल्कुल,
1: और समाज की सोच तो बदल ही रही है, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जो हमारी

0: कानूनी व्यवस्था है और जो कानूनों का जो एक सरलीकरण हुआ है उसमें भी, चाहे वो उत्तराधिकार के कानून हो, चाहे वो कानूनी सहायता जैसे जो प्रावधान हो, उनमें भी बहुत हद तक जो है उनको एक्सेसिबल बनाया गया है ऐसे लोगों के लिए जिनको उनकी सख्त ज़रूरत है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए पहले तो मैं बताऊंगी आपको कि किसी भी चीज के लिए एक क्या होता है कि सरकार अपने प्रस्ताव पास कर देती है, राइट,
0: जी
1: और वो सारी चीजें आ जाती है, लेकिन पब्लिक को नहीं पता होता कि उसमें क्या हो रहा है, सिर्फ वो एक कागजों में एक चीजें बन के रह जाती हैं। लेकिन अब मैं फिर से एक बार कहना, मुझे कहना इसलिए पड़ता है कि जब अच्छी चीजों का जिक्र करती हूँ तो वह माननीय प्रधानमंत्री जी का जिक्र होता ही होता
0: जी
1: है,
0: जी जी
1: क्योंकि जब देश की व्यवस्थाओं को बदलने की बात आती है, जब देश के सुधार की कोई बात आती है, तो निश्चित रूप से वहां सरकार कोई भी हो उसका नाम लिया ही जाता है। तो मैं फिर भी यहां कहना चाहूंगी कि जैसे अगर आपने कहा कि भाई उनकी कुछ योजनाएं हैं, कुछ ऐसी चीजें, देखिए उनकी प्लानिंग तो है ही है कि हर व्यक्ति तक, लेकिन उनकी प्लानिंग ये भी बहुत मजबूत है कि उनको हर व्यक्ति तक पहुंचाना कैसे है।
0: जी
1: तो ये जो प्लेटफॉर्म जो तैयार किया है ना, जो ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब मैं अगर अपने अपने अगर आयोग के नाते भी अगर आयोग की बात करूं तो मेरा फोकस भी रहता है, क्योंकि जितनी सरकारी सुविधाएं हैं, जितनी सरकारी योजनाएं हैं, सरकार की जितनी प्लान है, उनको हम उस व्यक्ति तक कैसे पहुंचाएं जिसकी उसको जरूरत है। तो ये काम संगठन के द्वारा भी बहुत अच्छे से होता है, पार्टी के लोगों के द्वारा बहुत अच्छे से होता है, हर कार्यकर्ता इसमें लगा रहता है। तो मुझे लगता है कि योजना बनाना और योजनाओं का विस्तार करना, एक्चुअल लोगों को देना, ये बहुत बड़ी चीज है,
0: समाज के वो तबके जिनको उसकी अंतिम
1: जरूरत है,
0: पायदान पे ज़्यादा ज़रूरत
1: जरूरत
0: है
1: है,
0: उन
1: यस,
0: तक पहुँचाना,
1: बिल्कुल, उन तक
0: ये
1: पहुंचाना,
0: हमारा काम है।
1: बिल्कुल,
0: दोस्तों आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ी हैं सामाजिक कार्यकर्ता, महिला अधिकारों की प्रखर प्रवक्ता और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान। डॉक्टर बबीता जी, महिलाओं की स्थिति खासकर विधवाओं की अगर देखें तो सदियों से पीड़ाजनक रही है, हम सब जानते हैं। सती प्रथाओं को हमने देखा, बाल विधवाओं को हमने देखा, और ये एक ऐसी स्थिति थी जो उनकी नियत मान ली गई उस वक्त। सामाजिक सुधार भी बहुत सारे हुए, मानसिकता में जो ग्रामीण परिवेश है अगर हम देखें तो जो शहर का तबका है, शहर के एरिया हैं, वहाँ पर आपने कहा कि परिवारों का जो है वो बहुत छोटे हो गए, एकल परिवार हो गए, तो वो स्थितियाँ शायद ना हों, लेकिन ग्रामीण परिवेश में अगर हम देखें तो अभी भी मानसिकता बदले जाने की आपको आवश्यकता महसूस होती है क्या? क्या आपके पास ऐसे ऐसे उदाहरण या ऐसे केसेस आपके प्रकाश में आते हैं जहाँ पर आपको लगता हो कि ग्रामीण तबकों में उस मानसिकता को अभी भी बदले जाने की ज़रूरत है या और जागरूकता पहुंचाने की ज़रूरत है?
1: देखिए मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ ये बात कि अब वो वाली बात तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। आप कहीं भी जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि विधवाओं को विधवा समझ के उसका अपमान किया जा रहा है या किसी तरह की कोई बाउंडेशन। अब जो हमारे पास शिकायतें आती हैं वो थोड़ा डिफरेंट तरह की होती हैं। डिफरेंट मतलब कि कई बार ऐसे होते हैं कि किसी को किसी के पति नहीं है, कोई विधवा है और उसके अगर चार चार बेटे भी हैं लेकिन वो माँ को नहीं रखना चाहते, ऐसे में माँ क्या करती है कि कहाँ जाए, ठीक है। या तो अब इस तरह के तो बहुत सारे केस आते हैं
0: या
1: कि
0: उत्तराधिकार में उनको हिस्से वाली बात हो, वहां कुछ झगड़े उस
1: यस
0: तरह के भी
1: बिल्कुल ना,
0: आते
1: मतलब
0: हैं।
1: वही मैंने बताया कि
0: जी
1: अब अगर कुछ होते हैं तो परिवार की तरफ से दूसरी तरह की चीजें हैं, जैसे फाइनेंशियली हैं, प्रॉपर्टी को लेके विवाद हैं या कुछ है, क्योंकि वो महिला नेचुरली, जो एक महिला हमेशा अपने पति पर डिपेंड रही है और एक टाइम जब वो अकेली हो जाती है, तो क्योंकि अब थोड़ा सा मान मर्यादा है, ये थोड़ा भाई बहनों में भी प्यार और ये कहीं ना कहीं कुछ विलुप्त सा होता जा रहा है, और जब संपत्ति की बात आती है तो शायद मुझे लगता है कि रिश्ते नाते सब ताक पर रख देते हैं लोग, तो इन चीजों में थोड़ा सा भी है। लेकिन इसके लिए मैं फिर भी कहूंगी क्योंकि बहुत जागरूकता है ये समाज में, बहुत हो रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है।
0: जी
1: तो मुझे लगता है कि जब शिक्षा आपको प्रॉपर मिली होती है तो आपको अपने अधिकारों के बारे में भी पता होता है, और अभी क्योंकि अगर हम अपने से पहले वाली पीढ़ी को कहेंगे तो अभी भी वहाँ बहुत सारी माताएं ऐसी हैं जिनको, जो शिक्षित नहीं है या वो उतना अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानती हैं, जिनका उस तरह से शोषण हो जाता है औलाद के थ्रू, कि उनके बच्चे हैं और वो कोई वाहियात है, कई बार क्या है अकेली माँ है तो कोई बच्चा नशा करता है कुछ भी है तो उसको प्रॉपर्टी बिकवाना या उसको घर में नहीं रखना, बहू आ गई तो घर में नहीं रखना, तो ये जो सारी चीजें अब इस तरह की हैं। बाकी अब ऐसा कोई कहे कि वो विधवाओं के साथ वो जो पहले कभी हुआ करता था तो अब
0: उसमें
1: वो
0: जरूर कहीं ना कहीं कमी आपको
1: कमी है,
0: दिखती है। जी
1: कमी 100% कमी है उसमें,
0: जी
1: उसमें अब ऐसे ऐसे केसेस नहीं आते।
0: जो
1: जी
0: विधवाएं होती हैं खास तौर पे, अगर वो हम देखें तो परिवार हो या समाज हो, उस पे निर्भर हो जाती हैं, क्योंकि उनके

0: पास कभी देखेंगे तो संपत्ति से बेदखल कर दिया परिवार ने, तो ऐसे में उनको जो आर्थिक मदद है वो बड़ी ज़रूरी हो जाती है और वो उसकी तरफ देखती हैं, क्योंकि अगर आर्थिक संबल उनको मिलता रहे तो वो अपने आप को किसी तरह समाज में स्थापित करके, खड़ा करके ज़िंदगी जीने के लिए अपनी उसकी तरफ देखती हैं। तो जो सरकारी व्यवस्था है उसमें विधवा पेंशन स्कीम जैसी कुछ
1: यस
0: योजनाएं,
1: यस बिल्कुल।
0: उनके लिए आर्थिक रूप से कितना सशक्तिकरण प्रदान कर रहे हैं?
1: देखिए, जो विधवा पेंशन है, जिसके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है, तो मुझे लगता है कि पेंशन फिर उसके लिए कितना बड़ा सहारा होता है। और एक सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्ट उनके खाते में जाना, किसी को ये भी नहीं है, तो वो कम से कम उनको लगता है ये मेरी जो भी चीज़ है ये मेरी व्यक्तिगत है, इसको मेरे सिवा कोई नहीं छू सकता। तो ये बहुत बड़ा एक संबल मिला हुआ है विधवाओं को कि भाई जहाँ उनके कहीं, क्योंकि हर तरह का परिवार है घर में, कि ऐसा भी है जिनके पास पैसा है, ऐसे भी है जिनके पास पैसा नहीं।

0: लगता है ये मेरी जो भी चीज है ये मेरी व्यक्तिगत है, इसको मेरे सिवा कोई नहीं छू सकता। तो ये बहुत बड़ा एक संबल मिला हुआ है विधवाओं को कि भाई जहां उनके कहीं, क्योंकि हर तरह का परिवार है घर में, कि ऐसा भी है जिनके पास पैसा है, ऐसे भी है जिनके पास पैसा नहीं है, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए जो पेंशन आती है वो एक बहुत बड़ा उनके लिए उपहार है, बहुत बड़ा उनका सपोर्ट है। तो मुझे लगता है जो ये सरकार की योजना है इसका भी तारीफ करना चाहिए कि हमारे, मैं यही कहूंगी कि जो ये सरकार है ये हर किसी व्यक्ति के बारे में उन्होंने सोचा है। तो एक विधवा पेंशन भी एक बहुत बड़ा संबल है किसी विधवा के जीवन में, जिसके जो थोड़ा सा आर्थिक कमजोरी के कारण अपने जीवन यापन में जिसको कठिनाई आ सकती थी या कुछ हो सकता था, तो ये जो पेंशन मिल रही है अभी इससे बहुत बड़ा उनको सहयोग मिल जाता है।
1: आप चूंकि राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष जैसा एक जिम्मेदारी पूर्ण दायित्व तो निभा रही हैं, ये जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं या कुछ एनजीओज होते हैं जो ऐसे लोगों तक मदद पहुंचाने का काम करते हैं, क्या आपको लगता है कि उनका रोल महत्वपूर्ण हो जाता है इन सब चीज़ों से निपटने में, या ऐसी महिलाओं को जो जो इस तरह की समस्याओं से, चाहे वो आर्थिक सपोर्ट की बात हो या कुछ जैसे आपने कहा कि उत्तराधिकार में विवाद जैसे कुछ मसले आते हैं, या घर परिवार में उनको इस तरह से बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो ऐसे में क्या सामाजिक संस्थाओं और एनजीओ जैसे जो संस्थाएं हैं उनका रोल कितना महत्वपूर्ण आपको लगता है कि उनके लिए है?
0: देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी एक बात कि मैं जहां तक समझती हूं कि हिंदुस्तान में अगर सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, जो सामाजिक जो संस्थाएं हैं, जो सामाजिक संस्था जिनको कहना चाहिए, वो इतनी हैं कि अगर आगरा आगरा की बात करूं तो मुझे लगता है कि 2-4 हजार संस्थाएं होंगी यहाँ। और सबका काम सिर्फ एक ही है कि भाई हम जिसको भी जिसकी भी जो संस्था है जो भी काम करती है कि हम उनको कैसे पूरा करें। तो मैं हर जगह जाती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई अपने साथ जो ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है इनको भी जोड़ो, क्योंकि वो काम करना चाहते हैं लेकिन उनको सही प्लेटफॉर्म कई बार नहीं पता होता कि हम एक्चुअल में काम कहाँ करें। तो मैं इन सबको रिकमेंड करती हूँ कि भाई आप इनके साथ जुड़िए और इनके साथ काम करिएगा। तो इनसे सहयोग ही नहीं, मैं कहती हूँ बहुत बड़ा सहयोग मिलता है।
1: और वो सहयोग शायद हमने महसूस किया जब हम बीते 3-4 साल पहले कोरोना का जब दौर आया था,
0: यस
1: तो वो सामाजिक संस्थाएं ही
0: हाँ,
1: थीं
0: बगैर
1: वो,
0: कोरोना से डरे हुए
1: और
0: और
1: उन्होंने सब कुछ
0: सबने
1: अपना
0: सबका
1: दांव लगा
0: सहयोग।
1: के और हमारे जो समाज में उस वक्त
0: जी
1: नीडी थे
0: बिल्कुल
1: उनको सहयोग प्रदान किया।
0: सहयोग प्रदान किया, बिल्कुल सही बात है ये कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत बड़ा उनका काम रहता है समाज में, चाहे वो समाज की जागरूकता के लिए हो, चाहे वो बच्चों की शादी के लिए हो, चाहे वो किसी को ट्रीटमेंट के लिए हो, चाहे वो इवन कई बार किसी को भोजन सामग्री देने के लिए है।
1: जी,
0: तो ये बहुत बड़ा सहयोग उन लोगों का रहता है इसमें। जी
1: अब चूंकि ये एक ऐसा मसला है जो बड़ा संवेदनशील है और इसके लिए संवेदनाओं की बड़ी आवश्यकता होती है, तो समाज में खास तौर पर वो तबका जिस पर आज के दौर में प्रधानमंत्री जी नाज करते हैं और कहते हैं कि हमारे युवाओं के कंधे पर हमारा देश है और सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देश हम हैं, तो वो युवा जिनमें संवेदनाओं को कहीं ना कहीं, आपने जैसे कि अभी बातचीत में कहा भी कि वो संवेदनाएं या वो रिश्ते जो है हम उनमें कहीं कमजोर कड़ियां पा रहे हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी कार्यक्रम के माध्यम से कि उनको उनके साथ कितना संवेदनशील होने की आवश्यकता है?
0: देखिए, क्योंकि टॉपिक विधवा अंतरराष्ट्रीय से शुरू हुआ
1: जी
0: तो निश्चित रूप से विधवा है तो वो माँ तो होगी,
1: बिल्कुल ठीक बात।
0: ठीक है ना। और माँ एक इतना संवेदनशील शब्द है कि कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, कि उसमें तो अगर आपने माँ की सेवा कर ली तो सोचो सारे भगवानों की पूजा कर ली, राइट। तो अगर हमें ये मुद्दे पे या इस टॉपिक पे अगर हमें ये बात करनी पड़ रही है इस वक्त, तो मैं तो यही कहूंगी कि कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में कमी आ रही है, या कहीं ना कहीं एक कह सकती हूं कि एक व्यक्ति के ऊपर बहुत भाग दौड़ की उसमें, क्योंकि टाइम कहते हैं ना कि हमें भी जैसे लगता है कि काम बहुत ज्यादा है और समय कम है, इतनी भाग दौड़ में वो सब रिश्ते नाते वो सब खोते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। एक थोड़ा सा मैं जरूर कहूंगी कि सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है कि हमारी जो आपस में जो बॉन्डिंग थी, जो परिवारों की जो कनेक्टिविटी थी, वो बिल्कुल खत्म हो गई, जिसका एक ये बहुत बड़ा फर्क पड़ा है इस बात में भी कि हमारे रिश्तों में दरारें आना शुरू हो गई। तो मैं तो युवा पीढ़ी हो या जो भी हो, मैं सबसे यही कहूंगी कि देखिए, सौभाग्यशाली वो होते हैं जिनके माँ बाप होते हैं, और जिनके माँ बाप होते हुए जिनके साथ रहते

0: होते हैं वो परम सौभाग्यशाली होते हैं,
1: बिल्कुल
0: और जिनके होते हुए जिनके माँ या बाप को वृद्ध आश्रम में रहना पड़ता है उनसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होता। तो मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि बच्चे जिस दिन इस अहमियत को कर लेंगे, तो अगर माँ की भी सेवा कर लेंगे तो दुनिया में कहीं जाकर उन्हें हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं होगी।
2: अभी आपने सुनी अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान से अनिंद्र सिंह की खास बातचीत।

आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम भारत भारती और मैं हूं आज के इस प्रोग्राम का होस्ट और आपका दोस्त मेजबान अली। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल महिलाओं के सम्मान से जुड़ा है बल्कि विश्व शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से भी गहराई से संबंधित है। और आज का हमारा विषय है कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस।

दोस्तों, हर वर्ष 24 जून यानी कल के दिन पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति महिला दिवस मनाया जाता है। ये दिन महिलाओं की उपलब्धियों, उनके संघर्ष और समाज में उनके योगदान को सम्मान देने का अवसर प्रदान करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महिलाओं की भूमिका केवल घर, शिक्षा, स्वास्थ्य या राजनीति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो कूटनीति यानी देशों के बीच संबंध बनाने और मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आइए इसी विषय पर विस्तार से बात करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि कूटनीति क्या होती है। दोस्तों, कूटनीति वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक देश दूसरे देशों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाता है। इसमें बातचीत, समझौते, सहयोग और शांति बनाए रखने के प्रयास शामिल होते हैं। जो लोग अपने देश का प्रतिनिधित्व विदेशों में करते हैं उन्हें राजनयिक या डिप्लोमेट कहा जाता है। पहले के समय में कूटनीति का क्षेत्र लगभग पूरी तरह पुरुषों के हाथों में था, लेकिन समय के साथ महिलाओं ने भी इस क्षेत्र में अपनी योग्यता और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। आज दुनिया के अनेक देशों में महिलाएं राजदूत, विदेश मंत्री, नीति निर्माता और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रमुख के रूप में भी कार्य कर रही हैं।

दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति महिला दिवस का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य महिलाओं को समान अवसर दिलाना भी है। यही कारण है कि आज विश्व के कई देश विदेश नीति और कूटनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का भी मानना है कि महिलाओं की भागीदारी के बिना स्थायी शांति और विकास संभव नहीं है। जब महिलाएं निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होती हैं तो समाज और देशों के बीच संवाद अधिक संवेदनशील और प्रभावी बनते हैं। भारत की बात करें तो हमारे देश की महिलाओं ने भी कूटनीति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला विदेश सेवा अधिकारी सीबी मुथम्मा थी। उन्होंने उस समय विदेश सेवा में प्रवेश किया जब महिलाओं की संख्या बहुत कम थी। उन्होंने अनेक चुनौतियों का सामना किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता भी तैयार किया। इसके बाद कई भारतीय महिलाएं विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। आज भारतीय विदेश सेवा में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। वो विभिन्न देशों में भारत की संस्कृति, व्यापार, शिक्षा और राजनीतिक संबंधों को मजबूत बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

दोस्तों, महिलाओं की भागीदारी केवल प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है, वो संघर्षों को सुलझाने, शांति स्थापित करने और मानवीय मूल्यों को सामने लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अध्ययनों से पता चला है कि जब शांति वार्ताओं में महिलाओं की भागीदारी होती है तो समझौतों के सफल होने और लंबे समय तक टिकने की संभावना बढ़ जाती है। महिलाएं अक्सर शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों और परिवारों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देती हैं, जिससे समाज के व्यापक हितों को ध्यान में रखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमें यह भी याद दिलाता है कि अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। दुनिया के कई देशों में महिलाओं को नेतृत्व के अवसर कम मिलते हैं। कुछ स्थानों पर सामाजिक बाधाएं, भेदभाव और असमानता आज भी मौजूद हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि लड़कियों को अच्छी शिक्षा मिले, उन्हें आत्मविश्वास और नेतृत्व के अवसर प्राप्त हों और वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। जब महिलाएं सशक्त होंगी तभी वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रभावी भूमिका निभा पाएंगी।

दोस्तों, आज का युग वैश्विक सहयोग का युग है। जलवायु परिवर्तन, महामारी, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास जैसी चुनौतियों का सामना कोई भी देश अकेले नहीं कर सकता। इन समस्याओं के समाधान के लिए देशों के बीच सहयोग और संवाद आवश्यक होता है। ऐसे में महिलाओं की भागीदारी कूटनीति को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाती है। उनकी सोच, अनुभव और दृष्टिकोण नए नए समाधान खोजने में मदद करते हैं। यही कारण है कि विश्वभर में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने की मांग लगातार बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति महिला दिवस केवल उत्सव का दिन नहीं है, यह हमें यह सोचने का अवसर भी देता है कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। हम अपने परिवार और समाज में लड़कियों को शिक्षा, सम्मान और अवसर देकर उनकी क्षमता को विकसित कर सकते हैं। जब एक लड़की शिक्षित और आत्मनिर्भर बनती है तो वो न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे देश की प्रगति में योगदान देती है। हो सकता है कि आज किसी छोटे गांव में पढ़ रही कोई बच्ची भविष्य में भारत की राजदूत बन जाए, किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नेतृत्व करे या विश्व शांति की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति महिला दिवस केवल महिलाओं के सम्मान का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये कूटनीति और वैश्विक विकास में उनकी बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित करता है। महिलाओं की भागीदारी से कूटनीति अधिक संवेदनशील, संतुलित और प्रभावी बनती है। इसलिए हमें ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जहां महिलाओं और पुरुषों को समान अवसर मिले और दोनों मिलकर देश तथा दुनिया को बेहतर बनाने में योगदान दें। इसी संदेश के साथ हम आपको सुनवाते हैं गीत। आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आपसे करने के लिए बातें अभी बाकी हैं।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति पर फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम भारत भारती। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 8:30 हुए हैं, अब आप सुनेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म जहर से, जिसको संगीत से सवारा है मिथुन शर्मा और नरेश शर्मा ने। आलेख सैयद कादरी का है और आवाज दी है आतिफ असलम ने।

ये गीत हमने फिल्म आवारापन से लिया था। संगीत था प्रीतम का, रचना थी सैयद कादरी और आसिफ अली बेग की, और आवाज थी सुजैन की। आकाशवाणी के आगरा केंद्र पर आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत।

आकाशवाणी आगरा पर आप आनंद ले रहे हैं फिल्मी गीतों के प्रोग्राम चित्रपट संगीत का। अगला गीत हमने लिया है फिल्म तुम बिन से। आलेख और संगीत अंकित तिवारी का है और आवाज दी है अरिजीत सिंह ने।

0: अभी आप आनंद ले रहे थे चित्रपट संगीत का। 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हमारी स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक
2: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे

0: समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
1: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूडी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और

0: माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है, और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
1: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज, वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्दी होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
3: रास लफान परियोजना में जब वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
1: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
3: ब्रिक्स NSA की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे NSA की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
3: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई

0: सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
1: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेग बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात $1.84 ट्रिलियन तक पहुंच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
2: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
1: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने 1 कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के 2 समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर

0: London. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Uzbekistan in Houston, US. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक को मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी और साइबर सिक्योरिटी जैसे चैलेंजों से निपटने में ब्रिक्स का अहम रोल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने शहरी एजाज से मुतालिक दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड्स अदा किए। सहाफी पी नारायणन, टेनिस के सरकर्दा खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूती और आर माधवन और गुलूकारा अलका याग्निक पद्म अवार्ड हासिल करने वालों में शामिल हैं। हुकूमत ने कहा है कि वो एनिनो की वजह से कमजोर मानसून के असरात के इम्कान से निपटने के लिए किसानों की मदद की खातिर पेश की तैयारियां कर रही है। इम्तहानात के इनेकाद से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA ने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तहान के नतायज का ऐलान कर दिया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और मगरबी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लंदन में FIH प्रो लीग हॉकी के इफ्तिताही मुकाबले में भारत की मर्दों की हॉकी टीम ने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 3-4 से हरा दिया है। और फीफा आलमी कप में हाउस्टन में पुर्तगाल का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होने वाला है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि बदलते हुए आलमी मंजरनामे में सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक को मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी और साइबर सिक्योरिटी से लेकर उभरती हुई टेक्नोलॉजी से लाहक मुश्तरका चैलेंजों के इजाले की खातिर ब्रिक्स का इंतहाई अहम रोल है। वजीर आजम मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों और सिक्योरिटी के सीनियर अहदेदारान से मुलाकात की। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने इस बात को भी उजागर किया कि भारत की ब्रिक्स की सदारत में हकीकी इश्तराक में पेशरफ्त, आलमी खित्ते जनूब की तरजीहात की हिमायत और एक महफूज और ज्यादा शमूलियत वाली दुनिया के सिलसिले में इश्तराक को अहमियत दी जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव पर जोर दिया है और अफसरान से जोर देकर कहा है कि वो शहरियों को हुक्मरानी में मरकजी अहमियत दें। आज नई दिल्ली में 2024 बैच के IAS के उन 183 तरबियती अफसरान से बातचीत करते हुए जिन्हें मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में बतौर असिस्टेंट सेक्रेटरी मुंसलिक किया गया है, जनाब मोदी ने नौजवान सिविल सर्वेंट से जोर देकर कहा कि वो विकसित भारत @2047 की जानब भारत के सफर की क्यादत करें। वजीर आजम ने मुल्क की तामीर में खवातीन के बढ़ते हुए रोल को ये कहते हुए उजागर किया कि मौजूदा बैच में 40% से ज्यादा खवातीन अफसर हैं। जनाब मोदी ने नौजवान अफसरों से कहा कि वो मुसलसल मुल्क की तामीर में अपने ताउन का जायजा लेते रहें और अपने ओहदों के बजाय अपनी कारकर्दगी से हासिल होने वाले नतायज से इत्मीनान महसूस करें। उन्होंने इस बात पर एतमाद का इजहार किया कि उनकी तवानाई, सलाहियत और खुद को वक्फ करने का जज्बा भारत को तरक्की की नई बुलंदियों तक ले जाने में एक अहम रोल अदा करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में शहरी एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता किए। मुल्क के आला तरीन शहरी एजाजात में से एक पद्म अवार्ड्स 3 जुमरों, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के तहत दिए जाते हैं। सहाफी पी नारायणन को अदब तालीम के जुमरे में पद्म विभूषण से नवाजा गया है, जबकि साबिक जज KT थॉमस को समाजी काम के लिए पद्म विभूषण से सरफराज किया गया है। पेश एक रिपोर्ट।
2: इस साल हुकूमत ने कुल 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड्स शामिल हैं। साबिक टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूती और प्लेबैक्स गुलूकारा अलका याग्निक समेत 7 लोगों को पद्म भूषण से नवाजा गया है। सियासतदान शिबू सोरेन को बादजमर्ग पद्म भूषण दिया गया है। 57 अफराद को पद्मश्री अवार्ड से सरफराज किया गया है, जिनमें क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा, अदाकार आर माधवन और प्रसार भारती के साबिक CEO शशि शेखर वेम्पति शामिल हैं। अदाकार सतीश शाह को बादजमर्ग पद्मश्री से सरफराज किया गया है। इस मौके पर नायब सदर CP राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के

0: दीगर सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमन अली खान।
1: ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा है कि हुकूमत नैनो की वजह से कमजोर मानसून के इम्कान असरात से निपटने की खातिर किसानों की मदद के लिए पेशगी तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि मुल्क में अब तक 43% कम बारिश हुई है और जुलाई में भी मानसून के कमजोर रहने का इम्कान है।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है 2 जुलाई तक के सप्ताह में कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब यह है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। हम जो प्रभावित जिले कितने हो सकते हैं उसका आकलन भी किया गया है, और अब तक जो संभावना है 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
1: जनाब चौहान ने कहा कि रियासतों को दालों और मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को फरोग देने का मशवरा है, जिनमें कम पानी की जरूरत होती है और सख्त मौसम में भी उनकी अच्छी पैदावार हो सकती है। उन्होंने कहा कि रियासतों के साथ तालमेल में साइंसी तरीक़ेकार फसलों की बरवक्त मनसूबा बंदी और जिला सतह की तैयारी को मुस्तहकम किया जा रहा है। नीति आयोग के नायब चेयरपर्सन डॉक्टर अशोक लाहिरी ने आज कहा कि पिछली सिमाही के दौरान भारत की मजमूई तजारत में 5.4% का इजाफा हुआ। डॉक्टर लाहिरी ने यह बात नई दिल्ली में तजारत पर नजर रखने वाली सिमाही रिपोर्ट का ताजा एडिशन जारी करते हुए कही। नायब चेयरपर्सन ने मजीद कहा कि पिछली सिमाही के दौरान भारत की बरामदात 1.84 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि दरामदात में 6.5% का इजाफा दर्ज किया गया। मगरबी एशिया की सूरतहाल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह बहरान आर्जी था। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दुनिया में जल्द ही अमन कायम होगा। आज जारी करदा रिपोर्ट में बुनियादी तौर पर अद्वियात की तजारत पर जोर देते हुए आलमी तजारत में भारत के रोल का तज्जिया पेश किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इम्तिहानात मुनक़िद करने वाली कौमी एजेंसी NTA ने आज अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान CUET 2026 के नतायज का ऐलान कर दिया है। इम्तिहान में शामिल हुए उम्मीदवार अब सरकारी CUET पोर्टल के जरिए अपने स्कोर कार्ड्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं। NTA के मुताबिक इस साल इस इम्तिहान में 11 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट ने आज 1993 के कोलकाता बाव बाजार बम धमाका केस में उम्र कैद के एक मुजरिम की कबल अज वक्त रिहाई के बारे में दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगा दी। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस संजीव सचदेवा पर मुश्तमिल बेंच ने मगरबी बंगाल हुकूमत की उस दरखास्त पर उबूरी राहत दी जिसमें हाई कोर्ट के 5 जून के उस हुक्म को चैलेंज किया गया था, जिसके तहत 77 साल मुजरिम मोहम्मद राशिद खान की फौरी रिहाई का हुक्म दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद राशिद खान को भी नोटिस जारी किया। रियासत की जानिब से पेश होते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने दलील दी कि हाई कोर्ट ने इस मामले में इस्लाही नजरिए का गलत इतलाक किया, क्योंकि इस धमाके में 70 से ज्यादा अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए थे। मोहम्मद राशिद खान के वकील MR शमशाद ने कहा कि उनके मुवक्किल 33 साल से ज्यादा अरसा जेल में गुजार चुके हैं और एक शरीक मुलजिम को 2014 में इस सिलसिले में रियायत दी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुशाहिदा किया कि खान का रोल मुख्तलिफ था और उन्हें धमाकों का मास्टरमाइंड करार दिया। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने आज मंगोलिया के वजीर खारजा बैतमुख और सनत और कानकनी के वजीर के साथ मंगोल रिफाइनरी प्रोजेक्ट के जेर तामीर मकाम का दौरा किया। सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया दोस्ती के तहत जारी प्रोजेक्ट में नुमाया पेशरफ्त हो रही है। उन्होंने इन मंसूबों में शामिल मुख्तलिफ टीमों के साथ जारी काम की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर खारजा ने प्रोजेक्ट के मकाम पर भारत और मंगोलिया के वर्करों के साथ बातचीत की। उन्होंने इन मुश्किल हालात में इस तरह के अहम प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाने में उनकी मेहनत, लगन और अज़्म को सराहा। वजारत खारजा ने आज कतर में होने वाले एक धमाके में 12 भारतीय शहरियों के हलाक होने की तस्दीक की। नई दिल्ली में नामनिगारों से गुफ्तगू करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि इस हादसे में 66 अफराद जख्मी भी हुए, जिनका इलाज अभी चल रहा है। जनाब जायसवाल ने मजीद कहा कि 17 जून

जून को अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमतनामे पर दस्तखत होने के बाद अब तक भारत से वाबस्ता 11 बहरी जहाज आबनाए हुरमुस से गुजर चुके हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बाकी भारतीय परचम बरदार जहाज भी जल्द ही इस रास्ते से गुजरेंगे। पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर से मुतालिक बयान पर अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए तर्जुमान ने कहा कि ऐसे बयान पाकिस्तान की अपनी नाकामियों और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की एक लायानी कोशिश है। उन्होंने कहा कि भारत इन मनगढ़ंत दावों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है और इन दावों को बिल्कुल ही अहमियत नहीं देता है। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने आने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के एक हिस्से के तौर पर जम्मू में अमरनाथ बेस कैंप में एक जामे मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। इस मशक के दौरान नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने मुश्तरक तौर पर बेस कैंप के पूरे अहाते में तलाशी और इलाके को महफूज बनाने की कार्रवाई अंजाम दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान ने अपने न्यूक्लियाई बुनियादी ढांचे की तवील मुद्दती और जामे निगरानी पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इसके साथ ही अमरीका अबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों की आमदोरफ्त पर आयद पाबंदियों में नरमी करेगा और माली रियायतें फराहम करेगा, ताहम ये सब सख्त अमरीकी निगरानी के तहत होगा। सोशल मीडिया पर जारी एक तफसीली बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की क़यादत ने जारी सिफारती मुज़ाकरात में अहम रियायतें दी हैं, जिनका मकसद मगरबी एशिया में तवील कशीदगी के बाद एक जामे अमन फ्रेमवर्क कायम करना है। ताहम व्हाइट हाउस के इस बयान पर ईरान की हुकूमत ने फौरी एतराज किया और न्यूक्लियर निगरानी के दायरेकार के बारे में इख्तलाफ जाहिर किया। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल वकाई ने वाज़ किया कि ईरान ने मखसूस न्यूक्लियाई तनसीबात पर बैन अल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की निगरानी कबूल नहीं की। भारतीय महकमे मौसमियात ने कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और मगरबी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंचने का इम्कान है। दिल्ली एनसीआर में मौसम में अचानक शदीद तब्दीली देखी गई, क्योंकि खित्ते में तेज बारिश, धूल भरी आंधी और तेज हवाएं चल रही थीं। आईएमडी के मुताबिक कौमी राजधानी में कम से कम दर्जे हरारत 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 38.4 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब आईएमडी ने कहा कि 2 से 3 दिनों के दौरान बिहार, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ खित्ते में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। लंदन में एफआईएच प्रो लीग हॉकी के इफ्तिताही मैच में मर्दों की भारतीय हॉकी टीम ने रिवायती हरी पाकिस्तान को 3-4 गोल से हरा दिया। भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला ये मुकाबला इस टूर्नामेंट के सबसे अहम मुकाबलों में से एक था। लंदन मरहले के दौरान भारत जुमेरात को इंग्लैंड का सामना करेगा और 26 जून को एक बार फिर पाकिस्तान से खेलेगा। इसके बाद 28 जून को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मुकाबले के साथ अपना दौरा मुकम्मल करेगा। आज फीफा आलमी कप में ग्रुप मरहले के तहत मुख्तलिफ अहम मुकाबले खेले जाएंगे। ग्रुप के में हाउस्टन में रात 10:30 पुर्तगाल का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। वहीं ग्रुप एल के तहत देर रात 1:30 बोस्टन में इंग्लैंड और घाना आमने सामने होंगे। बाद में सुबह सवेरे 4:30 टोरंटो में क्रोएशिया का मुकाबला पनामा से होगा। जर्मनी के शहर सूल में जारी आईएसएसएफ जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारत के लिए आज का दिन भी शानदार रहा और उसने मजीद 3 तमगे हासिल किए, जिनमें चांदी के 2 और कांसे का 1 तमगा शामिल है। शिवा नरवार ने मर्दों के 10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर मुकाबले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए चांदी का तमगा जीता, जबकि युग प्रताप सिंह राठौर ने भी इसी मुकाबले में कांसे का तमगा जीता। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम ने मोदी ने कहा है कि सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक को मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी और साइबर सिक्योरिटी जैसे चैलेंजों से निपटने में ब्रिक्स का अहम रोल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने शहरी एजाज से मुतालिक दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता किए। सहाफी पी नारायणन, टेनिस के सरकर्दा खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूती और आर माधवन और गुलूकारा अलका याग्निक पद्म अवार्ड हासिल करने वालों में शामिल हैं। हुकूमत ने कहा है कि वो एल नीनो की वजह से कमजोर मॉनसून के असरात के इम्कान से निमटने के लिए किसानों की मदद की खातिर पेश की तैयारियां कर रही है। इम्तिहानात की निकास से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान के नतायज का

0: मन धन।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए पारदर्शी सार्वजनिक खरीद में गवर्नमेंट ई मार्केट जैम की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं जैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार और आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा।
2: मोदी सरकार की 12 वर्ष की यात्रा में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां दर्ज हैं। ऐसी ही एक है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल सुशासन की एक मिसाल है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जैम पोर्टल। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसने लाखों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों को नए अवसर प्रदान किए हैं। जैम की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं जैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार जी। नमस्कार मिहिर जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद प्रियंका जी।
2: मिहिर जी, शुरुआत की जाए जैम की भूमिका के बारे में। 2016 में इसकी शुरुआत हुई, तो आज भारत की जब डिजिटल सुशासन की यात्रा की हम बात करते हैं तो जैम को आप किस प्रकार देखते हैं, कहाँ ये खड़ा है?
3: प्रियंका जी, 2016 के पहले की अगर हम बात करें कि किस तरह से सरकारी खरीदारी की प्रणाली थी, तो जो मैनुअल सिस्टम होता था, टेंडर्स होते थे, कुछ लोगों को पता होता था कि कहाँ पे खरीदारी हो रही है, सूचना का अभाव होता था, फ्रैगमेंटेड सिस्टम था, कुछ लोगों को पता लगा, कुछ लोगों को नहीं पता लगा। जब इसको सुधार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी कल्पना की कि इसको कम्प्लीटली एक डिजिटल मार्केट प्लेस बने जिसमें कि हर किसी को पता लगे कि क्या खरीदारी सरकार करना चाहती है और हर एक छोटे से सूक्ष्म व्यापारी, बड़े व्यापारी, हर किसी को एक मौका मिले जानने का पहले, तो इस दिशा में बहुत सारे कदम सरकार ने उठाए डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव में। उसमें एक बड़ा कदम जो है गवर्नमेंट ही मार्केट प्लेस रहा। DGSND एक संस्था होती थी सरकारी खरीद के लिए, उसको बंद करके और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की शुरुआत जो है 9 अगस्त 2016 को हुई और ये अपने तरह का विश्व स्तरीय डिजिटल इनिशिएटिव है।
2: तो ये जो पारंपरिक खरीद प्रणाली थी उससे काफी अलग है और एक पारदर्शिता, जो सबसे बड़ी एक लोगों में संदेह रहता था पारदर्शिता का, वो लेकर आया है।
3: पारदर्शिता लेकर आया है और कंप्लीट एंड टू एंड डिजिटाइजेशन है, तो किसी को किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं है, बात करने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर एक छोटे व्यापारी हैं तो आप पोर्टल पे जाइए, देखिए, रजिस्ट्रेशन का सिस्टम आपके लिए, पूरी पंजीकरण जो है वो पोर्टल के माध्यम से कम्प्लीटली हो जाती है, किसी से बातचीत नहीं करने की आवश्यकता है। उसी तरह से खरीदारी के लिए भी आप पोर्टल पे जाइए, आपको जो सामान दिखता है आप वो ले लें। कहते हैं कि अपने में कम्प्लीट सॉल्यूशन देना और ह्यूमन इंटरफेस को हटा देना, जिससे कि शिकायतें आती हैं
2: जी,
3: तो उन शिकायतों को बिल्कुल खत्म कर दिया है।
2: पंजीकरण की बात हुई, अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण कराना चाहता है जैम पोर्टल पर तो क्या व्यवस्था है और इसके अलावा क्या क्या चीजें चाहिए और क्या सेवाएं उपलब्ध कराता है जैम पोर्टल और नई क्या सेवाएं शुरुआत करने की योजनाएं हैं?
3: पहले मैं बताऊं कि जो कोई भी जो सेलर है, व्यापारी है, वो रजिस्टर करने के लिए जैम पोर्टल पे जाएगा तो उसको वहां पे बहुत सारी लर्निंग वीडियोस भी है जो ये बताएगी कि भाई अगर आप एक विक्रेता हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप रजिस्टर करेंगे, उसकी सारी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया जो है वहां पे बताई गई है जिससे कि आप उस पे जुड़े। इसमें ये भी है कि हमारी काफी इंटीग्रेशन है बहुत सारे सरकारी की डाटाबेसेस से, जैसे आपका आधार है, अब आपके आधार की इन्फॉर्मेशन हम ले लेते हैं, आपने व्यापारी ने बताया, हम उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर आपका पैन नंबर है, अगर आप आईटी रिटर्न भरते हैं वो भी ऑनलाइन हम चेक कर लेते हैं, आपका GSTN है उसको ऑनलाइन हम चेक कर लेते हैं। मतलब आपको जितना सरलीकरण तरीके से किसी को ऑनबोर्ड किया जा सकता है वो हम करते हैं। और जहां तक किस तरह की अपॉर्चुनिटी है, तो करीब 10,000 से ज्यादा कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं हमारे यहाँ और 350 करीब सर्विसेज की कैटेगरीज हैं, तो एक बहुत ही बड़ा बुके ऑफ ऑफरिंग है सरकार की तरफ से जिससे कि व्यापारी उद्यमी जुड़ सकते हैं।
2: जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करूं, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतनी सर्विसेज हैं, तो उसको बढ़ावा देने में जैम की क्या भूमिका है और छोटे व्यवसायी, हम MSME की बात करते हैं, तो उनको किस तरह से लाभ हुआ है?
3: देखिए, पहले तो एक जगह पे

आपको पता लग रहा है कि क्या क्या सरकार खरीदारी करती है, तो एक तो अवसर आपको मिला जानने का कि भाई क्या क्या मौके हैं। दूसरी ये भी है कि उसके साथ आपको ये हम बताते हैं कि सरकार की जो खरीदारी की प्रक्रिया है वो क्या है, तो वो भी आप वहीं पे देख ले सकते हैं और उसके हिसाब से आप जुड़ सकते हैं। और ये कंप्लीटली हर एक स्टेप पे सारी की सारी जानकारी आपको जो है पोर्टल पे मुहैया होती है। मान लीजिए मुझे कोई सामान खरीदना है, मैं एक सरकारी संस्था हूँ, तो मेरी टेंडर लगी तो टेंडर की इन्फॉर्मेशन है, वो सभी लोगों को दिखता है, प्लस नोटिफिकेशन जाता है लोगों को कि भाई ये सरकार का टेंडर आया है। तो पहले जो होता था कि भाई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, जिसको इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री कहते हैं अंग्रेजी में, कि भाई कुछ लोगों को पता कुछ लोगों को नहीं, वो कम्प्लीटली खत्म कर दिया, पारदर्शिता कम्प्लीटली आ गई है। तो इससे हुआ क्या है कि धीरे धीरे जो व्यापारी छोटे हैं उन लोगों को पता लगने लगा, वो जुड़ने लगे, और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो 24 लाख सेलर्स हैं जिन्होंने हमसे जुड़ने की अपनी प्रक्रिया

0: वो जो है पोर्टल पे मुहैया होती है। मान लीजिए मुझे कोई सामान खरीदना है, मैं एक सरकारी संस्था हूँ, तो मेरी टेंडर लगी तो टेंडर की इन्फॉर्मेशन है वो सभी लोगों को दिखता है, प्लस नोटिफिकेशन जाता है लोगों को कि भाई ये सरकार का टेंडर आया है। तो पहले जो होता था कि भाई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, जिसको इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री कहते हैं अंग्रेजी में, कि भाई कुछ लोगों को पता कुछ लोगों को नहीं, वो कम्प्लीटली खत्म कर दिया, पारदर्शिता कम्प्लीटली आ गई है। तो इससे हुआ क्या है कि धीरे धीरे जो व्यापारी छोटे हैं उन लोगों को पता लगने लगा, वो जुड़ने लगे, और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो 24 लाख सेलर्स हैं जिन्होंने हमसे जुड़ने की अपनी प्रक्रिया पूरी करी है, और उसमें से करीब 4 लाख व्यापारी जो है एक्टिव हैं।
1: जी, तो जो जेम है एमएसएमई के बारे में आपने बताया, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स, एससी एसटी उद्यमियों को भी किस प्रकार से सहायता दे रहा है?
0: एक बात मैं बताना चाहूंगा कि सरकारी नीति ये है कि जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, जो लघु और सूक्ष्म व्यापारी हैं, उनको करीब सरकारी खरीद में 25% का मिलना चाहिए। हमारे पोर्टल पे वो 45% से ऊपर है। तो हमारे पोर्टल पे सूक्ष्म और लघु व्यापारी जो है बहुत एक्टिव है।
1: जी।
0: एक तो वो बहुत बड़ा सशक्तिकरण। उसके अलावा अगर हम महिला उद्यमियों को देखें तो महिला उद्यमियों ने जब हमारे साथ जुड़ी तो करीब 8 करोड़ का बिजनेस किया, आज 80,000 करोड़ से ऊपर का व्यापार कर रही हैं। जो स्टार्टअप हैं, जब वो जुड़े तो 2 करोड़ का उनका व्यापार हमारे साथ शुरू हुआ 2016 में, आज की तारीख में 50,000 करोड़ से ऊपर का ज्यादा का व्यापार वो कर चुके हैं। तो ये जो अवसर मिला है और इस अवसर को लोगों ने लिया है हाथों हाथ, तो ये अपने में दर्शाता है कि व्यापार करना सरकार के साथ जो है बहुत सरल हुआ है।
1: अगर आपको कोई याद हो ऐसा उदाहरण जो आप हमारे श्रोताओं के साथ बांटना चाहें, ऐसी ही किसी सेलर का या बायर का जो बहुत ही अच्छा हो और रचनात्मक और जो बाकी सभी प्रेरित हो, तो आप प्लीज हमारे साथ इसको बांटिए।
0: जैसे कि एक झारखंड की महिलाओं ने एक बार बिड किया दिल्ली एमसीडी के किसी बिड के लिए सर्विसेज देने के लिए, तो झारखंड के रांची के आसपास की एक महिला उद्यमी उनको दिल्ली का एक ऑर्डर मिला। तो ये दर्शाता है कि कहाँ तक जो है अवसर मिल सकता है और कहाँ आदमी पहुंच सकता है। उसी तरह से आज जो है ऐसे कई उदाहरण हैं। स्टार्टअप में महिला बैंगलोर की, उन्होंने जो है डिफेंस में बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सारी और महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं।
1: प्रधानमंत्री ने अगर बात करें तो लगातार स्थानीय उत्पादों और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की बात कही है, तो उसमें जेम किस तरह से सहयोग कर रहा है?
0: हमारे पोर्टल पे हमने कुछ डेडिकेटेड स्टोर्स बनाए हैं वोकल फॉर लोकल को दिखाने के लिए, महिला उद्यमों को जो वो कर रही हैं, जो वो करना चाहती हैं, वो शोकेस करने के लिए। तो वो उन स्टोर्स के थ्रू जो पोर्टल से जो भी जुड़ता होगा उसे एक तो वो नजर आता है, दूसरा इसके अलावा हमारी कई संस्थाओं के साथ हमारा चलता रहता है कार्यक्रम, जिससे कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनको बताते हैं कि किस तरह से आप रजिस्टर कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास अवसर हैं, और भारत सरकार की जो नीति है जैसे ODOP प्रोडक्ट्स हो उसको शोकेस करने का, टेक्सटाइल की कुछ हैंडलूम के प्रोडक्ट्स हैं, इम्पोरियम के प्रोडक्ट्स हैं, ये सारा जो है हम अपने यहाँ शोकेस करते हैं और उनके साथ फिर उनको बताते हैं अवसरों के बारे में जो हमारे पोर्टल के थ्रू हो सकता है।
1: जी, जैसे आपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, तो जो जेम का प्रभाव है केवल खरीद तक सीमित नहीं है, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, जनसेवा जैसे क्षेत्रों में जेम का जो योगदान है वो किस प्रकार है?
0: सरकार की जो खरीदारी की प्रक्रिया है उसमें बहुत अहम बात होती है कि जो सामान आ रहा है वो समय से आए और वो जिस पर्पस के लिए आ रहा है वो पर्पस को फुलफिल कर दे। तो हम लोगों ने बातचीत करके दवाइयों की खरीद, वैक्सीन की खरीद, स्कूल के सामान की किट की खरीद, पोषण अभियान में ट्रैकर के सामान की खरीद, तो तमाम जितनी वेलफेयर इनिशिएटिव्स है सरकार की, जितनी भी जन कल्याण की योजनाएं हैं जिसके लिए खरीदारी की जाती है, वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अपने यहाँ बनाया और उनको हमारी जो कि पारदर्शी प्रक्रिया है उसमें हम लोगों ने इनको काफी एफिशिएंटली इनको करने का भी मौका दिया। जो चीज करीब खरीदारी में मान लीजिए कि पहले 5 से 6 महीने लग जाते थे, अब हम लोगों ने उसको जो है घटा के करीब 2 महीने में कर डाला है। तो सामान सही समय पे आना और लोगों को मुहैया करा देना, ये हमारा जो है उद्देश्य रहा है।
1: अगर प्रौद्योगिकी की बात करें मेहर जी, तो जेम के विकास में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अब एक नया प्रचलन में आ रहा है और डेटा आधारित नवाचारों के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे?
0: इसमें मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि ये डिजिटल ऑनलाइन सिस्टम है तो इसके पास शुरू से ही ये कैपेसिटी कैपेबिलिटी भी रही कि यहाँ पे आप एनालिटिक्स जो कहते हैं कि जिस चीज को आप मीमांसा कर सकते हैं, उस मीमांसा की ताकत इसमें शुरू से ही रही, ये इस तरह से बना ही, इसकी

0: कल्पना ही इस तरह से की गई। तो हम लोगों ने क्या किया है कि AI ML की यूज केसेस, जो पार्लेंस होती है, जो भाषा होती है AI प्रौद्योगिकी की, उसके हिसाब से हम लोगों ने यूज केसेस डिप्लॉय करी हैं अपने पोर्टल पे, जिससे हम देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूँ, हमारे यहाँ एक टूल है प्राइस गैप एनालिसिस टूल, PGA टूल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कोई व्यापारी अगर हमारे यहाँ ऐसा प्रोडक्ट डालना चाह रहा है जिसका कि सामान का जो कीमत है वो हमारे हिसाब से उचित नहीं है, तो हम उनको आने नहीं देते हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है वो ये है कि आप एक विश्वास के साथ चलेंगे,
1: जी
0: ट्रस्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म। तो मैं दोनों के साथ विश्वास रखता हूँ, हमारे जितने व्यापारी हमारे साथ जुड़ते हैं और जो हमारे खरीदार करने वाले, जो हमारे सरकारी संस्थाएं हैं, तो दोनों को विश्वास। तो इस विश्वास को बनाए रखने में कई बार इस लक्ष्मण रेखा को लोग न क्रॉस कर लें, उसके लिए हम लोगों ने AI ML से ये कोशिश करी है कि हम आपको बताएं कि क्या आप कर सकते हैं और कहां ये लक्ष्मण रेखा अगर आप क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जन कल्याण
0: विश्वास
1: के
0: जन
1: साथ
0: कल्याण के साथ
1: आगे बढ़ रहे हैं और हर विभाग आगे ऐसे ही बढ़ रहा है। कई लोग ये सोचते हैं, जब हम विश्वास की बात कर रहे हैं, कि जो जेम है वो केवल बड़े व्यवसायों के लिए है, तो जो छोटे उद्यमी है, जो स्टार्टअप्स है और जब पहली बार भाग लेने वाले विक्रेता है, उनके लिए जेम क्या अवसर देता है?
0: देखिए, जो सरकारी खरीद की जो मूलभूत नीति होती है उसमें हमें ये कहा जाता है और हम उसको अपने यहाँ ढाल के रखे हैं कि भाई सभी को हमें बराबरी का हक देना है। तो कोई छोटा व्यापारी ये ना समझे कि मैं छोटा हूँ तो मुझे ये अवसर कम मिलेगा। तो पहले तो है इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ सप्लायर, जो कहते हैं बिल्कुल मूलभूत नीति होती है, वो हमारे यहाँ रूल इंजन में ही डाला हुआ है। तो उससे ये नहीं हो सकता कि कहीं कोई भी उसको तोड़ने की कोशिश करेगा। और दूसरा जो हमारा लगातार रहा, हमारे यहाँ स्टार्टअप के लिए एक स्टार्टअप रनवे, एक शोकेस भी है, प्लस स्टार्टअप के साथ बहुत सारी संस्थाओं के साथ हमारी बातचीत होती रहती है। तो नए जो उनके प्रयास हैं उनके बारे में लोगों को बताना, उनको हमारे पोर्टल पे अवसर देना आने के लिए, इस तरह से हम उनको जोड़ना चाहते हैं। बड़े व्यापारियों के बराबर ही हम हक देते हैं।
1: विकसित भारत के लक्ष्य की बात करें, जो 2047 तक लक्ष्य रखा गया है, उसकी दिशा में आगे बढ़ते हुए आप सुशासन, आर्थिक विकास और राष्ट्र निर्माण में जो जेम की भूमिका है, उसको आप किस तरह से देखते हैं?
0: राष्ट्र निर्माण की जो अभी हमारी विकसित भारत की 2047 की जो पहल है, उसमें बहुत आवश्यक है कि जो सरकार की नीतियां हैं, जिसमें मेक इन इंडिया एक बहुत बड़ी नीति है,
1: जी
0: दूसरी नीति ये है कि आप माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को बराबर का हक देंगे, उसको हम लोग हमेशा लेके चल रहे हैं। और हमने ये भी सोचा हुआ है कि धीरे धीरे हमारी पहल ये है कि हम राज्यों तक भी पहुंच रहे हैं, केवल केंद्र के बायर ही नहीं, राज्य के बायर, राज्य के भी जो खरीदार हैं उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं, जिससे क्या हो कि ये जो नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, ये तमाम गुड्स एंड सर्विसेज जो खरीदारी हो रही है उसको सरकार को उसमें सेविंग्स दिलाए, उसमें करप्शन फ्री रखे,
1: जी
0: और उसको सभी लोगों को, जिसको हम कहते हैं ना कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट,
1: जी
0: उसकी तरफ लेके जाए। तो ये हमारी प्रयास रहेगा और बहुत बड़ा जो इसमें रोल है वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इसको पढ़ाने में रहेगा।
1: बिल्कुल, और अंत में यही जानना चाहूंगी कि आप उन उद्यमियों, स्टार्टअप्स और जो महिला नेतृत्व वाले उद्यमों को और जो युवा जो भाग लेना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जेम पोर्टल एक बहुत ही बड़ी पहल है सरकार की, अवसरों का द्वार है, और मेरी यही गुजारिश है सभी लोगों से, यही विनती है, यही संदेश है हमारी तरफ से कि आप ये ना सोचें कि सरकार के साथ काम करना कठिन है, सरकार के साथ काम करना बहुत आसान है। मेरी यही गुजारिश होगी लोगों से, पहल करें, आए और जेम के साथ जुड़ें और अपना व्यापार बढ़ाएं।
1: जी हाँ, निसंदेह श्रोताओं, डिजिटल क्रांति के इस दौर में सरकारी खरीद व्यवस्था को पारदर्शी, तेज और सुगम बनाने में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और ऐसे ही ये और भी नई सेवाएं और सहूलियत उपलब्ध कराता रहेगा। मिहिर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे ढेर सारी चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद प्रियंका जी।
2: अभी आप सुन रहे थे पारदर्शी सार्वजनिक खरीद में गवर्नमेंट ई मार्केट जैम की भूमिका पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे जैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार और आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा।
3: मंथन।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा को लेकर उभरती प्रौद्योगिकी तक साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भवा की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से की सरकार
1: सिल्वर और दो ब्रॉन्ज रहे उसमें, बहुत ट्रेन अभी उनको करना है मैंने।
2: एज ए खिलाड़ी से जब आप कोच बनी तो कोचिंग के लिए क्या क्या परेशानी आपको शुरू में फेस करनी पड़ी अल्मोड़ा में?
1: ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही, हमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फैसिलिटी हमें सब देती है। हमें बच्चों के लिए मैट प्रोवाइड करेगी, जो हमारी मैटें होती हैं वो करीब 1-1.5 लाख रुपए की भी मिलती है, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। बस हमें ट्रेन कराना पड़ा थोड़ा, बच्चों का पढ़ाई से और पेरेंट्स को हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करना पड़ता है
2: जी।
1: इसके लिए कि आप बच्चों को खेलने के लिए डालिए, जरूरी नहीं है उसका बच्चा जो है उन मेडल ही जीते, वही उसका एक अचीवमेंट है। बच्चा फिट रह रहा है, कोई गलत रास्ते में नहीं पड़ रहा है, ये भी एक कोच को देखना पड़ता है। सिर्फ हमारा मकसद बच्चों को मेडल लाके देना यही जरूरी नहीं है।
2: वैसे तो कहें कि ताइक्वांडो जो है आत्मरक्षा के लिए बहुत अच्छा स्पोर्ट्स माना जाता है, और खासकर बालिकाओं को अगर हम देखा जाए तो महिला, उनकी इस यात्रा को, आप स्वयं एक खिलाड़ी भी रही हैं
1: जी जी,
2: और खिलाड़ी से कोच तक का क्या सफर रहा आपका?
1: खेलना मेरा मतलब पैशन था, मैं भी चाहती थी कि मैं ओलंपिक तक खेलूं। मैंने 2018 में लास्ट इवेंट खेला था, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेली थी मैंने, जिसमें मेरा मेडल रहा था। और उसके बाद जो है मैंने जो कोचिंग है वो अब 2022 में मैं जो है स्टेडियम, अल्मोड़ा स्टेडियम में लग चुकी थी। 2022 से मैंने अपने बच्चों को ट्रेन करना शुरू करा, आज करीब उनको 3 साल हो चुके हैं। तो ये उन लोग, मेरे बच्चों के लिए पहला नेशनल था, बहुत अच्छा इन्होंने रिजल्ट दिया। मेरे 15 बच्चे गए थे जिसमें से मेरे 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज रहे उसमें। बहुत ट्रेन अभी उनको करना है मैंने।
2: एज ए खिलाड़ी से जब आप कोच बनी तो कोचिंग के लिए क्या क्या परेशानी आपको शुरू में फेस करनी पड़ी अल्मोड़ा में?
1: ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही, हमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फैसिलिटी हमें सब देती है। हमें बच्चों के लिए मैट प्रोवाइड करेगी, जो हमारी मैटें होती हैं वो करीब 1-1.5 लाख रुपए की भी मिलती है, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रही। बस हमें ट्रेन कराना पड़ा थोड़ा, बच्चों का पढ़ाई से और पेरेंट्स को हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करना पड़ता है
2: जी।
1: इसके लिए कि आप बच्चों को खेलने के लिए डालिए, जरूरी नहीं है उसका बच्चा जो है उन मेडल ही जीते, वही उसका एक अचीवमेंट है। बच्चा फिट रह रहा है, कोई गलत रास्ते में नहीं पड़ रहा है, ये भी एक कोच को देखना पड़ता है। सिर्फ हमारा मकसद बच्चों को मेडल लाके देना यही जरूरी नहीं है।
2: वैसे तो कहें कि ताइक्वांडो जो है आत्मरक्षा के लिए बहुत अच्छा स्पोर्ट्स माना जाता है, और खासकर बालिकाओं को अगर हम देखा जाए तो महिला इस स्पोर्ट्स को ज्यादा सीखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे भी अल्मोड़ा में अधिकतर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कई एकेडमीज भी हैं जो कि बच्चों को ट्रेन कर रही हैं। आपके अंडर में जो बच्चे हैं इस वक्त, तो उनको कितना टैलेंटेड आप देखती हैं?
1: अब मैं सच बताऊंगी आपको, अभी जो मेरे पास स्ट्रेंथ है उसमें मेरे पास गर्ल्स की ही स्ट्रेंथ ज्यादा है, और अभी जो 15 बच्चे जो खेलने गए थे उसमें जो मेडल है वो सारी गर्ल्स है। जो हमारा गेम है एकदम, उसमें ऐसा होता है कि जितना बच्चा छोटे से स्टार्ट करता है वो उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट देगा। कोई एक बड़ा बच्चा आके, यानी कि 15-16 इयर्स का आके, मुश्किल है कि वो एकदम उसकी बॉडी जो है फ्लेक्सिबल रहे, वो उसको गेम को कर सके। तो छोटे से बच्चा जो है हमारे पास शुरू करता है, और गर्ल्स उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। गर्ल्स, हम ऐसा नहीं करते फाइट

0: जब प्रैक्टिस होती है तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की हम कराते हैं, तो
1: जी
0: गर्ल्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है इसके इसमें खेलने के लिए, और अपना आत्मरक्षा के लिए तो ये है ही अच्छी
1: जी
0: चीज़।
1: आजकल के माँ बाप चाहते भी कि उनके बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अच्छा करें,
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: खासकर मैं देखता हूँ कि 3-4 बजे के बाद अक्सर एकेडमीज की तरफ जाते हुए देख सकते हैं हम लोग। तो स्टेडियम में क्या रूटीन रहता है बच्चों को सिखाने का?
0: कि 2 घंटा हमें सुबह दिया जाता है बच्चों को प्रैक्टिस कराने के लिए, लेकिन थोड़ा बच्चों के साथ ही प्रॉब्लम आ जाती है। आजकल जो आप देख रहे हैं कि समर टाइम चल रहा है, तो बच्चों की स्कूल्स हैं
1: जी
0: वो 6:30 से उनके स्कूल्स बसें ये आ जाती है। अगर वो मॉर्निंग में नहीं आ पाते, मैं उन्हें इवनिंग में ज्यादा से ज्यादा टाइम देती हूँ, और प्लस संडे को मैं उन्हें मॉर्निंग में बुला के उनको प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो हमारा जो रूटीन रहता है वैसे वो मॉर्निंग में 2 आवर्स और इवनिंग में 3 आवर्स हम बच्चों को देते हैं।
1: जी तो कितने बच्चों की एक स्ट्रेंथ आपके पास रहती है?
0: एक्चुअली मेरे पास 50+ तो हो ही जाते हैं बच्चे,
1: जी
0: लेकिन उसमें से बस यही होता है कि स्टार्टिंग में तो सब बच्चा आ जाता है, लेकिन उस प्रैक्टिस को हर कोई झेल नहीं पाता।
1: जी
0: तो कुछ बच्चे उसमें या तो बोर हो जाते हैं, या उनके हाथ पैरों में दर्द, इस तरीके की कोई चीज़ें आती है, फिर कुछ बच्चे जो है उसमें से छूट भी देते हैं। तो हमारे पास एटलीस्ट 30-35 चिल्ड्रंस जो है हमारे पास कंटिन्यू रहते हैं, जो कि आज मेरे पास 3 साल से लगातार है।
1: जी मतलब 30-35 बच्चों को आप आराम से एट ए टाइम कोचिंग दे
0: यस
1: सकते हो। अब बच्चे आपके पास कोचिंग करने आ रहे हैं, अब उनका एक डाइट का भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: स्पोर्ट्स खेलते हैं तो
0: बिल्कुल
1: कुछ ना कुछ
0: बिल्कुल
1: डाइट
0: सर।
1: होगी। तो माँ बाप को भी आप बताते होंगे कि किस तरह की डाइट आपके बच्चों को देनी है। जैसे अब मैं शुरू करूँ कि आपके पास 7 या 8 साल के बच्चे से शुरुआत आप करते हैं,
0: 5 साल
1: 5 साल से,
0: जी
1: तो आप ही मान लीजिए, तो सबके लिए डाइट प्लान भी एक अलग अलग रहता होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो आजकल यही समझाना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है कि उनको बाहर की चीज़ों के लिए आप अवॉइड करवाइए, जो भी आजकल बाहर चूस, चॉकलेट, चिप्स वगैरह बच्चे खाते, पहले तो इसे ही आप मत दीजिए,
1: जी
0: यही बहुत बड़ा टास्क है। उसके बाद जो डाइट है, तो मैं ये कहूँगी कि उसमें बच्चों को एग वगैरह इस टाइप की चीज़ें उसमें आप उसको प्लस करिए करिए। कुछ बच्चों को 2 किलो वेट कम करना है, तो उनको हमें डाइट बतानी पड़ती है कि आप
1: जी
0: 2 किलो जो है एट ए टाइम आप एक दिन में नहीं कर सकते, आप वो कंटिन्यू मेरे पास प्रैक्टिस में है, उसको क्या डाइट खानी है मॉर्निंग में, क्या नहीं खाना है, तो ये चीज़ें हमने उनके पेरेंट्स को सब बताई हुई है।
1: ट्रेनिंग की बात आती है तो किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर आप देती हैं?
0: मैं हूँ क्योरगी। हमारे अब जो टाइक्वांडो है ना, वो 2 इवेंट में डिवाइड हो चुका है,
1: जी
0: एक होता है
1: हाँ
0: क्योरगी, एक होता है पुमसे। तो एक्चुअली मैंने ही क्योरगी ही खेला है, तो मैं क्योरगी ही उनको खिलाती हूँ। क्योरगी मीन्स होता है फाइट,
1: जी
0: तो फाइट के लिए हमें जरूरी है किक और पंच का आना। तो स्टार्टिंग में बेसिक उनका यही रहता है कि मैं उनको कैसे भी करके उनकी किक इम्प्रूव करूं, जिसमें हमें पहले उनको एयर प्रैक्टिस देनी पड़ती है, उसके बाद उनको हमने किक पैड में प्रैक्टिस करवानी होती है। जब बच्चे इस तरीके के सीख जाते हैं, फुटवर्क सीख जाते हैं, पंच करना सीख जाते हैं, गार्ड करना सीख जाते हैं, उसके बाद उनका नेक्स्ट लेवल आता है फाइट, यानी कि स्पारिंग। तो उसके बाद उन्हें फाइट प्रैक्टिस दी जाती है। जब फाइट प्रैक्टिस में कहाँ उनको मारना है, कहाँ कितना स्कोर मिलेगा, जैसे ट्रंक में मारते हैं तो कितना स्कोर मिलेगा, फेस में मारते हैं कितना स्कोर मिलेगा, ये तरीके की उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चा जब वहां फाइट खेलना शुरू करता है, फिर उसके बाद वही उसकी वो किस तरीके से अपने को गार्ड करें, कैसे खेलें, अपने स्कोर कैसे बचाएं और स्कोर कैसे निकालें, ये चीजें बताई जाती
1: जी
0: है।
1: क्योंकि अब नेशनल्स में आपने बच्चों को खिलाना है तो ऑब्वियसली उनको कुछ एक्सपोजर की जरूरत पड़ती है कुछ,
0: बिल्कुल
1: जिससे तो कुछ टूर्नामेंट भी उनको लोकल में भी खेलने पड़ते होंगे,
0: जी
1: तो
0: जी
1: इस तरह
0: जी
1: की सुविधा यहाँ पर है?
0: जी जी टूर्नामेंट्स की हमारी पूरी सुविधा है यहाँ पे, हम लोग कराते रहते हैं। हमारे स्टेडियम में भी 1 साल में करीब 2 या 3 टूर्नामेंट हम स्टेडियम में ही कराते हैं, और
1: जी
0: बाकी जैसे आपने बताया कि अभी एकेडमीज है हमारी यहाँ पे, तो हम कभी इंटर यूनिवर्सिटी, कभी इस तरीके की हम लोग टूर्नामेंट्स कराते रहते हैं।
1: आपके जो बच्चे 8 जो मेडलिस्ट निकले अभी 13th ओपन नेशनल चैंपियनशिप में,
0: जी
1: तो उनमें कौन कौन से बच्चे में आप प्रतिभा देखती हैं कि आगे तक जाएंगे और हमारे देश को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं?
0: भूमिका जोशी, उसमें लड़की का नाम था, सब
1: जी
0: जूनियर की है, वो करीब 10 या 11 साल की बच्ची है। उसके अंदर टैलेंट दिखता है मुझे कि वो बहुत अच्छा कर रही है।
1: आजकल तो जमाना कंडीशनिंग कोचेस का भी है, मेंटल
0: जी
1: कंडीशनिंग कोचेस का भी है,
0: बिल्कुल,
1: सब एक ही कोच की
0: सब
1: जिम्मेदारी।
0: एक ही कोच की जिम्मेदारी है।
1: टूर्नामेंट से पहले जब बच्चा आप ज्यादातर रिंग पे उतरता है तो आप क्या बताती है उनको, क्या कुछ करना होता है?
0: पहले तो हम यही मोटिवेट कराते हैं, आपके सामने खेलने आ रहा है,
1: जी
0: वो भी आप ही की तरह है, वो भी आप ही की तरह ट्रेनिंग करता है, उसके भी 2 हाथ 2 पैर हैं। हमारे बच्चों में पता नहीं, पहाड़ के बच्चों में मुझे लगता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो जो बच्चा खेलने से पहले डर जाता है, तो हमें उन्हें मोटिवेट बहुत उनको करवाना पड़ता है कि आप डरिए नहीं, आप अपना, मैं बच्चों से ये भी नहीं कहती हूँ कि आप सिर्फ मेडल की चिंता करिए, मैं
1: जी
0: ये चाहती हूँ आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। हार जीत तो लगी रहती है,
1: जी
0: कोई इतनी वो इशू नहीं है, लेकिन आप अपना गेम तो बेस्ट दीजिए, आप अपना जो प्रैक्टिस में इतना अच्छा फाइट करते हैं, आप वहां जाके उसका 50% भी नहीं दे पाते। तो इस चीज के लिए मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करना पड़ता है कि आप अपना गेम बेस्ट कर दीजिए, और खाने से पहले आपने क्या चीज खानी चाहिए। बच्चे जो होते हैं खाने से पहले डर के मारे कुछ खाते नहीं है, हमारे उसमें

0: जो होता है ना सुबह से, सुबह 8 बजे
1: जी
0: से जैसे शुरू हो जाता है, तो बच्चे की कभी कभी रात को 8 बजे फाइट आती है, तो बच्चा जो है उतनी देर तक अपनी एनर्जी को लॉस कर लेता है, और वो डर के मारे अभी खाता नहीं है कि अभी क्या पता मेरा नाम कुछ देर में आ जाएगा, इस
1: जी
0: तरीके से। तो उसकी एनर्जी सुबह से शाम तक तो ऐसे ही लो हो जाती है। तो इस चीज के लिए भी हमें बोलना पड़ता है कि आपको खाना है तो जबरदस्ती आप खाइए उस चीज को।
1: तो वेट तो पहले ही हो जाते होंगे
0: नहीं,
1: अगर
0: वेट
1: वैसे,
0: एक दिन
1: तो
0: पहले हो
1: उसमें फिर
0: जाते
1: घबराने
0: हैं।
1: की कोई बात नहीं है। उस
0: नहीं
1: पर
0: नहीं
1: अगर आप बच्चा बीच में देख रहा है कि 4-5-6 घंटे वो खाली है, तो उस दौरान उसको भोजन तो कराने की
0: बिल्कुल
1: जिम्मेदारी
0: बिल्कुल।
1: भी।
0: ये चीज की मुझे अभी फर्स्ट डे यहाँ देखा मैंने, बच्चे ये नहीं खा रहे थे। सेकंड डे में पेरेंट्स भी वहां पे आए हुए थे, तो मैंने उन लोगों से यही कहा, बच्चों ने कल जो है जो मिस्टेक करी थी वो आज नहीं होनी चाहिए, आज इनके लिए बनाना जूस, ग्लूकॉन डी जो है, इलेक्ट्रॉल्स वगैरह, ये चीजें जो है आप रेडी रखिए और इनको देते रहिए आप थोड़ी थोड़ी देर में।
1: टूर्नामेंट के दौरान जब
0: जी,
1: आप टूर्नामेंट खेलने बच्चे जा रहे होते हैं, तो उस दौरान की डाइट का क्या रहता है?
0: सबसे पहले तो हमें वेट एक दिन पहले ही वेट हमें देना पड़ता है बच्चों का। कुछ बच्चों ने वेट घटाना होता है, कुछ बच्चों ने वेट
1: जी
0: बढ़ाना होता है। तो
1: बिल्कुल
0: जिन्होंने घटाना होता है तो उनकी तो हम खैर एक दिन के लिए हम थोड़ा डाइट उनकी बंद ही कर देते हैं, उसके बाद जो है उनको फुल जो है एनर्जी लेवल जिसमें उनकी एनर्जी गेन हो जाए तो हम उनको वो सारी चीज़ें खाने के लिए बोलते हैं। और जिनको वेट बढ़ाना होता है तो वो लोग अपनी इस तरीके की बनाना और इस टाइप की चीज़ें खा लेते हैं। तो ये तो हो गया वेइंग से पहले की
1: जी
0: बात, अब आ जाती है फाइट से। तो उसमें हम उसमें लाइट जो है आपका ब्रेकफास्ट रहेगा, जो भी आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह या ब्रेड वगैरह या बनाना सबसे बेस्ट है आप वो ले सकते हैं। जिस बच्चे की फाइट आ गई तो उसके बाद वो तो उस नहीं खाएगा दिन का अगर उसका है, या फिर बिल्कुल हल्की डाइट लेगा नॉर्मल, आप इलेक्ट्रॉल पी सकते हैं उसमें, इस टाइप की हम उनकी चीजें बोलते हैं। स्प्राउट्स वगैरह ले सकते हैं बच्चे,
1: जी
0: लेकिन ऐसा होता है ना हम कहीं बाहर दूर गए तो हमें ये सारी चीजें अवेलेबल भी नहीं रहती है। अभी जैसे हम
1: हाँ
0: गोलापार गए थे, यहाँ कुछ भी प्रोवाइड नहीं हो रहा था जो बच्चे होटल में रुके थे, इस टाइप
1: अच्छा
0: की चीजें। और जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रुके थे तो हमने उनको यही बोला कि आप अपना लंच जो है आप अपना लेके आइएगा, इस तरीके की चीजें। तो बहुत सी चीजों का हमें प्रॉब्लम्स जो है हमें फेस करनी पड़ जाती है।
1: जी साथ ही साथ आप एक नेशनल रेफरी भी हैं। अब आप, मैं चाहूंगा कि बताएं कि कैसे आपका सफर एक खिलाड़ी से कोच, कोच से रेफरी की तरफ गया।
0: खेलते खेलते ही नेशनल रेफरी जो है हमारा कोर्स होता है, इसका सेमिनार अटेंड किया था। फर्स्ट टाइम मैंने लखनऊ में ही इसका सेमिनार जो है अपना अटेंड किया था रेफरीशिप का। हालांकि मैं उस टाइम थोड़ा सा घबराती भी थी सीनियर्स की बॉयज की फाइट में, अगर आप सेंटर रेफरी हैं तो आपका जजमेंट और आपकी जो एक्यूरेसी है वो इतनी फास्ट होनी चाहिए, नहीं तो एक रेफरी जो हमारा गेम है
1: जी
0: हमारी एक छोटी सी मिस्टेक से किसी की जान जा सकती है। अगर हमें लगा कि कहीं पे एक बंदा शार्प खेल रहा है, दूसरा लूज कर रहा है, या हमने अगर धीरे बोला, उसको सुनाई नहीं दिया, दूसरे ने उसे उतनी देर में किक कर दिया कहीं भी, तो इसका बहुत ज्यादा मतलब एक बच्चे की जान जा सकती है। तो इसलिए इसको रेफरी को बहुत मतलब मैं भी डर रही थी इसमें स्टार्टिंग में। तो धीरे धीरे हमारे जो सीनियर सर थे इसमें, एटी राजीव सर है बैंगलोर से, वो इंटरनेशनल रेफरी है जो
1: जी
0: हमारा करवाते हैं, तो उन्होंने मुझे काफी कॉन्फिडेंस दिलाया, उनको लगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो उन्होंने मोटिवेट किया। तो मैंने फर्स्ट सेमिनार तो वहीं पर अटेंड किया, उसके बाद मैं मणिपुर हो गया, उड़ीसा हो गया, सब जूनियर इवेंट में नेशनल रेफरी के रूप में मैंने वहां पे अपना दिया। लास्ट ईयर हमारे हल्द्वानी में ही दोबारा से ये सेमिनार हुआ, क्योंकि ये अपडेट होना जरूरी
1: जी
0: रहता है,
1: हाँ
0: हमारे रूल्स चेंज हो जाते हैं बीच बीच में, तो हमें भी अपडेट होना पड़ता है उस सब चीजों के लिए। 2018 से पहले जो है करीब 3-4 जगह मैं नेशनल रेफरीशिप कर चुकी हूँ।
1: जी आपको क्या लगा कि जब आपने एज ए खिलाड़ी के बाद रेफरी एरेना चुना था, तो कितना मतलब कठिन जैसा लगा था कि आपको लगा कि बहुत इजी शिफ्ट?
0: मैं कहूंगी कि सबसे अच्छा मुझे सिर्फ खेलना पसंद है, मुझे खेलना ही काफी ज्यादा पसंद है। तो मैं जब रेफरीशिप करी तो उसमें एक जगह बैठे रहो, आप ना इधर देख सकते हो ना आप उधर देख सकते हो, तो आपको बिल्कुल किसी की आप एक स्कोर से आप कोई बच्चा
1: जी
0: हार
1: सर
0: सकता है जीत सकता है, मतलब बहुत वो है, तो आपको बहुत उसमें फोकस करना पड़ता है और बिल्कुल आप बंधे रहते हैं। रेफरी का अच्छा है लेकिन एज अ प्लेयर मैं कहूंगी कि मुझे ज्यादा अच्छा लगता है।
1: जी तो आने वाला समय आप उत्तराखंड के लिए ताइक्वांडो में कैसा देखती हैं, कोच होने के नाते मैं जानना चाहूंगा।
0: कि हमारा जो अल्मोड़ा है वो पहले से ही शुरू से ही ताइक्वांडो में काफी अच्छा रहा है। आपने
1: जी
0: सुना होगा 2004 में हमारे सुरेन भंडारी दादा सर हैं जो काफी सीनियर हैं, वो बुशान से एशियन गेम्स में मेडल लेके आए थे, तो वहीं से हमारा जो है ताइक्वांडो जो है अल्मोड़ा में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। और काफी टाइम बाद हमारा फिर उसके बाद रिजल्ट थोड़ा सा डाउन हो गया था, हालांकि दौराहाट में भी हमारी यहाँ पे चलती है, उनके भी काफी सर है हमारे विजय
1: जी
0: बहादुर सर, उनके भी बच्चे काफ़ी अच्छा करते हैं, अच्छा रिजल्ट है, हर जगह जॉब में भी निकलते हैं, अच्छा रहा है। और मैं चाहूँगी कि ऐसे ही जैसे सुरेन भंडारी सर ने हमारे अल्मोड़ा का नाम इतना रोशन किया, ऐसे ही हमारे बच्चे जो हैं आगे नाम रोशन करते रहें, यहाँ से भी हमारे बच्चे निकले, अल्मोड़ा का नाम रोशन करें।
1: तो हम ये कहेंगे कि

0: इसको एक व्यवसाय के रूप में भी चुन सकते हैं, आपका कैरियर भी इसमें बन सकता है। एज आप अगर शौकिया खेलते भी हैं तो खेल खेल से भी आप आगे भी जा सकते हैं, और महिलाओं के लिए तो खासकर बहुत अच्छा है मैं कहूँगा। तो क्या कहना चाहेंगी आप हमारी बच्चियों से कि वो इस खेल को कितना अपनाएं?
1: ये मत देखिए कि आप देश के लिए मेडल ला रहे हैं, हमारे पास आते बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन बनता कोई एक ही है, तो हम उनको एक अच्छी दिशा में एक अच्छा नागरिक बना रहे हैं। जो बच्चे बड़े होते हैं आजकल गलत संगत में जा रहे हैं, नशे की तरफ को जा रहे हैं, तो बच्चे का एक फोकस रहेगा कि हाँ मैंने ये चीज़ करनी है, मैं फिट, मुझे फिट रहना है, मुझे ये ऐसी चीज़ों में ध्यान नहीं देना है, मुझे नेशनल में मेडल लाना है, तो बच्चा जो है उधर ही की ओर अग्रसित होगा, उसका ध्यान जो है भटकेगा नहीं। और दूसरी तरफ रही बात गर्ल्स की, तो गर्ल्स के लिए जैसा आपने बताया, बच्चा जब यहाँ से स्कूलिंग में पूरा अगर अपना टाइम यहाँ सीखता है, कल के दिन में वो ताइक्वांडो की लाइन में नहीं जाके अपना कोई और कोर्स करने के लिए उसको बाहर जाना पड़ता है, तो गर्ल्स के लिए ये बहुत अच्छा है कि उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस वो रहेगी कि हाँ मुझे ताइक्वांडो आता है, मैं इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंस हूँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मैं अपना बचाव खुद कर सकती हूँ। बच्चा खेले, 12th तक ही खेले, अगर जिसको फिर उसके बाद उसको कोई और लाइन पकड़नी है तो वो कर सकता है।
0: ये थी वंदना सिंह, और अब बारी है अखिलेश सिंह की, जो कि अब सीनियर टीम के लिए प्रयास कर रहे हैं, और ये 13वीं जूनियर एशियन चैंपियनशिप मलेशिया में आयोजित भारत की तरफ से ब्रॉन्ज मेडल विजेता रहे। आपने 2023 के नेशनल चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और 24 में आपके आप सिल्वर मेडलिस्ट हैं, तो अखिलेश बात यहीं से शुरू करते हैं। आपकी नेशनल चैंपियनशिप की, जो आपने 2023 में गोल्ड जीता था, पहली बात ये आती है कि ताइक्वांडो के प्रति आपका शौक कैसे हुआ?
2: बचपन से ही हो गया था शुरू, क्योंकि मेरी दीदी जो है वो खुद नेशनल चैंपियन और नेशनल प्लेयर रही हैं, तो उनको देख के फिर मन किया खेलने का।
0: बात आती है नेशनल चैंपियनशिप की, तो 23 में आपने गोल्ड जीता, तो वो सफर आपका कैसा रहा?
2: तो नेशनल चैंपियनशिप जो है ऑल ओवर इंडिया से सारे बच्चे आते हैं और कॉम्पिटिशन बहुत हाई रहता है, टफ रहता है, तो उसके लिए बस गेम के, अपने गेम के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियसनेस और कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लगता है, और सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है टेम्प्ररी, पढ़ाई और जो मेन चीज़ें हैं उसी पर तुम फोकस कर सकते हो अगर आप प्लेयर और एक स्टूडेंट दोनों हो तो। तो आपके लिए ऐसा होता है कि आपके लिए जो लाइन है वो थोड़ी टफ है, जो नॉर्मल स्टूडेंट है उससे ज़्यादा टफ है, क्योंकि आप प्लेयर और स्टूडेंट दोनों हो, आपको दोनों मैनेज करते हुए चलना है, तो पूरे अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट और पूरी मेहनत दोनों जगह, क्योंकि दोनों चीज़ में एक्सेल करना है, अच्छे से बेस्ट देना है, तो टफ था नॉर्मल बच्चों से, जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं स्पोर्ट्स उनके मुकाबले बहुत टफ था, क्योंकि नेशनल चैम्पियनशिप थी, और पर बस पैशन था अंदर और ये था कि हार्डवर्क करेंगे तो सब कुछ हो सकता है, मेहनत करते गए।
0: मेहनत करते करते आपने 23 और 24 में आप सिल्वर मेडलिस्ट रहे, गोल्ड के बाद सिल्वर आया, उस दौरान परफॉर्मेंस में थोड़ी हम कहेंगे ड्रॉप रही आपकी, कोई बात नहीं, लेकिन आपका सिलेक्शन हुआ था 13th जूनियर एशियन चैंपियनशिप के लिए मलेशिया में जो आयोजित हुई थी, तो वहां पर आप मेडलिस्ट रहे, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट आपने देश के लिए जीता, तो ये मैं जानना चाहूंगा कैसे आपका सिलेक्शन नेशनल टीम के लिए हुआ था उस?
2: तो सबसे पहले जो था हमारा 2025 की नेशनल चैंपियनशिप जो देहरादून में हुई थी, तो वो था एक सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया था कि जो बच्चा गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज यहाँ पे होगा तो उसके लिए आगे जाके रास्ते खुलेंगे एशियन चैम्पियनशिप के ट्रायल के लिए, तो वहाँ गए और पार्टिसिपेट किया नेशनल चैम्पियनशिप्स में और वहाँ मेडल जीता, वहाँ नेशनल चैम्पियन बना मैं उस टाइम पे, और उसके बाद वहाँ से फिर आगे जाके जूनियर एशियन चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्शन ट्रायल्स दिए, फिर वहाँ सिलेक्शन लिया, और उसके बाद कैंप मिला हमको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, हमारा कैंप लगा था 1.5 महीने का
0: जी,
2: तो फिर वहाँ ट्रेनिंग हुई इंडिया के बेस्ट कोचेस के साथ।
0: पहली बार जब एशियन चैंपियनशिप में खेले आप, नेशनल से विदेश में जाकर खेले, तो कैसा आपकी मनस्थिति थी, क्या लग रहा था आपको मैं इतने बड़े मंच पे खेलने जा रहा हूँ?
2: बस ये था कि अब इतना आगे आ चुके हैं तो अब कुछ और ऑप्शन नहीं है, अपना बेस्ट देने का हमेशा से रहा है दिल में कि अब तो देश के लिए खेल रहे हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि देश के लिए खेलना है, अपना बेस्ट देना है किसी भी हालत में, चाहे कोई भी आ जाए सामने किसी भी कंट्री का।
0: वहाँ पर जब आपके कोचेस होते हैं तो एक आप जब स्थानीय स्तर पर आपके कोच होते हैं अलग होते हैं, आप जब आप एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपके साथ कोचेस अलग होते हैं, तो कैसा आपको लगता है कि जो आपने कोचिंग यहाँ ली जिन कोचेस से और इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं खेलने के लिए, वहाँ पर कोचिंग में क्या अंतर लगा आपको?
2: यही बात है जिससे हम बचपन से सीखते हैं, उनको तुम्हारी कमियों के बारे में, तुम्हारी एडवांस जो तुम जिस चीज़ में अच्छे हो उस चीज़ के बारे में पता हो,

0: होता है और वो तुम्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझता है एज अ प्लेयर। जो हमारा कोच होता है उससे एक अलग बॉन्ड होता है, हमारी एक अलग रिलेशन होता है जिसने हमें बेसिक से उठाया होता है, तो उसे सब पता होता है। लेकिन जब हम बड़े लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें थोड़े अलग कोचेस मिलते हैं जो एडवांस होते हैं, जो ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं और एक लेवल उनका अप हो जाता है। पर उनसे फिर कुछ टाइम उनके साथ ट्रेनिंग करने के बाद उनके साथ भी थोड़ा रिलेशन अच्छा बन जाता है, क्योंकि वो काफ़ी काफ़ी सारे प्लेयर्स को वो उन्होंने पहले भी ट्रेनिंग दी होती है और उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो उन्हें पता होता है कि हर एक बच्चे को कैसे हैंडल करना है। तो बस इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, पर अपना कुछ तो अपना कुछ ही होता है लास्ट में।
1: जी, इंटरनेशनल में आप फाइट कर रहे हैं, आप जब आप पहली बार फाइट करने गए तो क्या था? कहते हैं बटरफ्लाई इन स्टमक, कहते हैं कि
0: नर्वसनेस थी थोड़ी, वो तो हर फाइट के पहले नर्वसनेस होती होती है।
1: किसके अगेंस्ट फाइट थी आपकी?
0: मेरी पहली फाइट चाइना से थी। हाँ, और मैंने ये देखा है हमारे देश में स्पोर्ट्स की हालत थोड़ी डाउन ही चलती है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। जो प्लेयर्स को काफ़ी सारी फैसिलिटीज़, क्योंकि जो और कंट्रियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे है हमसे आजकल, क्योंकि जो हम अभी सीखते हैं वो शायद से 5-10 साल पहले वो लोग करके उसे वो टेक्निक्स और जिस एडवांसमेंट के साथ आज आज हम सीख रहे हैं वो बहुत पहले सीख चुके हैं।
1: जी
0: तो उन एक उनके पास प्लस पॉइंट रहता ही रहता है उनकी फैसिलिटीज़, क्योंकि उनको अच्छी मिलती है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में भी फैसिलिटीज़ नहीं है, पर हो जाता है थोड़ा पीछे, क्योंकि बेसिक लेवल पे अच्छी वो नहीं मिलती। भले ही टैलेंट हमारे देश में बहुत ज़्यादा है,
1: जी
0: पर
1: मैं ये जानना चाहूंगा, जब पहली फाइट आप कर रहे थे, अपोनेंट आपका
0: चाइना,
1: चाइनीज
0: हाँ
1: था, तो आप कैसे उससे फाइट कर रहे थे? क्या लग रहा था आपको कि क्या उसमें क्या कमी है और मैं कहाँ उसके ऊपर पॉइंट ले सकता हूँ?
0: वही गेम पढ़ना था उसका। सबसे पहले खेलते गए नॉर्मली उसका गेम देखा कि वो किस तरीके से खेल रहा है, और फिर थोड़ा उसकी कमियां देखी कि कहाँ पे वो लैग कर रहा है, और फिर वहीं से स्कोर निकालने का ट्राई किया। वो अपनी लेफ्ट लेग से बहुत अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहा था, वो बस एक ही लेग से खेल रहा था, तो पता चल गया था कि ये इसका माइनस पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट निकल सकता है हमको, तो वहाँ पे एडवांटेज लिया, वहाँ से पॉइंट निकाला।
1: तो ये एज ए खिलाड़ी तुम खुद जज करते हो या बीच में कोच भी इशारा करते हैं कुछ वहां पर?
0: कोच का बहुत बड़ा हाथ रहता है, क्योंकि कई बार जो पर्सन खेल रहा होता है ऐसा प्लेयर, तो कई बार वो नहीं समझ पाता है कि सामने वाला कैसा खेल रहा है, तो कोच कभी कभी आंख बंद करके कोच की बात मानना भी बहुत ज़रूरी है। कि अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कोच पे भरोसा रखो, वो तुम्हें अच्छा ही गाइड करेगा और सही गाइड करेगा, क्योंकि उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है।
1: जी, आप अपनी पहली फाइट जीते, आगे की फाइट जीते, तो किस तरह के अपोनेंट्स आप फेस करते गए?
0: चाइनीज़ अपोनेंट थोड़ा टफ पड़ा पहली फाइट में, सेकंड फाइट मेरी इजी रही जो सऊदी अरेबिया के साथ थी, थर्ड फाइट मेरी कोरिया के साथ हुई थी जिसमें मैं हार गया था,
1: अच्छा,
0: कोरिया से मैं हार गया
1: कोरियन वाले में ऐसी क्या खासियत लगी जो आपको
0: था।
1: लगा कि आप कहाँ लैग करें?
0: कोरियन के साथ मैंने देखा, सबसे पहले तो उसके पास एक एडवांटेज था हाइट का, वो मुझसे हाइट में बड़ा था,
1: अच्छा,
0: और उसके पास स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, स्ट्रेंथ में भी बहुत ज़्यादा, हाइट में भी बहुत ज़्यादा, तो बस यही प्लस पॉइंट था उसका।
1: टेक्निक वाइज
0: टेक्निक वाइज
1: आप
0: मैं कहूँगा
1: टैकल कर रहे थे
0: कि
1: मतलब उनको?
0: हाँ, टेक्निक वाइज मॉडरेट, बस जो नेचुरल वो स्ट्रेंथ थी और वो रॉ स्ट्रेंथ वो उस पर अब बहुत अच्छी थी, तो वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गई।
1: उसके बाद अब आगे आप क्या सोचते हो, आपने क्या करना है?
0: अभी नेक्स्ट मेरा सोचा है सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप्स को टारगेट कर रहा हूँ, उसके लिए वर्क कर रहा हूँ, खुद पर बेहतर कर रहा हूँ हर दिन खुद को। और आजकल ये तो है, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है गेम्स में, तुम्हें आर्मी सर्विसेज, आर्मी और काफ़ी सारी रेलवे, इन सब चीज़ों में जॉब मिल जाती है
1: जी
0: इजीली। हाँ, तो उसके साथ तुम अपना गेम भी कंटिन्यू कर सकते हो एक तरीके
1: जी
0: से।
1: तो अभी फिलहाल जो क्या तैयारी चल रही है आपकी?
0: फिलहाल तो नेशनल चैम्पियनशिप के लिए तो अब कंपटीशन और डबल है, तो उसके लिए डबल मेहनत भी करनी पड़ेगी, तो बस वही चल रहा है।
1: तो कितना डिफरेंस लग रहा है आपको जूनियर से सीनियर में? अब आप शिफ्ट कर रहे हो तो यहाँ पर किस कोच के अंडर में यहाँ पे कुछ
0: मैं
1: किया रहे
0: विक्रम
1: हो?
0: भंडारी सर,
1: विक्रम भंडारी जी के अंडर में कोचिंग कर रहे हैं, तो किस तरह की? उन्होंने कुछ ना कुछ तो सीनियर्स लेवल पे जो कोचिंग होती है जूनियर से काफ़ी डिफरेंट होती है, तो क्या चीज़ें आपको अलग से सिखाई जा रही हैं?
0: अब जैसे सीनियर एक अलग ही लेवल है, उसका लेवल थोड़ा टफ डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी खेलते हैं, तो एक तो वो हो गया। टेक्निकल ट्रेनिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, थोड़ी टेक्निक सुधारनी पड़ती हैं और अपने आप को और पॉलिश करना पड़ता है, अपने जो कमियां होती है उनको ट्राई करना पड़ता है कि इसको किसी ना किसी तरीके से कम करें और सुधारें, कोई कमी ना रह जाए हमारे अंदर।
1: अच्छा, स्टेमिना भी इसमें चाहिए होता है आपको उतनी देर?

0: रिंग में सस्टेन करना है, तो स्टेमिना बढ़ाने के लिए किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पे करते हो?
1: स्टैमिना बिल्ड करने के लिए अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग होती है। हमारी एंड्योरेंस ट्रेनिंग होती है जो मेनली स्प्रिंट्स, रनिंग्स, लॉन्ग रनिंग हम लोग करते हैं जिससे स्टैमिना बिल्ड होता है।
0: 3 जून को विश्व साइकिलिंग दिवस आयोजन किया गया। माउंटेन बाइकिंग के बारे में अपने अनुभव को साझा किया हमारी प्रतिनिधि गीता कनवाल से भरत शाह ने।
2: आप काफी समय से साइकिलिंग कर रहे हैं और कई सारे ट्रैक्स आपने साइकिल से किए हैं, तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपके मन में साइकिलिंग को अपने जीवन में अपनाने का विचार कैसे आया?
3: ये मेरे बचपन से जुड़ा है और मेरा पहले साइकिलिंग में कोई शौक ऐसा नहीं था। मैं जब झांसी हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ने के लिए गया था तो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे घर से करीबन 8-9 किलोमीटर दूर स्कूल हुआ करता था, तो मुझे वहां साइकिल से ही जाना पड़ता था। इसके लिए मैंने साइकिल सीखी थी और उसके बाद मैं नैनीताल आ गया आगे की एजुकेशन के लिए, तो साइकिल लगभग छूट गई थी। फिर बाद में मैं एडवेंचर से जुड़ा तो मैंने ट्रैकिंग का काम किया, लेकिन पिछले 12-13 सालों में साइकिल में एक बड़ा परिवर्तन आया कि पहाड़ों में लोग साइकिल चलाने लगे। हम सोचते थे कि लोग प्लेन्स में ही साइकिल चलाते हैं, लेकिन पहाड़ों में गियर साइकिल का प्रयोग होने लगा। तो तब मैंने पहली बार 10-12 साल पहले गियर साइकिल चलाने की शुरुआत की और फिर एक बार जब मैं शुरू हुआ तो फिर रुका नहीं। फिर मैं नए नए तरीके से साइकिल के ट्रेल देखने लगा और साइकिल से पहाड़ों को घूमने लगा।
2: इसके अलावा सर, साइकिलिंग के दौरान आपके खट्टे मीठे अनुभवों के बारे में जानना चाहेंगे और आपने अभी तक साइकिलिंग के माध्यम से कहां कहां तक की यात्राएं की हैं?
3: अनुभव तो साइकिल में जब आप घर से निकल जाओ तो बहुत प्रकृति के साथ आपको रहना पड़ता है, तो एक तरीके से जैसे फिल्म चेंज होती है उस तरीके से पूरा आपको चेंज एटमोसफेयर मिलता है और नई नई चीजों से आपको मतलब आपको देखने को मिलती है, नए लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है और नए स्ट्रगल आपको दिखाई देते हैं। तो मेरी यात्राओं में जो मैंने शुरुआत की पहाड़ों में, तो आसपास में ही पहले 5-10 किलोमीटर मैंने सफर शुरू किया, जैसे अल्मोड़ा से कसार देवी का। तब मुझे बड़ी हिचक होती थी कि अगर मैं चढ़ाई में कहीं रुक गया तो लोग क्या कहेंगे, और फिर धीरे धीरे जब मुझे प्रॉपर गियर साइकिलिंग का तजुर्बा हो गया तो मैंने काफी इधर जो टूर्नामेंट प्रोग्राम्स होते हैं, इनके साइकिल इवेंट्स होते हैं, उनमें मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। उसके बाद मैं गोवा भी गया, नासिक भी गया और बॉम्बे में भी मैंने पार्टिसिपेट किया। और इसके अलावा मैंने पहाड़ों में जो जर्नी की, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उत्तराखंड के पहाड़ों में सबसे ज्यादा है, तो मैंने बद्रीनाथ की साइकिल यात्रा की, माणा पास मैंने किया साइकिल से, हिमाचल में मैंने काफी साइकिलिंग की और वहां पे मुझे प्राइज भी मिले, और इस तरह से मेरी साइकिल जर्नी काफी अच्छी रही और अभी भी मैं कंटिन्यू साइकिलिंग करता हूँ पहाड़ों को देखने के।
2: आप कई वर्षों से साइकिलिंग कर रहे हैं, तो साइकिलिंग शुरू करने से पहले और उसके बाद आपने अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में किस तरह का परिवर्तन देखा?
3: स्वास्थ्य तो साइकिलिंग से बहुत ही बढ़िया मैंने फील किया। सबसे बड़ी चीज जो मुझे साइकिलिंग जर्नी में महसूस हुई कि जब आप पहाड़ों में साइकिलिंग करते हैं तो आपको सिर्फ अपने सांसों की आवाज सुनाई देती है, मतलब आप अपने आप को फील कर सकते हैं और ये एक तरीके से स्पिरिचुअल फीलिंग भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वैसे तो अधिकतर इंसान जो है जब भी कहीं बैठता है और कुछ पढ़ता है, लिखता है या कहीं कुछ भी कर रहा होता है तो उसके दिमाग में कई तरह के विचार आते रहते हैं, लेकिन जब वो साइकिलिंग करता है तो उसको ये लगता है कि उसको उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, वो चढ़ाई चढ़नी है या वो अचीवमेंट करना है वहां तक जाने का, तो उसको बाकी कोई ख्याल नहीं आते। तो कहते हैं जो स्पिरिचुअलिज्म में थॉटलेसनेस, अपने आप को समझना, अपने आप को जानना, अपनी धड़कनों को समझना, ये मुझे लगता है साइकिलिंग एक्टिविटी में सबसे ज्यादा होता है और यही मैंने महसूस।
2: आप हमारे श्रोताओं को साइकिलिंग को अपने दैनिक जीवन में अपनाने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: मुझे तो ये लगता है कि साइकिलिंग को दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए, इससे आपका फिटनेस लेवल अच्छा रहेगा, हेल्दी फील करेंगे आप अपने आप को साइकिलिंग करके, और यदि आप हफ्ते में आपके पास समय नहीं है तो आप कम से कम वीकेंड में या संडे के दिन आप एक साइकिल राइड छोटी जरूर करें, जिससे कि एक परिवर्तन आपको खुद अपने अंदर महसूस होगा। यही संदेश दूंगा कि सभी को साइकिल चलानी चाहिए और स्वस्थ रहने की ओर अग्रसर होना चाहिए, और सभी स्वस्थ रहें, साइकिल चलाएं।
0: तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम से अपने मित्र संजय जोशी को अनुमति दें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नए अंक के साथ इसी चैनल इसी फ्रीक्वेंसी पर। तब तक के लिए नमस्कार।
4: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी आगरा है। समय हुआ है 10:30।

आइए अब सुनते हैं ख्याल गायन कलाकार है विदुषी परवीन सुल्ताना, वो प्रस्तुत कर रही हैं राग बागेश्री।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में विदुषी परवीन सुल्ताना से ख्याल गायन। वीडियो वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी आगरा है। 11 बजने को है। आइए अब सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदनाएं व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल

0: इंडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: एलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने एफआईएच प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।